FM 100.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये चूरू केंद्र है। आज रविवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की तीसरी तिथि तदनुसार 24 मई सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5:59 होने ही वाले हैं। मंगल ध्वनि के साथ हमारी प्रातःकालीन सभा अब आरंभ होती है।

0: FM 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये चूरू केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 6 बजने वाले हैं। अब से कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार रिले किए जाएंगे। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा करें।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। वे क्षेत्रीय और वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों सहित कई विषयों पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्री रूबियो कल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए 4 दिन की यात्रा पर भारत पहुंचे। श्री रूबियो ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें रक्षा, रणनीतिक प्रौद्योगिकी, व्यापार और निवेश तथा ऊर्जा सुरक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका वैश्विक कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। प्रधानमंत्री ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की बात दोहराई। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 26 मई को होगी। बैठक में विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर, ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल होंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे अहम है। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास की सपोर्ट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में 20 अरब डॉलर का निवेश किया है।
2: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में 20 अरब डॉलर से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में बोइंग कंपनी के वैश्विक लोक नीति और व्यावसायिक रणनीति के कार्यकारी उपाध्यक्ष जेफ शौकी से मुलाकात की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने विमानन और अंतरिक्ष निर्माण क्षेत्र में भारत अमेरिका सहयोग को आगे बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल से भारतीय व्यापार जगत के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ कनाडा की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। वाणिज्य मंत्रालय ने बताया कि श्री गोयल ओटावा और टोरंटो में द्विपक्षीय बैठक करेंगे जिसका उद्देश्य व्यापार, निवेश और भारत कनाडा व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते पर चल रही बातचीत को आगे बढ़ाना है। इस समझौते के लिए नियम और शर्तें इस साल मार्च में प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की भारत यात्रा के दौरान तय की गई थी।

0: अंतर्गत भूमि मामलों से जुड़े पांचवें उपकार्य समूह की बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। रक्षा मंत्रालय के अपर जन सूचना महानिदेशालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों पक्षों ने ऑपरेशनल तालमेल और द्विपक्षीय सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से सार्थक विचार विमर्श किया। प्रतिनिधिमंडल ने रक्षा सहयोग के नए तरीकों की तलाश के लिए शत्रुजीत ब्रिगेड का भी दौरा किया। सरकार ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के अंतर्गत व्यापक जन परामर्श के लिए मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन या संस्था 21 जुलाई तक मसौदा नियमों पर आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ एक वर्चुअल बैठक के बाद कल कोलकाता में इसकी घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के अंतर्गत मौजूदा लाभार्थियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। श्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की संख्या मौजूदा 117 से बढ़ाकर 469 करने के संबंध में केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया है। महाराष्ट्र की नाशिक अदालत में विशेष जांच दल ने TCS कंपनी के एक केंद्र से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि कल चार आरोपियों मतीन पटेल, निदा खान, दानिशेख और तौसीफ अतहर के खिलाफ अभियोग पत्र दाखिल किया गया। IPL क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने कल लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज 2 मैच खेले जाएंगे। पहले मुकाबले में मुंबई इंडियंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम विवरण में हमारी सभा के शेष रहे प्रमुख कार्यक्रमों का विवरण और उनका प्रसारण समय। छह बजकर 10 मिनट पर आप सुनेंगे चिंतन। 6:15 समय रहेगा भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना का। फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत बाहर आप सुनेंगे 6:45 पर। श्री रामचरितमानस गान ये आप सुनेंगे 7:20 पर। नमस्कार चोरू ये कार्यक्रम साथियों आप सुनेंगे 7:30 पर। 8 आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित पहले समाचार प्रभात और उसके बाद मॉर्निंग न्यूज। 8:30 समय रहेगा गांधी चर्चा का। 9 आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार जिन्हें हम आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से रिले करेंगे। देश गान आप सुन पाएंगे 9:10 पर। पर आप सुनेंगे साहित्य सुगंध में हिंदी वार्ता। बालकों में सृजनशीलता का विकास कैसे करें, वार्ताकार होंगे सत्यनारायण सुथार। बच्चों के लिए कार्यक्रम होगा बाल विहार, समय रहेगा 9:30। 10 आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम जिन्हें हम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से रिले करेंगे। 11 कार्यक्रम विवरण होगा। 11:05 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत। 12 आप सुनेंगे गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुर बहार। माटी के स्वर कार्यक्रम में आप सुन पाएंगे आरती सोनी और साथियों की गाई हुई लोक रचनाएं, समय रहेगा 12:30।

एक बजे आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से रिले करेंगे। महिला जगत कार्यक्रम आप सुन पाएंगे 1:05 पर। दोपहर 2 बजे आप सुनेंगे पहले मिड डे न्यूज और उसके बाद 2:15 पर दोपहर समाचार। इनका रिले आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। शाम 5 बजे युववाणी कार्यक्रम के साथ ही हमारी दूसरी सभा का आगाज होगा। 6 बजे आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से पहले

हिंदी और उसके बाद अंग्रेजी में समाचार। 6:10 समय रहेगा देशकान का। 6:20 पर आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से संस्कृत में समाचार। समाचारों में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, 6:30 पर, 6:40 पर जिले की चिट्ठी और 6:45 पर राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार। इनका रिले आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से किया जाएगा। ग्रामीण श्रोता सुनेंगे अपना पसंदीदा कार्यक्रम खेती और गृहस्थी, समय रहेगा 7:00। 8:00 आप सुनेंगे नए और पुराने रोमांटिक सॉन्ग्स पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता। 9:15 पर आप आनंद लेंगे राजस्थानी लोक संगीत का। 9:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। 10:00 श्रोताओं आप सुनेंगे अखिल भारतीय रविवार स्तरीय संगीत सभा, इसका रिले आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। और रात्रि 11:00 आप सुनेंगे पहले हिंदी और उसके बाद अंग्रेजी में समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित करेंगे।

अभी श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण, हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए चिंतन।

श्रोताओं, जब सुबह उठते हैं तो कई बार ये मन में गहरा सा प्रश्न उठता है। हम सब ब्रह्मांड में एक यात्रा पर हैं, लेकिन ये यात्रा कहाँ की है, बाहर की या भीतर की? हम अक्सर जीवन का अर्थ बाहरी दुनिया की उपलब्धियों में ढूंढते हैं, लेकिन सच तो यह है कि जब तक भीतर का दिया नहीं जलता, बाहर का उजाला बेमानी है। आज हम जीवन के उसी सबसे गहरे सत्य पर बात करेंगे कि कैसे नैतिक मूल्यों में ही निहित है जीवन का सार।

साथियों, जब नैतिक मूल्य शब्द सुनते हैं ना, तो हमें लगता है कि यह सही और गलत की कोई सामाजिक नियमावली है। लेकिन दर्शन की नजर से देखें तो नैतिकता कोई नियम नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धता है। यूनानी सुकरात जो दार्शनिक थे, उन्होंने कहा था कि एक अनजाने और अनपरखे जीवन का कोई मूल्य नहीं है। नैतिक मूल्य जैसे सत्य, करुणा, न्याय, यह कोई ऐसी चीजें नहीं हैं जिन्हें बाहर से ओढ़ा जाए। यह तो हमारी आत्मा का मूल स्वभाव है। जब आप किसी के प्रति करुणा महसूस करते हैं तो वास्तव में आप अपनी आत्मा का विस्तार कर रहे होते हैं। जीवन का सार संचय में नहीं बल्कि विसर्जन में है।

हमारे उपनिषदों में बड़ा ही सुंदर विचार है, अहम ब्रह्मास्मि और तत्वमसि, यानी जो मुझ में है वही तुझ में है। जब एक इंसान इस दार्शनिक सत्य को समझ लेता है तो उसके भीतर से परायेपन का भाव खत्म हो जाता है। आपने कबीर दास जी की ये पंक्तियां तो सुनी ही होगी, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ।

पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई। जी हाँ साथियों, यह प्रेम और सहानुभूति ही सबसे बड़ा नैतिक मूल्य है। जब आप दूसरों के दुख को अपना दुख समझने लगते हैं, तो आप प्रकृति के सबसे ऊंचे नियम से जुड़ जाते हैं। दर्शन कहता है कि शरीर नश्वर है, संपत्ति यहीं छूट जाएगी, तो फिर इस जीवन का सार क्या बचा? केवल वही प्रभाव, वही ऊर्जा और वही प्रेम जो आपने अपने नैतिक आचरण से इस संसार को दिया। आज का आधुनिक मनुष्य एक बहुत बड़े कॉन्फ्लिक्ट द्वंद में जी रहा है। हमारे पास बुद्धि बहुत है, लेकिन विवेक खो गया है। हम चांद पर पहुंच गए हैं, लेकिन पड़ोसी के दिल तक जाने का रास्ता भूल गए हैं। यह जो हमारे भीतर एक खालीपन है, उसे कोई भौतिक सुख नहीं भर सकता। दार्शनिक रूसो ने कहा था कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है, लेकिन हर जगह वह जंजीरों में जकड़ा है। आज हम अपने ही अहंकार और लालच की जंजीरों में बंधे हैं। इन जंजीरों को तोड़ने की चाबी सिर्फ नैतिक मूल्यों के ही पास है साथियों। जब हम ईमानदारी और निस्वार्थ भाव से जीवन जीते हैं, तो हम वास्तव में मुक्त होते हैं।

अभी आप सुन रहे थे चिंतन। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम के आगाज में हरिओम शरण की आवाज में ये प्यारी सी भक्ति रचना सुनिए।

हरी हरन की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे प्यारा सा भजन, और इन्हीं के साथ कविता कृष्णमूर्ति भी हैं, आपको सुनवा रहे हैं प्यारा सा भजन।

कविता कृष्णमूर्ति और हरिहरन की आवाज़ में आप सुन रहे थे भक्ति रचना, और आपको सुनवा रहे हैं हरिहरन की आवाज़ में ये प्यारा सा भजन।

हरिहरन और साथियों की आवाज में गाए हुए इस भजन के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत बहार।

आशा भोसले को अभी आप सुन रहे थे फिल्म मेरे सनम में। मसरूह सुल्तानपुरी ने इस गीत को लिखा और ओपी नैयर ने संगीत दिया। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में सुनिए प्यारा सा गीत। फिल्म का नाम है दो कलियां। साहिब लुधियानवी ने इस गीत को लिखा है और रवि ने संगीत।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: इस छोटे से ब्रेक के बाद एक बार पुनः आपका स्वागत है श्रोताओं आकाशवाणी चूरू पर। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत बहार। मुकेश की आवाज में आप सुन रहे हैं प्यारा सा गीत। फिल्म का नाम है सफर। इंदीवर की शब्द रचना और कल्याण जी आनंद जी का संगीत।

लता मंगेशकर, किशोर कुमार, यशुदास और साथियों की आवाज़ में त्रिशूल फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं। साहिर लुधियानवी ने इस गीत को लिखा है और खय्याम ने संगीत दिया है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं। कागज
1: इस छोटे से ब्रेक के बाद एक बार पुनः आपका स्वागत है श्रोताओं, आप सुन रहे हैं गीत बहार। नया दौर इस फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं आशा भोसले और शमशाद बेगम की आवाज़ों में, साहिर लुधियानवी की शब्द रचना और ओपी नैयर का संगीत।

महेंद्र कपूर की आवाज में सुनिए प्यारा सा गीत। फिल्म का नाम हमराज। साहिर लुधियानवी ने शब्द दिए हैं और रवि ने संगीत।

निकाह फिल्म का गीत आप सुन रहे थे महेंद्र कपूर की आवाज़ में, और इसी के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत बहार अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं, लीजिए सुनिए श्री रामचरित मानस गान। कलाकार सुरेश वाडकर, संगीत सतीश भाटियाकार, कड़ी है 385।

श्रुतियों तथा पुराणों में गाई गई है। एवमस्तु कहकर रघुनाथ जी कहते हैं, हे काक, तू स्वभाव से ही बुद्धिमान है, अतः ऐसा वरदान क्यों करना मांगता। तूने तो सभी सुखों का स्रोत मांग लिया। तेरे समान पड़भागी इस संसार में अन्य कोई नहीं। जिस भक्ति मुनिजन जप और योग की अग्नि में शरीर को जलाकर भी नहीं पाते, वही भक्ति तूने मांगी है। अब तेरे हृदय में सभी गुणों का वास होगा। भक्ति, ज्ञान, विज्ञान, वैराग्य, योग, मेरी लीलाएं और उनका रहस्य तू सहज ही जान जाएगा। माया से उत्पन्न होने वाले भ्रम अब तुझे नहीं व्यापेंगे। यह वरदान देकर

किंतु सबसे अधिक मुझे मनुष्य प्रिय है। उनमें भी वेद के अनुसार धर्माचरण करने वाले, उनमें भी वैराग्य धारण करने वाले, फिर ज्ञानी, ज्ञानियों में भी विज्ञानी, विज्ञानियों में भी अति प्रिय वो

तो साथियों ये बात आप अपने दिमाग में जरूर डाल लें कि जिंदगी में स्वस्थ रहना बहुत बड़ी उपलब्धि है। फिटनेस और फ्रेशनेस की बात तो हो ही रही है, तो दिल को भी थोड़ा रिफ्रेश कर लेते हैं। साथियों प्यारा सा गीत सुनते हैं, चर्चा भी जारी रखेंगे।

साथियों, छुट्टियां सिर्फ खुद के लिए नहीं होती है, ये बात जरूर ध्यान रखें। पूरा साल मम्मी सुबह उठकर आपके लिए टिफिन बनाती है, पापा दिन रात भाग दौड़ करते हैं, इस वेकेशन में उनके चेहरे की मुस्कान बनी है। वीकेंड पर बिना कहे घर की सफाई में हाथ बटा दीजिए या मम्मी के लिए खुद अपने हाथों से एक बढ़िया सा मैंगो शेक या शिकंजी बनाकर सरप्राइज दीजिए। देखना, उनकी वो एक मुस्कान आपकी पूरी छुट्टियों को सफल बना देगी। और हाँ, एक छोटा सा काम और, हमारी छत पर आने वाले उन बेजुबान पक्षियों के लिए एक सकोरे यानी मिट्टी के बर्तन में पानी रखना मत भूलिएगा, वो भी हमारे ही इस जीवन का हिस्सा है ना? तो बस अपनी छुट्टियों को बनाएं सुपर एक्टिव, सुपर यूजफुल और ढेर सारी यादों से भरपूर। कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिए आकाशवाणी चूरू।

0: 27 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: ये आकाशवाणी का प्रसारण है, आप सुन रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी चूरू।
3: इस छोटे से ब्रेक के बाद एक बार पुनः आपका स्वागत है श्रोताओं, आप सुन रहे हैं नमस्कार चूरू। श्रोताओं, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे खजाने की जो हमारे रसोई में सालों से मौजूद है। मौजूद तो है लेकिन आधुनिकता की इस दौड़ में हमने उसे कहीं पीछे छोड़ दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पारंपरिक मोटे अनाज यानी श्री अन्न की। बाजरा, ज्वार, रागी, सावा और कोदो ये सिर्फ अनाज नहीं है बल्कि सेहत के वे सिपाही हैं जो हमें कई बीमारियों से बचाते हैं। जी हाँ, दुनिया जो है साथियों अब इस मिलेट्स की तरफ आ रही है। ऋतु बदल रही है और इस बदलते मौसम में अगर हम अपनी थाली में इन मोटे अनाजों को जगह दें तो डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए आज आपको बताते हैं कि क्यों ये मोटा अनाज हमारी सेहत के लिए सुपर फूड है। साथियों, ये पोषण का पावर हाउस है। श्रोताओं, जिसे हम मोटा अनाज कहते हैं वह असल में गुणों में बहुत बारीक और समृद्ध है। गेहूं और चावल के मुकाबले इनमें आयरन, कैल्शियम, विटामिन बी और प्रोटीन की मात्रा कहीं ज्यादा होती है। उदाहरण के लिए हम बात करें तो रागी में इतना कैल्शियम होता है कि वह हमारी हड्डियों को फौलाद बना सकता है। बात करें दिल का सच्चा दोस्त कौन सा है। साथियों, आजकल दिल की बीमारियां बहुत आम हो गई है लेकिन ज्वार और बाजरे में मौजूद मैग्नीशियम और पोटेशियम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखते हैं और कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने नहीं देते, यानी आपका दिल धड़केगा भी और सुरक्षित भी रहेगा। साथ ही बात कर लें डायबिटीज में क्या है रामबाण। मोटे अनाज का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम होता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि इसे खाने के बाद शरीर में शुगर का लेवल अचानक नहीं बढ़ता। इसलिए शुगर यानी डायबिटीज के मरीजों के लिए तो ये किसी वरदान से कम नहीं है। साथियों, साथ ही बात कर लेते हैं आजकल लोग जो हैं ओबीज यानी मोटापे के शिकार होते जा रहे हैं, तो वजन घटाने और पाचन में क्या है मददगार देखते हैं। क्या आप भी बढ़ते वजन से परेशान हैं? तो आज ही अपनी डाइट में बाजरा या कोदो शामिल करें। जी हाँ, बाजरा अभी के हिसाब से तो थोड़ा गर्म तासीर का होता है, तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे। पहले बता दें कि इनमें भरपूर मात्रा में फाइबर यानी रेशा होता है जिससे पेट देर तक भरा रहता है, बेवजह भूख नहीं लगती और आपका पाचन तंत्र भी एकदम दुरुस्त रहता है।

साथियों, हमारे बुजुर्ग अक्सर कहा करते थे, जैसा अन्न वैसा मन और वैसी ही काया। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हमने पैकेट फूड, पैकेट बंद या प्रोसेस्ड फूड को अपना लिया है, जिसके नुकसान हम रोज देख रहे हैं। मोटे अनाज की सबसे खूबसूरत बात जानते हैं क्या है? इन्हें उगाने में बहुत कम पानी लगता है और ये बिना किसी केमिकल या खाद के आसानी से उग जाते हैं। यानी ये हमारी सेहत के लिए जितने अच्छे हैं, आप समझ सकते हैं हमारी धरती माँ के पर्यावरण के लिए भी ये जाने उतने ही वरदान हैं। तो देर किस बात की साथियों, आज ही अपने भोजन में गेहूं और चावल के साथ साथ ज्वार की रोटी, रागी का डोसा या बाजरे की खिचड़ी को शामिल करें। स्वाद भी मिलेगा और सेहत भी।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: 27 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

0: क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चुरू के साथ। आकाशवाणी चुरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चुरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चुरू, आपकी पहचान हमारी आवाज।
1: साथियों, हम बात कर रहे थे महत्व की, गुणों की, मीठे अनाज की। श्रोताओं, अनाज जो है, मिलेट्स जो है, वो बहुत ही हमारे लिए उपयोगी और महत्वपूर्ण है। श्रोताओं, मीठा खाना किसे पसंद नहीं है, लेकिन आज के समय में शुगर यानी डायबिटीज की बीमारी ने पेट पसार लिए हैं। मीठा देखकर दिल तो कहता है कुछ मीठा हो जाए, लेकिन सेहत गवाही नहीं देती। ऐसे में साथियों, हमें समझ लेना चाहिए मोटे अनाज के फायदों को, जो हम इस चर्चा में सुन रहे थे। हमारे बुजुर्ग हमेशा से जानते थे कि असली सेहत कहाँ है। मोटे अनाज को उगाने में न तो ज़्यादा पानी लगता है, न ही केमिकल, यानी हमारी धरती के लिए भी उतना अच्छे हैं और हमारे शरीर के लिए भी।

साथियों, हाथों की लकीरों में किस्मत नहीं बनती, किस्मत तो उनके हुनर और मेहनत से चमकती है। जी हाँ, हमारे देश की मिट्टी में वो जादू है जहाँ हर गली हर गांव में ऐसे हुनरबाज रहते हैं तो जो बेजान चीजों में भी जान फूंक देते हैं, चाहे वो मिट्टी को आकार देने वाला कुम्हार हो, लकड़ी को तराशने वाला बढ़ई हो या फिर कपड़ों को नया रूप देने वाला दर्जी। इन्हीं पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के हुनर को सलाम करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार की एक बेहद खूबसूरत पहल है पीएम विश्वकर्मा योजना। इसी योजना पर आज हम बात करेंगे, लेकिन साथ में बताते जाते हैं जानकारियां भी और सारी वो बातें जो इसके लिए जरूरी है। श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं पीएम विश्वकर्मा योजना। ये एक सरकारी योजना नहीं है, बल्कि ये है हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत को सहेजने और उसे वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने का एक महाअभियान है। जब हमारा विश्वकर्मा मजबूत होगा तभी तो हमारा भारत आत्मनिर्भर बनेगा।

श्रोताओं, हम भाई बहन जो बढ़ई, लोहार, सुनार या कुम्हार, मूर्तिकार, मोची, नाव बनाने वाले, अस्त्र बनाने वाले या दर्जी जैसे 18 अलग अलग पारंपरिक व्यवसायों से जुड़े हैं, यह योजना उनके जीवन में एक नया सवेरा लेकर आई है। इस योजना के तहत पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र, ट्रेनिंग के दौरान रोजाना 500 रुपए का भत्ता, नए औजार खरीदने के लिए 15,000 की टूल किट सहायता और बिना गारंटी के 3,00,000 रुपए तक का सस्ता लोन सिर्फ 5% ब्याज पर मिलता है। अब हमारे श्रोता सोच रहे होंगे कि ये तो बड़ी अच्छी योजना है, लेकिन इसके लिए पात्र कौन है, इसमें आवेदन कैसे करना है? तो चलिए ध्यान से सुनिए, मैं आपको इसके बारे में विस्तार से बताता हूँ। आयु सीमा की बात करें, आवेदन करने के लिए आपकी उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। पारंपरिक व्यवसाय की बात करें, आप सरकार द्वारा निर्धारित 18 पारंपरिक शिल्पों व्यवसायों जैसे दर्जी, कुम्हार, लोहार, बढ़ई में से किसी एक में सक्रिय रूप से जुड़े हों। साथ ही सबसे जरूरी बात, परिवार

के केवल एक ही सदस्य को इस योजना का लाभ मिल सकता है। अन्य योजना का लाभ न लिया हो ये भी बात जरूरी है, यानी अगर आपने पिछले 5 साल में केंद्र या राज्य सरकार की किसी अन्य स्वरोजगार योजना जैसे कि पीएम स्वनिधि योजना या मुद्रा लोन के तहत सरकारी ऋण लिया है तो आप इसके पात्र नहीं होंगे। साथ ही परिवार में कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए। श्रोताओं, आवेदन करना बहुत ही आसान है, आपको किसी सरकारी दफ्तर के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। आपको करना क्या है, सबसे पहले आप अपने नजदीकी जनसेवा केंद्र CSC पर जाएं। अपने साथ आधार कार्ड, मोबाइल नंबर जो आपके आधार से लिंक हो, बैंक खाते की पासबुक और राशन कार्ड जरूर ले जाएं। साथ ही वहां आपका बायोमेट्रिक यानी अंगूठे का निशान लेकर पोर्टल पर मुफ्त में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर दिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन के बाद ग्राम पंचायत या स्थानीय निकाय स्तर पर आपके काम का सत्यापन होगा और मंजूरी मिलते ही आपका डिजिटल कार्ड और सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा। तो है ना कमाल की और आसान बात, यानी हुनर आपका और तरक्की की जिम्मेदारी सरकार की। तो देर किस बात की, आज ही आप इस योजना का लाभ उठाएं।

0: श्रोताओं कार्यक्रम समाप्त करने की इजाजत दें। आपके रेडियो साथी चंद्र प्रकाश बेदी को फिर से मिलेंगे इसी वादे के साथ। नमस्कार। अभी श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार चूरू। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। 8 बजने वाले हैं। अब से थोड़ी ही देर बाद आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से पहले समाचार प्रभात और उसके बाद मॉर्निंग न्यूज का रिले किया जाएगा। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा करें।
1: हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
2: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना जुलाई से लागू होगी। स्वास्थ्य साथी योजना के लाभार्थी भी इसमें शामिल होंगे। महाराष्ट्र विशेष जांच दल ने नाशिक TCS दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 4 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ समझौते पर काफी हद तक सहमति बनी, हॉर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलना भी शामिल। मौसम विभाग ने दिल्ली सहित उत्तरी, मध्य और पूर्वी भारत में आज भीषण लू की आशंका व्यक्त की। और गुरविंदर सिंह ने रांची में फेडरेशन कप एथलेटिक्स में राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। वे क्षेत्रीय और वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों सहित कई विषयों पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्री रूबियो कल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए 4 दिन की यात्रा पर भारत पहुंचे।
4: क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक मंगलवार को होगी। बैठक में विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर, ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड की परिकल्पना के अनुरूप प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने पर विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में क्वाड की वर्तमान पहलों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी और हिंद प्रशांत क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों तथा आपसी चिंता के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा होगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
3: श्री रूबियो ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें रक्षा, रणनीतिक प्रौद्योगिकी, व्यापार और निवेश तथा ऊर्जा सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका वैश्विक कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। प्रधानमंत्री ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की बात दोहराई और बातचीत तथा कूटनीति के जरिए संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान की अपनी अपील को दोहराया। विदेश मंत्री रूबियो ने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय वैश्विक मुद्दों पर अमरीकी दृष्टिकोण साझा किया। उन्होंने भारत को अमरीका का अत्यंत महत्वपूर्ण साझेदार बताया। इस बीच श्री रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास की सपोर्ट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में $20 अरब का निवेश किया है।
5: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में $20 अरब से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
3: पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ वर्चुअल बैठक के बाद कल कोलकाता में इसकी घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के अंतर्गत मौजूदा लाभार्थी को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। आयुष्मान भारत आरोग्य मंदिर के संबंध में अगले महीने सहमति पत्र पर नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए जाएंगे। श्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की संख्या मौजूदा 117 से बढ़ाकर 469 करने के संबंध में केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अलीपुरद्वार, कालिम्पोंग और दक्षिण दिनाजपुर जिलों में नए मेडिकल कॉलेज खोलने और उत्तर बंगाल के लिए एक नए एम्स के प्रस्ताव भी केंद्र सरकार को भेजा गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना के साथ साथ स्वास्थ्य विशेषज्ञों और चिकित्सा पेशेवरों का प्रशिक्षण भी बहुत महत्वपूर्ण है। वे कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान बोर्ड के 23वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में स्वस्थ भारत की परिकल्पना विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने में प्रमुख भूमिका निभाएगी।
6: हम सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में 2047 तक विकसित भारत बनाना है। जब हम 2047 तक विकसित भारत की बात करते हैं तो स्वास्थ्य और स्वस्थ भारत एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि जब हम स्वस्थ होंगे तभी सफलता प्राप्त कर सकते हैं।
3: सरकार ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के तहत व्यापक जन परामर्श के लिए मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन या संस्था 21 जून तक मसौदा नियमों पर आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। एक रिपोर्ट।
7: विकसित भारत जी राम जी एक्ट ने 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह ली है। नए कानून के तहत अब एक वित्तीय वर्ष में रोजगार की गारंटी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। मंत्रालय के अनुसार इस कानून के मसौदा नियम धारा 33 और अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत तैयार किए गए हैं। मंत्रालय ने बताया कि मसौदा नियमों को जनता से सुझाव और राय लेने के लिए सार्वजनिक किया गया है। इनमें संक्रमण प्रावधान नियम, राष्ट्रीय स्तर संचालन समिति नियम, केंद्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद नियम, प्रशासनिक खर्च नियम और शिकायत निवारण नियम शामिल हैं। नए कानून में मजदूरी का भुगतान समय पर पारदर्शी और जवाबदेही के साथ करने पर विशेष जोर दिया गया है। इसके अलावा तय समय के भीतर काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान किया गया है। वीबीजी रामजी एक्ट 2025 को इस महीने की 11 तारीख को अधिसूचित किया गया था और यह इस साल 1 जुलाई से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: महाराष्ट्र की नाशिक अदालत में विशेष जांच दल ने TCS कंपनी के एक केंद्र से संबंधित दुष्कर्म और

0: धर्मांतरण मामले में 1500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि कल 4 आरोपियों मतीन पटेल, निदा खान, दानिश शेख और तौसीफ अतर के खिलाफ अभियोग पत्र दाखिल किया गया। उन्होंने कहा कि इस मामले में अगले कुछ दिन में 7-8 अन्य आरोपियों के खिलाफ अतिरिक्त आरोप पत्र दाखिल होने की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल से बातचीत के बाद ईरान के साथ एक समझौते पर काफी हद तक सहमति बन चुकी है। उन्होंने कहा कि समझौते में होर्मुज जल डमरू मध्य खोलना भी शामिल है। एक रिपोर्ट।
3: श्री ट्रंप ने कहा कि समझौते के अंतिम पहलुओं और विवरणों पर चर्चा जारी है, शीघ्र ही इसकी घोषणा की जाएगी, लेकिन उन्होंने समझौते की समय सीमा के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि समझौते के बारे में इजराइल के साथ सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, जॉर्डन और बहरीन से बात की गई है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकाई ने अमरीकियों पर विरोधाभासी बयान देने का आरोप लगाया। अमेरिका और ईरान के बीच 8 अप्रैल को युद्ध विराम पर सहमति बनी थी और तब से दीर्घकालिक शांति समझौते के लिए बातचीत जारी है। अमेरिका द्वारा ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी के कारण ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य को बंद कर दिया है। समझौते को लेकर मुख्य रुकावटें ईरान के परमाणु कार्यक्रम के भविष्य और होर्मुज जल डमरू मध्य पर उसके प्रभाव तथा क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य उपस्थिति से संबंधित रही है। समाचार कक्ष से चंद्रशेखर शर्मा।
0: अमेरिका में व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी की घटना हुई है। घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने इलाके को घेरकर हाई अलर्ट जारी कर दिया है। इस बीच सीक्रेट सर्विस ने घटना स्थल के पास ही एक संदिग्ध व्यक्ति को गोली मार दी। इस दौरान एक नागरिक भी गोली लगने से घायल हो गया। घटना के समय अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में ही मौजूद थे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल से भारतीय व्यापार जगत के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ कनाडा की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। वाणिज्य मंत्रालय ने बताया कि श्री गोयल ओटावा, टोरंटो में द्विपक्षीय बैठक करेंगे, जिसका उद्देश्य व्यापार, निवेश और भारत कनाडा व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते CEPA पर चल रही बातचीत को आगे बढ़ाना है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ के कुछ क्षेत्रों में आज भीषण लू चलने की आशंका व्यक्त की है। बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, पश्चिमी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों में भी ऐसा ही मौसम रहेगा। गुरविंदर सिंह ने रांची में फेडरेशन कप एथलेटिक्स प्रतियोगिता में पुरुषों की 100 मीटर स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीत लिया है। उन्होंने 10.09 सेकंड के नए राष्ट्रीय कीर्तिमान के साथ ये उपलब्धि हासिल की। गुरविंदर का पिछला कीर्तिमान 10.17 सेकंड था। इसके साथ ही उन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालिफाई भी कर लिया है। अनिमेश कुजूर ने 10.20 सेकंड के साथ रजत पदक जीता। प्रणव प्रमोद को 10.29 सेकंड के साथ कांस्य पदक मिला। आईपीएल क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने कल लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज 2 मैच खेले जाएंगे। पहले मुकाबले में मुंबई इंडियंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच दोपहर 3:30 बजे से मुंबई में खेला जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सोमवार को नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर आकाशवाणी अपनी श्रृंखला आकाशवाणी पर पीपल्स पद्म के 16 कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है। इस श्रृंखला में पद्म पुरस्कार विजेताओं के कार्यों और जीवन के बारे में जानकारी दी जाएगी। इनका प्रसारण कल सोमवार को 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर किया जाएगा। श्रोताओं से अनुरोध है कि वे आज और कल सुबह 9:10 से आकाशवाणी से जुड़े रहें। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
4: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कल 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपने के दौरान ये कहना कि देश के नौजवानों को मिले ग्लोबल एक्सपोजर लोक सत्य में है। दैनिक जागरण की सुर्खी है, प्रधानमंत्री ने कहा, युवाओं को ध्यान में रखते हुए ही हमने किए हैं अंतर्राष्ट्रीय समझौते। अमरीका के विदेश

0: मंत्री मार्को रूबियो के भारत दौरे को भी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान कहता है मोदी से मिले रूबियो, अमेरिका आने का न्योता। नव भारत टाइम्स के अनुसार रूबियो से मिलकर पीएम बोले बात से निकले संघर्ष का हल। रूबियो की भारत यात्रा पर दैनिक जागरण अपने संपादकीय में लिखता है कि उनके भारत दौरे की शुरुआत के बाद जिस तरह उन्होंने अपने समकक्ष से मिलने की परंपरा को तोड़ते हुए प्रधानमंत्री से मुलाकात की, ये प्रतीत होना स्वाभाविक है कि वे दोनों देशों के संबंधों को प्रगाढ़ करने में विशेष दे रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह के महाप्लान स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट पर लोकसत्ता ने संपादकीय में लिखा है कि गृहमंत्री की ये परियोजना वक्त की नजाकत को देखते हुए समीचीन है कि भारत के लिए आवश्यक भी है। अखबार के अनुसार घुसपैठियों को रोकने के लिए हमारी सीमाएं मुस्तैद और सुरक्षित होनी जरूरी है। केंद्र सरकार का जिमखाना क्लब की जमीन 5 जून तक सरकार को सौंपने का समाचार अमर उजाला सहित सभी अखबारों में है। पंजाब केसरी के अनुसार सरकार का कहना है कि ये भूखंड रक्षा बुनियादी ढांचे को मजबूत और सुरक्षित करने के लिए आवश्यक है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 12वीं कक्षा की आंसर शीट की स्कैन कॉपी के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की जानकारी दैनिक भास्कर ने विस्तार से दी है। देश का बड़ा हिस्सा भीषण लू की चपेट में शीर्षक से जनसत्ता लिखता है, गर्म हवाओं से मस्तिष्क और आंखों पर पड़ रहा है बुरा असर। पत्र ने चिकित्सकों की सलाह को भी प्रमुखता दी है कि गंभीर सिरदर्द, चक्कर आना और बेहोशी जैसे लक्षण दिखते ही तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। राजस्थान पत्रिका ने इस वैश्विक अध्ययन को प्रमुखता से दिया है कि मुंबई विश्वविद्यालय ने दुनिया को दिए 31 अरबपति। पत्र ने इसे भारतीय सपनों की जीत बताते हुए लिखा है दुनिया में सबसे अधिक अरबपति बनाने वाले विश्वविद्यालयों की सूची में ये 10वें नंबर पर पहुंच गया है।
1: धन्यवाद फरत। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना जुलाई से लागू होगी, स्वास्थ्य साथी योजना के लाभार्थी भी इसमें शामिल होंगे। महाराष्ट्र विशेष जांच दल ने नाशिक TCS दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 4 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरान के साथ समझौते पर काफी हद तक सहमति बनी, होर्मुज जल डमरू मध्य को फिर से खोलना भी शामिल। मौसम विभाग ने दिल्ली सहित उत्तरी मध्य पूर्वी भारत में आज भीषण लू की आशंका व्यक्त की। और गुरविंदर सिंह ने रांची में फेडरेशन कप एथलेटिक्स में राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Akashwani presents Morning News. Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar to hold bilateral talks with US Secretary of State Marco Rubio in New Delhi today. Ayushman Bharat scheme to be rolled out in West Bengal from July. Swasth Sathi beneficiaries to be included. Maharashtra SIT files charge sheet against 4 accused in Nashik TCS sexual assault and religious conversion case. US President Donald Trump says Iran deal including reopening of Strait of Hormuz largely negotiated. IMD forecasts severe heat wave conditions in some parts of northern, central and eastern India, including Delhi today. And in athletics, Gurinderveer Singh wins men's 100-meter gold with new national record at Federation Cup in Ranchi. And now the news in detail. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar will hold bilateral talks with US Secretary of State Marco Rubio at Hyderabad House in New Delhi today. They will discuss a wide range of issues related to regional and global peace and security. Secretary Rubio arrived in India yesterday on a 4-day visit to participate in the Quad Foreign Ministers meeting.
3: The Quad Foreign Ministers meet will be held on the 26th of this month. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar, Australian Foreign Minister Penny Wong, Japan's Foreign Minister Toshimitsu Motegi and US Secretary of State Marco Rubio will participate in the meet. In keeping with the Quad vision for a free and open Indo-Pacific, they will exchange views on advancing Quad cooperation across priority areas, review progress on ongoing Quad initiatives and reflect on the recent developments in the Indo-Pacific region. Region and other international issues of mutual concern. With Suparna Sakya, Priya Mondal, Akashwani News, Delhi.
2: Secretary Rubio called on Prime Minister Narendra Modi yesterday and briefed him on the sustained progress.

श्रोताओं नमस्कार, आप निरंतर सुन रहे हैं हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग में से उद्धृत अंश। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे हमारे पूज्य बापू के जीवन में खादी का जन्म किस प्रकार हुआ। अपनी ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ में हमारे राष्ट्रपिता लिखते हैं,

मुझे याद नहीं पड़ता कि सन 1908 तक मैंने चरखा या करघा कहीं देखा हो। फिर भी मैंने हिंद स्वराज में यह माना था कि चरखे के जरिए ही हिंदुस्तान की गरीबी मिट सकती है, और यह तो सबके समझ सकने जैसी बात है कि जिस रास्ते भुखमरी मिटेगी उसी रास्ते स्वराज्य मिलेगा। सन 1915 में मैं दक्षिण अफ्रीका से हिंदुस्तान वापस आया।

मैंने चरखे के दर्शन नहीं किए थे। आश्रम के खुलते ही उसमें करघा शुरू किया था। करघा शुरू करने में भी मुझे बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा था। हम सब अनजान थे, अतएव करघे के मिल जाने भर से करघा चल नहीं सकता था। आश्रम में हम सब कलम चलाने वाले या व्यापार को जानने वाले लोग इकट्ठा हुए थे। हम में कोई कारीगर नहीं था, इसलिए करघा प्राप्त करने के बाद बुनाई सिखाने वाले की आवश्यकता पड़ी। काठियावाड़ और पालनपुर से करघा मिला और एक सिखाने वाला आया। उसने अपना पूरा हुनर नहीं बताया, परंतु मगनलाल शुरू किए हुए काम को जल्दी छोड़ने वाले नहीं थे। उनके हाथ में कारीगरी तो थी ही, इसलिए उन्होंने बुनने की कला पूरी तरह समझ ली थी और फिर आश्रम में एक के बाद एक नए नए बुनने वाले तैयार हो चुके थे। हमें तो अब अपने कपड़े तैयार करके पहनने थे, इसलिए आश्रम वासियों ने मिल के कपड़े पहनना बंद कर दिया था और यह निश्चय किया था कि वे हाथ करघे पर देसी मिल के सूत का बुना हुआ कपड़ा पहनेंगे। ऐसा करने से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। हिंदुस्तान के बुनकरों के जीवन की, उनकी आमदनी की, सूत प्राप्त करने में होने वाली कठिनाइयों की, इसमें वे किस प्रकार ठगे जाते थे और आखिर किस प्रकार दिन ब दिन कर्जदार होते जाते थे, इन सब की जानकारी हमें मिली। हम स्वयं अपना सब कपड़ा तुरंत बुन सकें, ऐसी स्थिति तो थी ही नहीं। इस कारण से बाहर के बुनकरों से हमें अपनी आवश्यकता का कपड़ा बुनवाना पड़ता था। देशी मिल के सूत का हाथ से बुना कपड़ा झट मिलता नहीं था। बुनकर सारा अच्छा कपड़ा विलायती सूत का ही बुनते थे, क्योंकि हमारी मिलें सूत काटती नहीं थी। आज भी वे महीन सूत अपेक्षाकृत कम ही काटती हैं। बहुत महीन तो काट ही नहीं सकती। बड़े प्रयत्न के बाद कुछ बुनकर हाथ लगे, जिन्होंने देसी सूत का कपड़ा बुन देने की मेहरबानी की। इन बुनकरों को आश्रम की तरफ से यह गारंटी देनी पड़ी थी कि देसी सूत का बना हुआ कपड़ा खरीद लिया जाएगा। इस प्रकार विशेष रूप से तैयार कराया हुआ कपड़ा बुनवाकर हमने पहना और मित्रों में उसका प्रचार किया।

यूं तो हम काटने वाले मिलों के अवैतनिक एजेंट बने, मिलों के संपर्क में आने पर उनकी व्यवस्था की और उनकी लाचारी की जानकारी हमें मिली। हमने देखा कि मिलों का ध्येय खुद काटकर खुद ही बुनना था। वे हाथ करघे की सहायता स्वेच्छा से नहीं बल्कि अनिच्छा से करते थे। यह सब देखकर हम हाथ से काटने के लिए अधीर हो उठे। हमने देखा कि जब तक हाथ से काटेंगे नहीं तब तक हमारी पराधीनता बनी रहेगी। मिलों के एजेंट बनकर देश सेवा कर रहे हूं ऐसा हमें प्रतीत नहीं हुआ, लेकिन ना तो कहीं चरखा मिलता था और न ही कहीं चरखा चलाने वाले मिलते थे। एक बार एक वकील साहब एक वकील की बहन जी को खोज कर लाए। उन्होंने कहा, यह बहन सूत काट कर दिखाएगी। उसके पास एक आश्रमवासी को भेजा गया जो इस विषय में कुछ बता सकता था। सन 1917 में मेरे गुजराती मित्र मुझे भड़ोत शिक्षा परिषद में घसीट ले गए थे। वहां एक महासाहसी बहन गंगाबाई मुझे मिली। वे पढ़ी लिखी अधिक न थी पर उनमें हिम्मत और समझदारी असाधारण।

साधारणतया जितनी शिक्षित बहनों में होती है उससे कहीं अधिक थी। उन्होंने अपने जीवन में अस्पृश्यता की जड़ काट डाली थी। वे बेधड़क अंत्यजों से मिलती थी और उनकी सेवा करती थी। उनके पास पैसा था पर उनकी अपनी आवश्यकताएं बहुत कम थी। उनका शरीर कसा हुआ था और चाहे जहां अकेले जाने में उन्हें जरा भी झिझक नहीं थी। वे घोड़े की सवारी के लिए भी तैयार रहती थी। इन बहन का विशेष परिचय गोधरा की परिषद में प्राप्त हुआ। अपना दुख मैंने उनके सामने रखा और दमयंती जिस प्रकार नल की खोज में भटकी थी उसी प्रकार चरखे की खोज में भटकने की प्रतिज्ञा करके उन्होंने मेरा बोझ हल्का कर दिया था। श्रोताओं, आज आप सुन रहे थे हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन में खादी का जन्म किस प्रकार हुआ और किस प्रकार उन्होंने चरखा प्राप्त करने की जद्दोजहद की।

अभी आप सुन रहे थे गांधी चर्चा। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए समूह सुरों में देशगान।

0: अभी आप सुन रहे थे समूह सुरों में देशगान। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं।
1: क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के साथ। आकाशवाणी चूरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चूरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चूरू, आपकी पहचान हमारी आवाज। ये आकाशवाणी का प्रसारण है, आप सुन रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी चूरू।

नमस्कार साथियों, मैं हूं चंद्र प्रकाश बेदी। साथियों, हम बात करने वाले हैं कि मई और जून का महीना चल रहा है। सूरज देवता इस समय पूरे शवाब पर है। राजस्थान की तपती रेतीली धरती से लेकर देश के कोने कोने तक पारा 45 डिग्री के पार जा रहा है। आसमान से मानो आग बरस रही है। ऐसे में मौसम विभाग ने भी हीट वेव यानी लू का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। लेकिन साथियों, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं कि इस भीषण गर्मी और थफेड़े मारती लू के बीच खुद को और अपने परिवार को कैसे सुरक्षित और

कूल रखना है। तो रेडियो की वॉल्यूम से आप बढ़ा लीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनट आपकी सेहत के लिए बेहद कीमती है। साथियों, सबसे पहला और बड़ा नियम, बिना काम दोपहर के समय बाहर निकलने से बचें। खासकर सुबह 11 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक, जब धूप सबसे ज्यादा तीखी होती है। लेकिन भाई, काम तो करना ही पड़ेगा, पेट का सवाल है, दफ्तर जाना है, खेत पर जाना है, तो अगर बाहर जाना मजबूरी है तो इन बातों को अपनी आदत बना लीजिए। खाली पेट कभी न निकले, यानी घर से हमेशा कुछ खाकर और भरपूर पानी पीकर ही बाहर कदम रखें। साथ ही कपड़ों का सही चुनाव करें, यानी तंग और गहरे रंग के कपड़े गर्मी सोखते हैं, इसलिए ढीले ढाले हल्के रंग के सूती कॉटन जो है कपड़े ही पहने। साथ ही हमें कुछ सुरक्षा कवच भी अपनाने हैं, जैसे बाहर निकलते समय सिर को सूती कपड़े या गमछे से ढकें, टोपी लगाएं, चश्मा पहने और छाते का इस्तेमाल जरूर करें। साथ ही जूते चप्पल की बात कर लें तो राजस्थान और उत्तर भारत की सड़कें इस वक्त तवे जैसी उबल रही है, भूल कर भी नंगे पांव बाहर ना निकलें। चलिए अब बात करते हैं खान पान की। गर्मी में शरीर का पानी पसीने के रास्ते तेजी से बाहर निकलता है, इसलिए हमें शरीर का वाटर लेवल मेंटेन रखना होता है। प्यास न भी लगे तो भी हर आधे घंटे में पानी पीते रहें, सिर्फ सादा पानी ही क्यों। हमारे देश में और खासकर हमारे राजस्थान में तो गर्मी से लड़ने के अमृत मौजूद है, याद है ना, देशी कोल्ड ड्रिंक। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं छाछ मट्ठा की, राबड़ी, केरी का पन्ना, नींबू पानी और पुदीने का शरबत। ये सिर्फ स्वाद ही नहीं बल्कि लू के खिलाफ सबसे बड़े हथियार हैं। साथियों, ताजा फल की बात करें, तरबूज, खरबूजा, ककड़ी और खीरा खाएं, इसमें पानी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। साथ ही कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनसे हमें दूरी बनानी है, चाय, कॉफी, शराब या ज्यादा कार्बोनेटेड कोल्ड ड्रिंक्स पीने से बचें, ये शरीर को अंदर से और सुखाते हैं। साथियों, ये शरीर को सुखाते ही हैं, साथ ही बासी और ज्यादा तेल मसाले वाला खाना खाने से बचें, क्योंकि इसमें इस मौसम में पेट बहुत जल्दी खराब होता है। सावधानी के बाद भी अगर साथियों किसी को लू लग ही जाए तो उसे पहचानना जरूरी है। अगर आपको या आपके पास किसी को बहुत तेज सरदर्द हो, चक्कर आए, उल्टी जैसा मन हो, तेज बुखार के बावजूद पसीना आना बंद हो जाए या कमजोरी से बेहोशी छाने लगे तो समझ जाइए हीट स्ट्रोक यानी लू की चपेट में आने के लक्षण हैं। ऐसे में तुरंत पीड़ित व्यक्ति को किसी ठंडी या छायादार जगह पर ले जाएं, उनके कपड़े ढीले करें, शरीर पर ठंडे पानी की पट्टियां रखें और उन्हें ORS का घोल या नमक चीनी का पानी पिलाएं। और हाँ, हालत में सुधार न होने पर तुरंत डॉक्टर के पास ले जाएं, लापरवाही बिल्कुल भी नहीं। इसके अलावा अपने घर के बुजुर्गों, बच्चों और गर्भवती महिलाओं का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि इन्हें गर्मी बहुत जल्दी प्रभावित करती है और हमारे बेजुबान पक्षियों और पशुओं के लिए भी घर की छत पर या बाहर पानी के परिंदे या प्याऊ रखना मत भूलिएगा। श्रोताओं, जान है तो जहान है, इस गर्मी से डरना नहीं है, सही सावधानियों के साथ इसका सामना करना है। सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, पानी पीते रहिए और मुस्कुराते रहिए। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.7 MHz पर। लीजिए सुनिए देश गान।

अभी आप सुन रहे थे सुमोह सोरोमी देश गान। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9 बजने वाले हैं। अब से थोड़ी ही देर बाद आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा करें।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राज्य सरकार ने ईंधन बचत और सार्वजनिक खर्चों में कटौती के लिए गाइडलाइन जारी की। मंत्रियों के काफिले सीमित होंगे और विदेश यात्रा पर रोक रहेगी। केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, सरकार की देश की सीमाओं को अभेद्य बनाने की योजना से सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होने के साथ घुसपैठ की आशंका समाप्त होगी। स्वायत्त शासन राज्य मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा, राज्य सरकार पंचायत और निकाय चुनाव कराने के लिए तैयार। और प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच कुछ हिस्सों में आंधी बारिश का दौर चला। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने ईंधन बचत और सार्वजनिक खर्चों में कटौती को लेकर सभी सरकारी विभागों के लिए गाइडलाइन जारी की है। इनमें सरकारी खर्चों में कमी लाने, डिजिटल कार्य प्रणाली को बढ़ावा देने और ऊर्जा संरक्षण पर विशेष जोर दिया गया है। वित्त विभाग की ओर से जारी परिपत्र में सरकारी काफिलों में वाहनों की संख्या सीमित करने, राजकीय खर्च पर विदेश यात्राओं पर रोक लगाने और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के निर्देश जारी किए गए हैं। ये भी तय किया गया है कि पेट्रोल डीजल से चलने वाले सरकारी वाहनों को चरणबद्ध तरीके से ई व्हीकल्स में बदला जाएगा। संविदा वाहनों में भी ई व्हीकल्स को प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही राज्य भर में ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए कार्य योजना तैयार करने को कहा गया है। इसके अलावा एक ही दिशा में आने जाने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को कार पोलिंग अपनाने और तात्कालिक रूप से निजी वाहनों का कम से कम उपयोग करने को कहा गया है। ये खर्च नियंत्रण संबंधी दिशा निर्देश सभी सरकारी विभागों, निगमों, बोर्डों, विश्वविद्यालयों और स्वायत्त शासी संस्थाओं पर लागू होंगे। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि राजस्थान में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र का हब बनने की अपार संभावनाएं हैं। श्री वैष्णव कल जयपुर में इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर सेक्टर पर आयोजित संवाद कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने भिवाड़ी में खुले प्रदेश के पहले सेमीकंडक्टर क्लस्टर का जिक्र करते हुए कहा कि इससे करीब 6 करोड़ चिप का उत्पादन होगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बताया कि इस क्लस्टर के जरिए अब तक 20 कंपनियों से 1200 करोड़ रुपए से अधिक की निवेश योजनाएं आकर्षित की जा चुकी हैं। श्री शर्मा ने कहा कि जोधपुर, पाली, मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र और कांकाणी इलाके को सिलिकॉन वैली

0: दिल्ली ऑफ राजस्थान के रूप में विकसित करने की दिशा में काम शुरू किया जा चुका है। केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने केंद्र सरकार की स्मार्ट बॉर्डर अवधारणा के तहत देश की सीमाओं को अवैध बनाने की योजना का स्वागत किया है। श्री शेखावत कल बीकानेर में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इससे सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी और किसी भी तरह की घुसपैठ की आशंका समाप्त हो जाएगी।
1: आने वाले 3 वर्षों में भारत की सीमाएं अवैध हो जाएंगी। हम भारत की सीमाओं को अवैध बनाने के लिए सभी उन्नत टेक्नोलॉजीज का उपयोग करते हुए जहां सीमा पर सीमा की तारबंदी को और अधिक सुदृढ़ करना है उसे सुदृढ़ करते हुए भारत की सीमाएं अवैध बने और भारत में एक भी व्यक्ति घुसपैठिए के रूप में प्रवेश न कर सके इसको सुनिश्चित करेंगे। इस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने सीमावर्ती क्षेत्र का दौरा करना प्रारंभ किया है और हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे बीकानेर से हमारे राजस्थान से क्योंकि भारत में जो पाकिस्तान के साथ में हम सीमा साझा करते हैं उसकी 1/3 से ज्यादा सीमा जो है राजस्थान में है तो राजस्थान के बॉर्डर पर उनका आना राजस्थान की सीमा की सुरक्षा के लिए और राजस्थान की सीमा के बदलते हुए परिदृश्य में भविष्य में आने वाली चुनौतियों को देखते हुए निश्चित रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण होगा।
0: श्री शेखावत ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बीकानेर दौरे की तैयारियों का भी जायजा लिया। श्री शाह का कल रात बीकानेर पहुंचने का कार्यक्रम है। वे 26 मई को सांचू बॉर्डर चौकी का निरीक्षण कर जवानों से संवाद करेंगे। वे सीमा सुरक्षा और विकास कार्यों की समीक्षा के लिए अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। स्वायत्त शासन राज्य मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा है कि राज्य सरकार पंचायत और निकाय चुनाव कराने के लिए पूरी तरह तैयार है। इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग को हर आवश्यक सहयोग दिया जाएगा। श्री खर्रा कल अजमेर में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के आदेशों का अध्ययन कर आगे की कार्रवाई करना निर्वाचन आयोग का काम है।
2: हम तो तैयार हैं, राज्य सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। चुनाव कराने का काम राज्य निर्वाचन आयोग का है। राज्य निर्वाचन आयोग जब भी उचित समझेगा और सरकार से उनको जो मदद की आवश्यकता होगी सरकार वो मदद देने को तैयार है। राज्य निर्वाचन आयोग जब चाहे चुनाव की तैयारी करे।
0: गौरतलब है कि राजस्थान उच्च न्यायालय ने हाल ही में जारी आदेश में कहा है कि पंचायत और निकाय चुनाव अब और टाले नहीं जा सकते। अदालत ने सरकार से चुनाव प्रक्रिया पूरी करने के लिए 31 जुलाई तक की समय सीमा तय की है। साथ ही ओबीसी आयोग की रिपोर्ट और परिसीमन तथा मतदाता पुनरीक्षण का काम 20 जून तक पूरा करने के निर्देश दिए हैं। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने पुष्कर घाटी में बढ़ते सड़क हादसों को गंभीरता से लेते हुए अजमेर जिला कलेक्टर को सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने घाटी के दोनों तरफ हाइट गेज लगाने और बड़े वाहनों की आवाजाही नियंत्रित करने को कहा। श्री देवनानी ने कहा कि पुष्कर लोगों की आस्था का प्रमुख केंद्र है, यहां बड़ी संख्या में लोग आते हैं। ऐसे में घाटी क्षेत्र में सुरक्षित यातायात व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि मेक इन इंडिया पहल के माध्यम से देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है। श्री सिंह ने कल महाराष्ट्र के सावली विहीर औद्योगिक क्षेत्र में तोप के गोले बनाने वाले संयंत्र का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रक्षा क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी लगभग 30-35% है और आने वाले समय में इसे बढ़ाकर 50% तक किया जाएगा।
3: हमने यह समझा सेल्फ रिलायंट इंडिया आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के लिए प्राइवेट सेक्टर की एनर्जी का उपयोग आवश्यक है। इसलिए पॉलिसी रिलेटेड रिफॉर्म्स नीतिगत सुधार भी किए गए। FDI को फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लिबरलाइज किया गया। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल को लागू किया गया। पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट लाई गई। हम लोगों ने एक लंबी लिस्ट मोर देन 5000 आइटम्स की तैयार की है। इस पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट में आइटम्स हैं, हम उनको निर्धारित समय के अंदर हम भारत की धरती पर बनाएंगे, भारतीयों के हाथों से बनाएंगे, हम दुनिया के किसी देश से उसको इम्पोर्ट नहीं करेंगे।
0: प्रदेश में भीषण गर्मी का असर बना हुआ है। हालांकि कल पश्चिमी विक्षोभ के असर से कुछ हिस्सों में आंधी बारिश से लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार जयपुर और भरतपुर संभाग तथा शेखावाटी क्षेत्र में 40

0: 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आंधी चली और हल्की बरसात हुई। वहीं जैसलमेर 45.9 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे गर्म स्थान रहा। बाड़मेर, बीकानेर और फलौदी में भी अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के करीब मापा गया। 44 डिग्री पारे के साथ पिलानी, चित्तौड़गढ़ और कोटा भी प्रचंड गर्मी की चपेट में रहे। राज्य के पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी भागों में गर्म हवाओं का प्रकोप अधिक है। सरहदी जिलों में तापमान सामान्य से 2 से 3 डिग्री अधिक दर्ज किया जा रहा है। अगले कुछ दिनों तक हीटवेव की प्रबल संभावना है। पश्चिमी जिलों में तेज लू और पूर्वी तथा उत्तरी जिलों में हीटवेव के साथ गर्म रातों का ऑरेंज और येलो अलर्ट बताया गया है। इस बीच कल से नौतपा शुरू हो रहा है, ये 2 जून तक चलेगा। ऐसा माना जाता है कि इन दिनों सूरज सबसे ज्यादा तपिश पृथ्वी पर डालता है, जिससे गर्मी बढ़ जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। इसके लिए श्रोता अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1800117800 पर भेज सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार ने ईंधन बचत और सार्वजनिक खर्चों में कटौती के लिए गाइडलाइन जारी की। मंत्रियों के काफिले सीमित होंगे और विदेश यात्रा पर रोक रहेगी। केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, सरकार की देश की सीमाओं को अवैध बनाने की योजना से सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होने के साथ घुसपैठ की आशंका समाप्त होगी। स्वायत्त शासन राज्य मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा, राज्य सरकार पंचायत और निकाय चुनाव कराने के लिए तैयार। और प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच कुछ हिस्सों में आंधी बारिश का दौर चला। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए संवेद स्वरों में देशगान।

0: अभी आप सुन रहे थे संवेद सुरों में देशगान। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए साहित्य सुगंध कार्यक्रम में हिंदी वार्ता, बालकों में सृजनशीलता का विकास कैसे करें। वार्ताकार हैं सत्यनारायण सुथार।
1: बालक स्कूली जीवन से ही बाहर की विशाल दुनिया में झांके, रंग बिरंगे सपनों के सहारे यथार्थ को पहचाने, सफलता की एक एक चिनगारी उठाकर जीवन की अंधेरी पगडंडियों पर रोशनी करे। सृजन निर्जीव वस्तुओं में भी स्पंदन भर देता है, यह स्पंदन भरना ही सृजनशीलता है। सृजन के सहारे बच्चे निश्चय ही एक सजीव दुनिया रचने में समर्थ होते हैं। शिक्षक बालकों को यह जानकारी देवे कि हर रचना की आधार भूमि भाव होता है, जिसकी जड़ें यथार्थ से जुड़ी होती है। बोझ की समस्या से निपटने के लिए सृजन का योगदान महत्वपूर्ण होता है। दिव्य सृजन प्रतिभा के कारण ही कला का विकास संभव है। शिक्षा का उद्देश्य बालक का सर्वांगीण विकास करना है। इस उद्देश्य के लिए ज्ञान के साथ साथ बालक में मानवीय मूल्यों का विकास करना बहुत जरूरी है। प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तर पर बालकों को स्वास्थ्य एवं सफाई, भोजन, आवास, वस्त्र, उत्पादन व सामुदायिक कार्य के साथ साथ सांस्कृतिक व सृजनशीलता के कार्यों का यदि समग्र अभ्यास करा जाए तो बालकों में सीखने की प्रवृत्ति का विकास होगा। बालकों में सृजनशीलता के विकास के लिए कृषि संबंधी कार्य की जानकारी दी जा सकती है। विद्यालय में वाटिका तैयार करना, कंकड़ चुनना, खरपतवार काटना, सिंचाई करना, पेड़ लगाना, पेड़ों में पानी डालना, सब्जी लगाना, खाद डालना, निराई गुड़ाई करना महत्वपूर्ण है। शिक्षक इन सब का चार्ट चित्र बनाए तथा इसके बारे में जानकारी देवे। सृजनशीलता के विकास के लिए विभिन्न प्रकार की सब्जियों में टमाटर, मिर्च, मटर, मूली, गाजर, भिंडी, पालक, आलू, मेथी, धनिया, गोभी, अरबी आदि उगा सकते हैं। शिक्षक आसपास बने कच्चे पक्के झोंपड़े आदि घरों का पालकों से अवलोकन कराएं तथा इसमें काम आने वाली सामग्री की जानकारी देवें। लोहार, सुथार, कुम्हार आदि जो कलात्मक कार्य करता है, शिक्षक उन्हें प्रत्यक्ष रूप से बालकों को दिखाए तथा कई प्रायोगिक कार्य भी कराएं। शिक्षक बालकों से कागज की थैली, लिफाफे, पेन स्टैंड, मकान मॉडल तथा गत्तों व थर्माकोल से विभिन्न प्रकार की झोंपड़ी बनाएं। वस्त्रों की साफ सफाई कैसे करें तथा इन्हें सुरक्षित कैसे रखें, इसकी भी जानकारी देवें। कपड़े धोने की सामग्री, साबुन, पाउडर आदि की जानकारी देवें। शिक्षक कपड़ों की कतरन से फूल पत्तियां बनाना सिखाएं तथा पोशाकों में गोटा, किनारी, मोती, माणकों आदि की जड़ाई करना, साधारण बुनाई, तकिए की खोल सिलना, जबला सिलना, काज काटना, बटन बनाना, बटन लगाना, रुमाल की कढ़ाई करके

सकते हैं। अनुपयोगी सामग्री से उपयोगी सामग्री बनाकर बालकों में सृजनशीलता का विकास कर सकते हैं। सीप से चिड़िया, पुराने कपड़े से गुड़िया, दिया सिलाई, मनुष्य से जानवर, जोकर, फूल आदि बना सकते हैं। मिट्टी से गोल चौकोर, चपटी गोलियां, गमले, दीपक, बर्तन पर फल फूल सब्जियों की आकृति बना सकते हैं। खजूर से झाड़ू बनाना, पंखी, रस्सी, टोकरी, चमड़े व रेगजिन से बैग बटुआ बनाना भी सिखा सकते हैं। विद्यालय में सांस्कृतिक व अनुरंजनात्मक कार्य करवाकर भी शिक्षक बालकों में सृजनशीलता विकास कर सकते हैं। सजावटी कार्य में विद्यालय एवं घर के किसी उत्सव पर सजावट करना, सजावटी वस्तुओं के निर्माण करना, फर्री कागज के फूल, पत्तियां, मालाएं, कागज गत्ते की विभिन्न आकृतियां बनाना, वर्ग आयत त्रिभुज पंचभुज बनाना, टोकरी बनाना, मिट्टी के फूलदान, गमले व बर्तन बनाकर सजावट करना, फर्श की सजावट करना, जमीन पर मांडनों से सजावट करना, रंगोली बनाना, कांच के टुकड़ों, चूड़ियों आदि से सजावटी वस्तुएं बनाना, पुराने रिकॉर्ड्स, कार्डबोर्ड, तख्ती, कपड़ों पर पेंटिंग करना, कार्य मिट्टी के खिलौने बनाना, प्लास्टर ऑफ पेरिस के खिलौने बनाना, मिट्टी कुट्टी का कार्य करवाना, जिल्द शादी का काम, अपनी पुस्तक पर जिल्द चढ़ाना, इन सभी गतिविधियों से बालकों में सृजनशीलता का विकास होता है। साज सजा वस्तुओं में प्लेटिंग कार्ड, निमंत्रण कार्ड बनाना, दस्ताना पुतली व कठपुतली बनाना, प्लास्टिक के तारों से खिलौने बनाना, फोटो फ्रेम बनाना, मोम, सीप, रुई आदि से खिलौने बना सकते हैं। वस्त्रों की कढ़ाई व अलंकरण कार्य से भी बालकों में सृजनशीलता विकास कर सकते हैं। रुमाल पर कपड़े के रंग से पेंटिंग करना, रुमाल पर कढ़ाई करना, तकिए के गिलाफ व कढ़ाई करना, मेटी के कपड़ों पर कढ़ाई से, ट्रे कवर पर कढ़ाई एवं सिलाई, बेबी सूट पर कढ़ाई करना, पेरिकोट के लिए लेस बनाना, दो सिलाइयों से बच्चे के पांव के मोजे बनाना आदि कार्यों से सृजनशीलता का विकास होता है। दैनिक जीवन में हम अनेक वस्तुओं का प्रयोग करते हैं। इन वस्तुओं का उपयोग करने के बाद इन्हें बेकार समझकर फेंक देते हैं, किंतु यदि हम इन वस्तुओं के बारे में जरा भी सोचें तो हम बहुत उपयोगी सामग्री बना सकते हैं। अनुपयोगी सामग्री से उपयोगी सामग्री बनाकर हम बालकों में कलात्मक अभिरुचि का विकास कर सकते हैं। अनुपयोगी सामग्री से गुलदस्ता बनाने के लिए आवश्यक सामग्री लेनी होगी। पाउडर या कोई खाली डिब्बा, सूतली के टुकड़े, राखी, कांच की चूड़ियां, कांच के टुकड़े, फेविकोल आदि। सर्वप्रथम खाली डिब्बों के चारों तरफ सूतली के रंग बिरंगे टुकड़ों को फेविकोल या गोंद की सहायता से डिब्बे पर लपेटिए। सूतली लपेटने के बाद राखी, चूड़ियां, कांच के टुकड़े को डिजाइन बनाकर डिब्बे पर चिपकाइए। गुलदस्ता बन जाने पर डिब्बे के ऊपरी भाग पर एक बड़ा छेद कर इच्छा अनुसार इस पर फूलों से सजा दीजिए। राष्ट्रीय पर्व एवं अन्य उत्सवों पर विद्यालय एवं स्टेज पर मांडना, रंगोली अल्पना बनाकर सजावट कर सकते हैं। इसके लिए कई प्रकार के गीले व सूखे रंगों का प्रयोग किया जा सकता है। दाल, चावल, लकड़ी का बूरा, आटा, हल्दी, मेहंदी तथा विभिन्न प्रकार के फूल पत्तियों तथा घास, चौक, रंग, गेरू, खड़िया, चूना से भी रंगोली बनाकर बालकों में सृजनशीलता का विकास कर सकते हैं। सृजनशीलता के माध्यम से हम बालकों में अपनत्व, लगन, आत्मविश्वास, उचित व्यवहार, स्थानीय समुदाय से मेलजोल के गुण विकसित कर सकते हैं। सृजनशीलता के माध्यम से बाल विवाह, पर्दा प्रथा, निरक्षरता, अंधविश्वास आदि दूर कर बालकों में कुशल नेतृत्व के गुण पैदा कर सकते हैं। चित्रांकन के माध्यम से भी बालकों में सृजनशीलता का विकास कर सकते हैं। शिक्षक बालकों को रेखांकन, रंगों के बारे में जानकारी देवे। रेखांकन के माध्यम से ब्लैक बोर्ड चार्ट पर चित्रांकन करें। सीधी लंबवत, सीधी पड़ी हुई, कर्णवत रेखाएं, कोणीय रेखाएं, एक पुंजी रेखाएं, चक्राकार रेखाएं खींचकर विभिन्न प्रकार के चित्रों का अभ्यास कराएं। बालकों से बाघ, बघेरा, जरख, भेड़िया, जंगली बिल्ली, सियार, मोर, कमेड़ी, मैना, कबूतर, मुर्गा, गाय, भैंस, बकरी, रींच, जरख, नीलगाय, सांबर, चीतल, जंगली सुअर, चिंकारा, तोता, उल्लू, बाज, सांप, बिच्छू, केकड़ा, छिपकली के चित्र का अभ्यास करवाएं। पर्यावरण संबंधी चित्रांकन से भी बालकों में सृजनशीलता का विकास कर सकते हैं। खींप, सिनिया, मुरैला, रोहड़ा, सरकना, इरना, बबुल, कीकर, शीशम, सरेस, झाड़ी, थोर आदि पेड़ पौधों व हरियाली का चित्र बनाकर बालकों में सृजनशीलता का विकास कर सकते हैं। हल जोतते किसान, छाक लाती औरतें, रेवड़ चराते ग्वाले, कुओं, कुंडों से पानी निकालते पुरुष, महिला, सिर पर मटका लाती पनियारी, तालाबों से पानी भरती, प्यासों को पानी पिलाते स्त्री पुरुष के चित्र, वर्षा ऋतु में जल से भीगती युवतियों की छवि तथा

0: उसके पीछे काले काले बादलों की घटा तथा चमकती बिजली की चमक प्रकृति के रहस्यमय मुस्कान का भान कराती के चित्रांकन से भी बालकों में सृजनशीलता का विकास कर सकते हैं। पेड़ प्रकृति के उपहार है, दरख्तों की डालियों एक बुजुर्ग का वह कंधा है जिस पर सिर रखकर हम दुनिया के अपने गम भुला सकते हैं। आजकल प्रदूषण का आवारा भय रेत के समंदर को लहरों पर तैर रहा है। बिना दरख्तों के ये धरती अपनी डूबती खुशी को ढूंढ रही है। आसमान के बादल धरती से दूर भाग रहे हैं, उनकी आवाज़ में बीते लम्हों का दर्द है। इसी दर्द को यदि हम विभिन्न रंगों से कैनवास पर उतार दें तो हमें सृजन का एक अजीब सा सुकून मिलेगा।
1: अभी आप सुन रहे थे साहित्य सुगंध में हिंदी वार्ता, बालकों में सृजनशीलता का विकास कैसे करें। वार्ताकार थे सत्यनारायण सुधार। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए संवेद स्वरों में देश।

अभी आप सुन रहे थे संवेद स्वरों में देशगान। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए बच्चों के लिए पसंदीदा कार्यक्रम बाल विहार।

स्वागत है बच्चों आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम बाल विहार में, और नन्हे मुन्ने प्यारे सभी दोस्तों का आज के इस कार्यक्रम में स्वागत है। आज का ये कार्यक्रम लेकर हाजिर हूँ मैं, आपकी दीदी लीला सहल। तो स्वीकार करें मेरा नमस्कार।

जी बिल्कुल नन्हे दोस्तों, हमें पता है कि आप फिलहाल मस्ती में ही डोल रहे हैं। कारण है आपकी छुट्टियां। और ये जो गर्मी की छुट्टियां हैं वो बार बार तो नहीं आती है, साल में सिर्फ एक बार आती है। और हमारे समय में तो पता है बच्चों, गर्मी की छुट्टियां भी पूरे 2 महीने तक होती थी। और वो समय किस तरीके से निकलता था आप सुनोगे तो आपको भी बड़ी हंसी आएगी। लेकिन अब फिलहाल आपको जो छुट्टियां मिली हुई है, इस छुट्टियों में पता है हमें आप बहुत सारे कार्य कर रहे हैं। और छुट्टियां जब मिल ही गई हैं तो आप बहुत खुश हैं, बहुत प्रसन्न हैं और जो जी चाहे वो आप काम कर रहे हैं। लेकिन आपको छुट्टियां जो आपकी है बच्चों, तो उसमें आपको ऐसे ही इसको नहीं फिजूल में गंवाना है। आपको कुछ ऐसे कार्य भी करने हैं जो आपके लिए सदुपयोगी हो। जैसे कि अगर आपकी रुचि संगीत में है तो आप इस समय संगीत सीखिए, खेलिए कूदिए, पेंटिंग है, ड्राइंग है। और पढ़ाई के साथ साथ हमें पता है स्कूल में ये सब चीज़ें सिखाई जाती है, लेकिन अगर आपकी इन चीज़ों में किसी एक में विशेष रुचि होती है तो आप गर्मियों की छुट्टियों में इनका बड़ी दिलचस्पी से इनका सदुपयोग भी करते हैं। लेकिन मैं तो आपको ये कहूँगी कि इन छुट्टियों में इनके साथ साथ आपको थोड़ा प्रकृति से भी जुड़ना चाहिए। और प्रकृति से जुड़ने के लिए आपको जो सुबह और शाम का जो समय होता है आपका, वो आपके लिए बेस्ट होता है। क्योंकि गर्मी जो है वो बहुत तेज है, तो इस समय तो हम आपको नहीं कहेंगे कि आप घर से बाहर निकले, लेकिन जो समय सुबह और शाम का होता है उसमें आप अपना सदुपयोग कर सकते हैं। जैसे कि जो पेड़ पौधे होते हैं, आपको तो शायद पूरे पेड़ पौधे, पत्तियों, पक्षियों का नाम शायद पता नहीं होगा, लेकिन आप प्रकृति से जैसे जुड़ते हैं तो इन सब चीजों का आपको पता चलता है। जैसे जैसे कि आप पेड़ों की

प्रकृति बना सकते हैं। और इन चीजों से प्रकृति में अपनी पसंद की चीजों का चित्र आप बना सकते हैं, उनमें रंग भर सकते हैं। इन फूलों और पत्तियों का जो प्रकृति से जुड़ी हुई है, इनका आप प्रयोग कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आप अगर घर में बागवानी है, अगर घर में पेड़ पौधे लगे हुए हैं, आसपास गली मोहल्ले में हैं, तो भी आप इनके बारे में सीख सकते हैं। और साथ ही साथ बच्चों, आप बगीचों में गमलों में जो फूल पेड़ पौधे या फल सब्जियां होती है, उनको लगाने में मदद कर सकते हैं। और इसके साथ साथ सुबह शाम आप उसमें पानी भी डाल सकते हैं। जब आप पानी डालेंगे, पौधों के पास जाएंगे, देखेंगे, तो विभिन्न प्रकार के जो पौधे हैं उनके बारे में आप उनका नाम भी जानेंगे, फूलों के बारे में जानेंगे, सब्जियों के बारे में जानेंगे। और हमें पता है कि ये जो नन्हे दोस्त हैं वो बहुत उत्सुक होते हैं और अग्रेसिव भी होते हैं, उन्हें नई नई चीजें जानने का बहुत कौतूहल होता है। तो घर में जो छोटे बड़े होते हैं या आस पड़ोस में, आपको जरूर मतलब बड़े जो पेड़ होते हैं, छोटे पेड़ होते हैं, आपको कुछ में अजूबा भी लगता है, लेकिन आप अगर सीखने के इच्छुक होते हैं और उत्सुक होते हैं तो जरूर उनका नाम जान ही लेते हैं। तो प्रकृति में बहुत सारे पौधे, बहुत सारे पेड़ ऐसे होते हैं बच्चों, जिनका नाम हम बड़ों को भी इतना पता नहीं होता है, लेकिन प्रकृति से जैसे आप जुड़ते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारे पौधे, बहुत सारे फूल ऐसे होते हैं रंग बिरंगे, जिनको देखकर ही हमारा दिल खुश हो जाता है और बार बार हमारा मन करता है कि हम उस पौधे को देखें, हम उस पेड़ के पास जाएं, पेड़ पर चढ़ें, टहनियों पे से खेलें, पत्तियों को इकट्ठा करें, फूलों को इकट्ठा करें और एक चित्र बनाएं। इस तरीके से आप धीरे धीरे प्रकृति से जुड़ते हैं और अपने और दोस्तों को भी जोड़ते हैं। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे पशु पक्षी और ऐसे जानवर भी होते हैं जिनके बारे में सीखना, जिनसे मिलना और जिनको देखना आपके लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि आप उनसे जुड़ते हैं, उन नामों को जानते हैं। और प्रकृति से, जानवरों से जुड़ने का, उनके नाम याद करने का, रटने की जरूरत नहीं होती, जानने का यही होता है कि आप प्रत्यक्ष रूप से उनके पास जाओ, उनको देखो, उनके साथ खेलो। जैसे कि आप चिड़ियाघर है, एक्वेरियम है और जंगल है, तो विभिन्न प्रकार के जानवर, जैसे कि वैसे तो फोन के द्वारा, मोबाइल के द्वारा हम कहानियां सुनते हैं, चित्र देखते हैं और प्रकृति को देखते हैं, तो हम बहुत सारे चीजों के बारे में जान भी जाते हैं। लेकिन बच्चों, जैसे आप कहीं पर घूमने के लिए जाते हैं, माना कि आप चिड़ियाघर में जाते हैं, तो चिड़ियाघर में विभिन्न प्रकार के जानवरों से, पक्षियों से आपकी मुलाकात होती है, आप उनसे, उनको देख सकते हैं और उनसे बात भी कर सकते हैं और उनके नाम के बारे में आप जान सकते हैं। तो धीरे धीरे ये जो पेड़ पौधे हैं, प्रकृति है, पशु पक्षी है, जानवर हैं, इनके बारे में जानने को आपको मौका मिलता है और धीरे धीरे आपकी याददाश्त जो है वो भी बड़ी मजबूत हो जाती है और सीखने का आपका विकास होता है। ऐसे ही बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में आप जुड़कर ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। जैसे पर्यावरण को सुरक्षित रखना है तो कैसे करोगे आप? पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए, जैसे घर में बड़े आपको कहते हैं कि भाई आप कचरा जो है वो मत फैलाइए बच्चों, तो आप उनकी बातों को ध्यान से सुनते हैं, और सुनना भी चाहिए बच्चों, क्योंकि कचरा फैलाना या प्रकृति को प्रदूषित करना ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम है प्रकृति को स्वच्छ बनाए रखना, और इसके लिए सबसे बड़ा अहम जो योगदान होता है वो आप बच्चों का ही होता है। आप प्रकृति के बारे में, स्वच्छता के बारे में सीखते हैं तो आप भी अपने जीवन में उसी तरह से आगे उन चीजों को अपना सकते हैं। मान लीजिए आपने कोई चित्र बनाया है, आपने होमवर्क किया है या आप कोई गेम खेल रहे हैं, तो जो कचरा होता है उसको आप एक जगह इकट्ठा करके डस्टबिन में डालिए। ये नहीं कि आपने यदा कदा यहाँ कहाँ फैला दिया है, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि एक तो आपकी आदत जो है वो खराब होती है, दूसरे प्रकृति का जो वातावरण है उसको आप खराब कर रहे हैं। इसके साथ साथ आप जो प्रकृति से जुड़ते हैं ना बच्चों, तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिनके बारे में आपको ज्ञान होता है। मान लीजिए आप कहीं घूमने के लिए गए हैं तो बहुत सारी नदियां हैं, समुद्र है, पेड़ पौधे हैं, पत्थर

उनमें भी आप देखोगे समुद्र में रंग बिरंगे पत्थर होते हैं। पत्थरों के बारे में आप जानोगे, पानी के बारे में आप जानोगे, और नदियां भी विभिन्न प्रकार की है। अगर आप जगह जगह बार बार घूमने के लिए जाते हैं तो आप प्रकृति से जुड़ते हैं, और बार बार आप फिर यही कहेंगे कि गर्मियों की छुट्टियां जब आती है तो हम कहीं घूमने के लिए जाएंगे। और जाना भी चाहिए, क्योंकि घूमना जो है वो हमें प्रकृति से जोड़ता है, इसलिए इन सब चीजों का आपको ज्ञान भी करवाता है।

0: पुलिस?
1: मिस सीमा
0: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
0: क्यों, लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
0: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1,00,000 बन जाओगे।
0: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
0: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: तीनों कॉलेज में,
6: डोंट वरी,
5: फीस तो देखो।
7: क्या हाल है, क्या हुआ?
6: फीस की टेंशन,
7: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही,
8: रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4,00,000 रुपए का, नो कोलैटरल।
7: वो कहाँ है?
8: मिठाई।
9: RBI कहता है,
10: करो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
11: और अंतराल के बाद बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है कार्यक्रम बाल विहार में। बच्चों, हमने प्रकृति से बातें की, प्रकृति से जुड़ी हुई उन चीज़ों से बातें की और आपको इस विषय में बताया। और अब बच्चों, हमें पता है आपको इंतज़ार है कहानी का और बेसब्री से इंतज़ार है, क्योंकि इस कार्यक्रम के द्वारा आप कहानी सुनना चाहते हैं। और कहानी आपको आज हम सुनाते हैं, एक बहुत ही बढ़िया प्रेरणादायक कहानी जिसका विषय है पढ़ाई का महत्व। जिन्होंने दोस्तों, गांव के एक गांव था और उस गांव के पास एक छोटा सा जंगल था जहां पर मोहन नाम का एक गरीब लड़का रहता था। और मोहन का जो मन है बच्चों, वो खेल कूद और जंगल में घूमने से में ज्यादा लगता था, पढ़ाई में उसका जो मन है वो कम लगता था, क्योंकि वह पढ़ाई को बेकार समझता था और किताबों से हमेशा ही दूर भागता था। पता नहीं उसे पढ़ाई क्यों नहीं अच्छी लगती थी। उसके माता पिता उसे कई बार समझाते थे कि तुम्हें पढ़ना चाहिए बेटा, तुम्हें केवल खेलना ही नहीं चाहिए या इधर उधर घूमना ही नहीं चाहिए, तुम्हें पढ़ना भी जरूरी है, लेकिन वह उनकी बात पर ध्यान नहीं देता था। तो पता है बच्चों, एक दिन मोहन जो है वो जंगल में घूमने के लिए निकल पड़ा और जंगल में घूमते घूमते उसे एक बूढ़ा व्यक्ति मिला जो साधु के वेश में था। उस व्यक्ति ने जो है वो मोहन के हाथ में एक किताब थमा दी। तो मोहन ने उससे पूछा कि बाबा, आप इस किताब को पढ़कर जो है वो क्या करते थे, क्या इन किताबों को पढ़ने का कोई फायदा है? तो बाबा ने ये कहा कि देखो, किताबें जो है वो हमारा ज्ञान वर्धन करती है और किताबें अगर आप पढ़ते हो तो उसको उससे आपका ज्ञान होता है, भविष्य बनता है। फिर साधु मुस्कुराए और बोले कि बेटा, किताबें जो होती है वो जीवन का बहुत बड़ा खजाना होती है और अगर तुम पढ़ोगे तो हर मुश्किल का हल जो है वो तुम्हें इन किताबों में ही मिल जाएगा। मोहन ने जब ये बात उनकी सुनी तो उसे बहुत हंसी आई और फिर वो उस बातों को हंसी में उड़ा दिया और जंगल की तरफ चल पड़ा। कुछ दिन बाद गांव में एक राजा आया जो अपने राज्य के सबसे बुद्धिमान और शिक्षित बालक को इनाम देना चाहता था। इनाम में राजा जो है वो सोने की मोहर लेकर आया था और एक बहुत बड़ी किताब लेकर आया था। गांव के कई बच्चों ने राजा के सवालों के जवाब दिए लेकिन मोहन जो है वो चुपचाप खड़ा था। तो राजा ने उससे पूछा कि तुम क्यों नहीं जवाब दे रहे? मोहन ने सिर झुका लिया और कहा, मुझे पढ़ना ही नहीं आता महाराज।

यह सुनकर राजा ने कहा कि देखो, ज्ञान ही असली धन होता है। बिना पढ़ाई के जीवन जो है वो अधूरा होता है। ये बात सुनकर मोहन को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने ठान लिया कि अब जो है मुझे पढ़ाई करना ही है। तो धीरे धीरे वो उस तरफ ध्यान देने लगा। मोहन ने दिन रात मेहनत करके पढ़ाई करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसने पढ़ना लिखना समझना सब सीख लिया। कुछ वर्षों बाद वही मोहन अपने ज्ञान के कारण पूरे गांव में सम्मानित हुआ। राजा ने भी उसकी मेहनत की सराहना की और उसे अपने दरबार में एक महत्वपूर्ण पद जो है वो दे दिया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि पढ़ाई का जो महत्व होता है, हमें जीवन की कठिनाइयों को समझने और उन्हें हल करने की ताकत देता है। यह कहानी भी हमें यही सिखाती है कि ज्ञान ही असली संपत्ति है और उसके बिना जीवन अधूरा होता है। तो बच्चों, हमें पढ़ाई के महत्व को समझना चाहिए ताकि हम अपने उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ सकें।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हेलो
2: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
1: फिर से
3: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे, 10 लाख दीजिए बच जाएंगे।
1: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
1: सर 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
1: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
3: अरे
1: काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
1: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
1: तो पैसे गवाओगे।
5: RBI कहता है
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: और इस अंतराल के बाद बच्चों अब आप सुनिए एक प्यारा सा गीत।

0: कई साल पहले की ये बात है,
1: बोलो ना, चुप क्यों हो गए?
0: भयानक अंधेरी सिया रात में लिए अपनी बंदूक में हाथ में

0: जा रहा था, नहीं आ रहा था, नहीं नहीं जा रहा था।
1: उफ़, आगे भी तो बोलो ना।
0: बताता हूँ बताता हूँ। नहीं भूलती उफ वो जंगल की रात, मुझे याद है वो थी मंगल की रात। चला जा रहा था मैं डरता हुआ, हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ। बोलो हनुमान की जय, जय जय बजरंग बली की जय। हाँ बोलो हनुमान की जय, जय हो बजरंग बली की जय।
2: और इसके साथ ही कार्यक्रम बाल विहार से दे इजाजत अपनी दीदी लीला सहल को, सभी मेरे साथ बोलेंगी जय हिंद।

अभी आप सुन रहे थे बच्चों का कार्यक्रम बाल विहार। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। अब से थोड़ी ही देर बाद आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम का रिले किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: साउंड कैमरा एक्शन।
1: नमस्कार श्रोताओं, बॉम्बे टॉकीज में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जाने माने अभिनेता देवेंद्र अहिरवार से एक मुलाकात। आपसे बातचीत की है यूनुस खान ने।
2: दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त यूनुस खान हूं और आज विविध भारती के स्टूडियो में एक युवा अभिनेता हमारे साथ मौजूद हैं, बल्कि ये कहना चाहिए कि युवा अभिनेता, लेखक, गायक और संगीतकार देवेंद्र अहिरवार। बहुत स्वागत देवेंद्र।
3: बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच।
2: देवेंद्र, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आपकी जो पहचान बनी है वो 120 बहादुर से बनी है, ये फिल्म आपको कैसे मिली थी?
3: ये फिल्म के पहले एक बहुत लंबी कहानी है। इस पहचान तो ऐसे नहीं है कि इस फिल्म से बनी है, क्योंकि मैं लगातार थिएटर कर रहा था, लगभग 15-20 सालों से मैंने काम किया है। मैं काफ़ी छोटा था तब से काम कर रहा हूँ, और एक ऐसे बोल सकते हैं कि एक बहुत एक बड़ी ऑडियंस को जानने का मौका मिला कि इस नाम का कोई बंदा है कुछ काम करता है। तो ये फिल्म मुझे जैसे सबको मिलती है, क्योंकि हम बाहर के लोग हैं तो ऑडिशन से ही मिलती है। सो मैं ऐसे म्यूजिक में हूँ, मेरा गाने गाने का काम है, या मैं एक्टिंग करता हूँ या नाटक बनाता हूँ। तो कास्टिंग डायरेक्टर जो अनमोल आहूजा है, उनको मालूम था कि मैं गाना गाता हूँ। तो एक कैरेक्टर था 120 बहादुर के लिए, ऑडिशन हुआ कि एक गाना गाने वाला लड़का चाहिए, तो उन्होंने मुझे ऑडिशन लिया। पर उस कैरेक्टर के लिए मैं बाद में फिट नहीं बैठा, मेरा लुक नहीं जा रहा था, और मेरा काम, मेरा ऑडिशन अच्छा हुआ था, तो उनको लगा कि इसको हम फिल्म में इस वाले कैरेक्टर के लिए नहीं रख सकते हैं। फिर उन्होंने मुझे एक दूसरे कैरेक्टर के लिए टेस्ट किया जिसका नाम था बैंगन। तो उस बैंगन कैरेक्टर के लिए फिर मैं फाइनल हुआ, और उसके बाद बहुत सारे लोगों ने, खासकर बुंदेलखंड के पूरे एरिया ने, मध्य प्रदेश के पूरे एरिया ने, और पूरे देश के लोगों ने फिर बहुत ज्यादा प्यार दिया, और मैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ।
2: बिल्कुल, लेकिन आपकी यात्रा यहाँ से शुरू नहीं होती है, तो मुझे लगता है कि सीधे चलते हैं बुंदेलखंड की तरफ। आप कहाँ के रहने वाले हैं और आपका बचपन कैसा था, और अपने माता पिता के बारे में बताइए।
3: जी जी, सो मैं मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। मेरे गाँव का नाम है पहरा।
2: क्या बात।
3: सो मैं बहुत छोटा था तब मैंने एक रेडियो पे गाना सुना था कि जब जब प्यार पे पहरा हुआ है, इश्क और भी गहरा हुआ है। तो मैं काफी छोटा था, और मैं सोचता था मेरे गांव का नाम फिल्मों में आता है मेरे गांव के नाम पे गाने बने हुए हैं। तो तभी मैंने सोचा था कि मैं बच्चे के दिमाग में एक आइडिया आया कि चलो मैं फिल्मों में जाऊंगा।
2: अरे
3: वाह, मुझे पता नहीं था कि ऐसा होने वाला है, सच में ऐसा होने वाला है। तो एक ऐसी छोटी सी कहानी है, और मैं रेडियो लगातार सुनता था, विविध भारती लगातार सुनता था, छतरपुर आकाशवाणी मैं बहुत सुनता था, हेलो फरमाइश में सुनता था, रेडियो मेरे साथ ही रहता था, मेरा दोस्त हुआ करता था एक तरीके से, क्योंकि मेरे पापा भी गाना गाते थे तो उनको भी शौक था। देशर पटरिया के गाना, उर्मिला पांडे जी के गाने, और भी बहुत सारे लोगों के गाने मैं सुनता था। तो ऐसा एक जीवन बीता, और मेरे घर के बाहर एक चबूतरा था, चबूतरे पे शाम को लोग अपने खेतों पे खाना खाने के पहले, डिनर करने के पहले वहाँ पे बैठते थे, और फिर वो वहाँ पे कुछ गाने गाते थे 1-2 घंटे, और फिर अपने खेतों पे जाते थे सोने के लिए कि जानवर उनके खेतों में ना घुस पाए। सो पूरा किसान परिवार, एक छोटी सी बस्ती मैं आप समझ सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं। सो उन लोगों में मैं और मेरा भाई लखन भी दो छोटे छोटे बच्चे हुआ करते थे जो बैठे थे, और कई दफ़ा लोग हमसे इरिटेट भी होते थे कि बच्चे बहुत ज़्यादा बैठते हैं, पढ़ते नहीं हैं। तो फिर क्या हुआ कि

0: मंडली ने सोचा कि इस मंडली को थोड़ा बड़ा करते हैं, तो उस समय ऐसा होता था कि कोई गलत करता था तो उससे वो लगाते थे, जुर्माना लगाते थे।
1: अच्छा अच्छा।
0: तो ऐसा करके होता, तो किसी ने कुछ गलत किया होगा तो उन्होंने कुछ पैसा दिए, 8-10 हजार रुपए उधर से आए, तो उन्होंने सोचा इस पैसे का क्या करें। हाँ। उन्होंने सोचा अब हारमोनियम ले लेते हैं।
1: अरे वाह।
0: तो उन्होंने हारमोनियम ले लिया, पर हारमोनियम बजाना तो किसी को नहीं आता था, तो अब बड़ा असमंजस हो गया। तो रात को बैठते थे पर हारमोनियम रहता था, अब बजा तो कोई नहीं था। तो फिर वो हमारा घर जस्ट बगल में था, तो हमारे घर में रखते थे हारमोनियम। तो मैं और मेरा भाई स्कूल से आके हम 2-3 घंटे एक्सपेरिमेंट करते रहते थे। वो ढोलक बजाता था, मैं हारमोनियम बजाता था, और ऐसे बजाते बजाते बजाते बजाते सडनली थोड़ा थोड़ा गाने के आसपास में दिखने लग गया लोगों को कि गाने के आसपास से, गाने के आसपास है, कोई भी गाना गाता है तो उसके आसपास ही बजा लेता है। तो ऐसे करके मैं उस पहला जो मेरा ग्रुप था, जो मेरा पहला परफॉर्मेंस था, वो गांव के जो फोक आर्टिस्ट हैं, जो मंडली है, जिनमें मेरे पिताजी
1: चबूतरे में,
0: चबूतरे पे ही मैंने उसको एकदम से ऐसे शुरू किया और फिर स्कूल में गाने गाने शुरू किए। सो मैं ये बोलूंगा मेरे पिताजी भी किसान हैं, मेरी माँ भी किसान है, और मैं बहुत ही प्राउडली ये कहना चाहता हूँ, मैं बहुत किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ। जिस तरह से हम प्राउडली बोल पाते हैं ना कि हम फौजी खानदान से हैं, ऐसे जय जवान जय किसान वाले जो पूरी बात है, अगर हम उन साथ में बोले तो हम बहुत सारे लोगों को एक क्राइसिस रहता है कि बोलने में कि हम किसान परिवार से, तब मैं बोलना चाहता हूँ कि मैं किसान परिवार का एक लड़का हूँ।
1: कितने दूर है छतरपुर से ये गाँव?
0: छतरपुर से 24 किलोमीटर दूर है ये, बसारी पन्ना रोड पे पड़ता है, तो बसारी के आगे है पहरा। बहुत ही छोटा सा गाँव है सर। बहुत
1: कितनी क्लास तक वहाँ पढ़े आप?
0: मैं वहाँ पे पढ़ा 8वीं क्लास तक, उसके बाद मैं 12वीं तक पढ़ा बसारी में। बसारी में पढ़ते हुए एक फिल्म आई थी उस समय जिसका नाम था जीजाओरे, बुंदेली फिल्म थी। उसमें एक एक्टर थे हिमालय यादव जो उसी गांव के थे, तो वो लाइक वो बहुत पॉपुलर हो गए थे उस फिल्म से। उस फिल्म को बहुत प्यार मिला, हर घर में सीडी हुआ करती थी उस समय तक, जीजाओरे की सीडी, झूमो नाचो गाओ रे, खुशियां मनाओ रे, पता नहीं आओ रे भैया जी जाओ रे, ऐसा कुछ गाना था उसका, टाइटल सॉन्ग था उसका।
1: अच्छा, जब ये सब बातें हो रही हैं तो मुझे ये भी लग रहा है कि वो जो चबूतरे पर गाने होते थे उसमें से कोई गाना याद है?
0: उसपे ऐसे कुछ भी गम्मतें होती थी, गाने होते थे, लाइक भागे होती थी।
1: हाँ।
0: तो उसी तरह से कि

0: उपटा लगे तुंगरी है, क्या बात है ना,
1: कहां ले आया राजा कुमारिया में,
0: मतलब बुंदेलखंड,
1: लाइक कोई लव मैरिज करके किसी को डिफिकल्ट शहर में ले जाए। ये गाना मतलब इनडायरेक्ट रूप से वैसा है।

0: ले आए। सो वही है, लाइक मैं किसी लड़की को प्रॉमिस करूं कि मैं तो बम्बई रहता हूं और फिर मैं वहां छोटे से कमरे में रख दूं, तो उसी सिचुएशन को एक अलग तरीके से कवि बुंदेली बुंदेलखंड के जो लोग हैं, जो
1: हाँ।
0: लोग कवि हैं, लोग गायक हैं, वो कैसे उसको कैप्चर करते हैं और कैसे उसको करते हैं,
1: तो
0: तो
1: मजा आ गया मुझे
0: बहुत ही मजा
1: सुन
0: आया, मतलब बहुत मजा। तो
1: के
0: यही था फिर बुंदेली। फिर जब बसारी में पढ़ता था, हिमालय भैया से मिलना हुआ, हिमालय यादव जी से मिलना हुआ, उस समय बसारी में एक फेस्टिवल होने लग गया था, उसका नाम था बुंदेली उत्सव।
1: हाँ।
0: तो बुंदेली उत्सव बहुत बड़ा फेस्टिवल होता, फरवरी में लगभग एक महीना 21 दिन चलता था वो।
1: अच्छा।
0: और उस समय तो क्योंकि जो वो कराते थे शंकर प्रताप सिंह बुंदेला जी, मुन्ना राजा जी कराते थे उसको, तो पूरे एमपी के फोक आर्टिस्ट सेलिब्रिटी आते थे उधर। तो वो पहली बार मैंने एक नाटक किया उस ग्रुप में जुड़ के, हिमालय भैया के ग्रुप में जुड़ के, और नाटक का नाम था ददुआ भाव दिल्ली में बर्बाद।
1: अरे
0: और
1: बाप
0: मैं नाइन्थ क्लास में पढ़ता था उस समय।
1: ठीक है।
0: उस नाटक में मैं रेल का डिब्बा बना था, हम छोटे छोटे डायलॉग हुआ करते थे हमारे, छोटे छोटे डायलॉग हुआ करते थे, लाइक
1: तो बुंदेली में था ये।
0: हाँ, बुंदेली में नाटक था। अब मुझे कोई भी डायलॉग याद नहीं है क्योंकि मैं एक तो पहला नाटक था मेरा।
1: हाँ।
0: तो उस ग्रुप से जुड़ गया और फिर मुझे बहुत मजा आया, और मैंने अभी आपसे बात भी किया इस तरह का, जो मुझे वो सर्कल में बैठते थे लोग, एक दूसरे की आंखों में बैठ सकते हैं, देख सकते हैं, एक दूसरे से सवाल पूछ सकते हैं, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, उस तरह का एक भाव मुझे लगता था। तो मुझे पता चला कि मैं शायद इस फील्ड में ही जाना चाहता हूँ। तो फिर ऐसी शुरू हुआ सर, मैं जल्दी से इसको वो कर लेता हूँ। फिर खजुराहो में एक वर्कशॉप हुई, खजुराहो हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ हुआ करती थी, हमारे घर के पास ही है खजुराहो, 30 किलोमीटर दूरी है। सो खजुराहो में एक वर्कशॉप हुई, राष्ट्रीय नाट विद्यालय NSD की एक वर्कशॉप थी, और उसको डायरेक्ट करने आए थे इश्तियाक आरिफ खान, जो कि काफी बड़े एक्टर
1: हैं,
0: जो पन्ना के ही हैं। तो वो NSD से पास होने के बाद वो वर्कशॉप के लिए आए थे, हमको पूछा गया कि खजुराहो में वर्कशॉप हो रही है। तो खजुराहो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि भाई खजुराहो, अंग्रेज आते हैं, गोरे, 5-star होटल, तो हमें उधर पहुंचना है कुछ भी करके। तो घर में बोला कि एक वर्कशॉप हो रही है, तो उन्होंने बोला क्या क्या चाहिए पड़ेगा, तो हमने बोला कि उन्होंने बोला 2-2 किलो चावल लेके चलना है, 1 किलो दाल लेके चल रही है, थोड़ा नमक लेके चलते हैं, हल्दी मिर्ची लेके चलनी है, क्योंकि वहां पे एक महीने रहना है। तो शिल्प ग्राम में एक वर्कशॉप हो रही थी और उसमें हमने काम किया, और वो एक नाटक उन्होंने कराया इश्तियाक जी ने, इन्हें कहीं देखा है,
1: अरे
0: इन्हें कहीं देखा है, तो एक ऐसे कैरेक्टर जिनको हमने कहीं ना कहीं देखा है उसका नाटक उन्होंने बनाया था, और वो नाटक बहुत अच्छा बना और मैं बहुत इम्प्रेस हुआ कि इतने छोटे से हैं, वो क्यूट से हैं, और उन्होंने इतने 20-25 लोगों को, पूरे देश के लोगों को एक नाटक में पिरो दिया और इतना अच्छा काम निकल के आया।
1: इश्तियाक भाई की खासियत और है कि वो बहुत म्यूजिकल आदमी है।
0: हाँ, और म्यूजिकल प्ले था वो, और म्यूजिक में मेरा रुझान भी था, तो वो भी मेरे से काफी खुश थे। तो फिर मैंने सोचा था कि मैं कुछ भी हो जाए, उनसे पूछा कि सर आपने मुझे ये करना या मैं कहां सीखूं, तो उन्होंने बोला था कि मैं NSD से पढ़ा हुआ हूं, तुम भी NSD जाओ अगर तुम्हें करना है। तो फिर मैंने तब लिख लिया था डायरी में कि मुझे कुछ भी करके NSD पहुंचना है,
1: तो डायरी में लिख गया।
0: हाँ, तो मैं लिख गया तो अभी मुझे पहुंचना है NSD। तो फिर वहां
1: से आगे की कहानी थोड़ा आगे सुनाएंगे।
0: जी जी,
1: यहां एक फिल्मी गाने की जगह बनाते हैं।
0: हाँ जी जी,
1: तो जिस दौर में हम हैं, जिस दौर में आप ये सब कर रहे थे कि आप वो बड़े गांव में गए और उसके बाद खजुराहो हो गए, उस दौर का कोई गाना याद आता हो तो वो गाना यहां बजाया जाए।
0: एक फिल्म थी वो शोला और शबनम, गाना सुनता तू पागल प्रेमी आवारा, दिल तेरी मोहब्बत का मारा, तुझे पहचान लिया रे, अपना तुझे मान लिया रे। फिर म्यूजिक आता जो आप कह रहे थे ना, ओए ओए ओए ओए ओए ओए ओए ओए ओए ओए ओए,
1: क्या बात है।
0: तो ये कुछ गाने जो ऐसे उस समय के याद है मुझे,
1: बिल्कुल वो एक जहन में बसे होते हैं और ये उस दौर की याद लेके।
0: जी जी जी, हमने बहुत देखा है फिल्म को, बहुत देखा है फिल्म को हम। मैं तो करण अर्जुन बहुत देखी, ये देखा, पता नहीं मिथुन की फिल्में देखी, टड़ी पार जैसी फिल्में देखी,
1: जो
0: भी CD पे जो भी मिलता था देखते, सर जो भी मिलता था देखते, वो हमारे लिए बेस्ट फिल्म होती थी।
1: वाह। हाँ। ये गाना सुनते हैं।

0: देवेंद्र आपसे बातें हो रही हैं और हम तकरीबन 90s के जमाने में हैं और ये वो दौर है जब आप एक नाटक करते हैं बुंदेलखंड फेस्टिवल में और फिर इश्तियाक आरिफ खान साहब से आपका परिचय होता है जो तब तक NSD में हैं और तब तक बंबई आके उन्होंने अपने जलवे नहीं दिखाए और वो एक शिविर लगाते हैं और वहां से आपको एक राह दिखती है एक लड़का जो पहरा गांव का है और जिसको बाहरी दुनिया से बहुत ज्यादा जिसका परिचय नहीं है उसका परिचय इन सब चीजों से होता है और वो अपनी डायरी में लिख लेता है कि मुझे कैसे भी करके
1: यहाँ पहुंचना है।
0: उसके आगे क्या होता है?
1: उसके आगे मैं फिर स्कूल के बाद कॉलेज में पहुंचता हूँ तो अब मुझे तो कोई लोग चाहिए कि भाई ये काम करने वाले लोग कहाँ हैं, अभी मुझे 3-4 साल और पढ़ना पड़ेगा है ना, तब जाके मैं वहां पे जाऊंगा। क्योंकि मैं वर्कशॉप के निकलने के बाद मैं दिल्ली आया घूमने के लिए कि मुझे पहले वो जगह देखनी है जहाँ मुझे पढ़ना है।
0: तो मंडी हाउस चले
1: मैं पहले किसी दोस्त के साथ जो किसी बस्ती में रहता था मजदूर फैमिली का, मजदूरी करने जाते थे उनके पिता जी, तो मैं उस दोस्त के साथ दिल्ली आया और दिल्ली में ढूंढते ढांढते उस बच्चे के साथ में, और मैं खुद बच्चा हूँ अभी मैं 9th-10th क्लास में पढ़ता हूँ, और मैं NSD की तरफ बढ़ते बढ़ते मैं वहां पहुंचा। उसमें मेट्रो बन रही थी और मैंने पहली बार देखा कि वो ऐसी सीढ़ी है जिसपे पैर रखते अपने आप ऊपर पहुंचा देती है। मेरे लिए बड़ा चमत्कार था, मैं घर जाके लोगों को बता रहा हूँ कि भाई ऐसी सीढ़ी बन चुकी है धरती पे कि आपको चढ़ना नहीं पड़ता, आप अपने आप ऊपर पहुंच जाओगे। और मैं ऐसे हो गया, फिर मैं NSD के गेट पे पहुंचा और मैं NSD मैंने देखा कि ये लिखा है राष्ट्रीय नाट विद्यालय, मतलब ये वो जगह है। और मैंने वहां से निकलते हुए लड़के लड़कियों को देखा और वो बहुत ही फ्रेंडली है, किसी ने किसी का हाथ पकड़ा हुआ है, कोई डायलॉग पहन रहा है, कोई कॉस्ट्यूम पहन के घूम रहा है, और मैं देखा कि भाई ये तो अलग दुनिया है, ये तो कमाल की दुनिया है। तो मैं गेट में घुसने को हुआ तो एक उस समय एक गार्ड हुआ करते थे, उनका नाम था धुरंधर जी, रिटायर फौजी थे वो
0: जी।
1: तो मैं घुसने लगा, उन्होंने बोला क्या हुआ, मैंने बोला कि मेरे को यहाँ पढ़ना है, बोले कौन सी क्लास में पढ़ते हो, मैंने कि मैं 10वीं क्लास में पढ़ता हूँ, तो कह रहे यहाँ पे ग्रेजुएशन के बाद अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने कहा अब तो मुझे बहुत पढ़ना पड़ेगा यार, तो मैंने बोला कि मैं यहाँ पे पढ़ूंगा, तो उन्होंने बोला कह रहे ऐसे बहुत लोग आते हैं बोलने के लिए, पहले अभी 10 क्लास में पढ़ता है, अभी तू ग्रेजुएशन करेगा फिर तेरा मन बदल जाएगा, पता चला कुछ हो जाएगा, तू नौकरी लग जाएगी तो तू नहीं आएगा। मैंने कहा नहीं नहीं सर मैं आऊंगा, मैंने बोला कि मैं आऊंगा, मुझे आना ही है इधर। तो मेरे पास उस समय नोकिया 26 26 फोन हुआ करता था,
0: वो छोटा वाला
1: फोन, तो उसमें 1 मिनट की रिकॉर्डिंग होती थी। तो मैंने उनसे बोला कि मुझे क्या क्या करके आना है, रिकॉर्ड कर दो, मेरे पास में इससे ज्यादा टाइम नहीं मेरे पास में। तो उन्होंने मुझे बताया कि 6 नाटक चाहिए जिसमें तूने एक्टिंग की हो या बैकस्टेज किया हो, 3 बड़े डायरेक्टर्स के साथ काम किया होना चाहिए जिनके लेटर्स लिखा होगे, जिनमें लिखा होगा कि वो तुमको जानते हैं, तुमने उनके साथ काम किया है और वो तुम्हारे उज्जवल भविष्य की कामना कर रहे हैं।
0: अरे गजब,
1: और तुम अनुशासित हो,
0: 1 मिनट में सब
1: बता दिया, ये करके आना पड़ेगा तब तुम फॉर्म डाल सकते हो, तो फिर मैंने रिकॉर्डिंग लेके मैं रोज सुनता था मुझे ये करना है। मैं वापस आया, मैंने अपनी पढ़ाई की, कॉलेज गया, फिर मैंने सोचा यार यहाँ पे कोई नाटक ही नहीं करता उस तरह से, तो मैं ही नाटक करूंगा।
0: तो कॉलेज में इस शहर में था
1: ये छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में महाराजा कॉलेज, तो वहां पे मैंने ये ग्रुप बना दिया और छोटे मोटे नाटक करने लगा, यूथ फेस्टिवल में नाटक करने लगा, और पता चला कि छतरपुर में कोई इफ्टा नाम का एक संस्था है जो एक्टिव है, जो उस समय शिविन शुक्ला जी चला रहे थे, अभी भी वही संभालते हैं उसको, तो उनसे जुड़ गया। फिर उनने जो भी नाटक कराया उनमें नाटक करने लग गए, बकरी नाटक किया, सर्वेश्वर सत्यनाग नाटक किया, और भी नाटक जो भी वो कराते थे उसमें उससे जुड़ गए, और वो रिकॉर्डिंग सुनता रहता था कि ये तो करना ही भाई, अभी एक नाटक हुआ है, वो नाटक हुआ, फिर ये भी सोचता था कि जिस लेवल के हम नाटक कर रहे हैं इस लेवल के नाटक के उसमें काउंट होंगे, कि हम तो कुछ भी कर देते हैं,
0: बिल्कुल
1: कोई स्क्रिप्ट नहीं है, कहीं बोल दिया ये इम्प्रोवाइज करके कर दिया, बुंदेली में कुछ भी बोल दिया कर दिया। तो फिर सोचा ग्रेजुएशन के दौरान कि भाई ऐसे चलेगा नहीं, भोपाल निकलना पड़ेगा,
0: अच्छा
1: कुछ भी करके अब इस जगह से निकलना पड़ेगा, अब भोपाल जाने के लिए किसी से मिलना पड़ेगा, आपको कोई जानता हो आपको, कोई भी नहीं जानता सर, एक बंदा नहीं है जिससे थिएटर आया आर्ट फील्ड से जिससे भोपाल में किसी को जानता हो। तो एक उसी जो वर्कशॉप हुई थी इश्ताक जी वाली, उसमें एक असिस्टेंट डायरेक्टर थे हरीश भैया, हरीश विश्वकर्मा उनका नाम था, उन्होंने एक नंबर दिया कि हेमंत देवलेकर नाम के एक बंदे हेमंत भाई,
0: बिल्कुल
1: आप जानते होंगे, बहुत बड़े कवि हैं,
0: बिल्कुल बिल्कुल, विहान ग्रुप,
1: हाँ विहान ग्रुप अभी वो चलाते हैं, कि एक मेंबर हैं वो, और उनका नंबर दिया उन्होंने और उन्होंने बोला कि ये तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं क्योंकि यही सज्जन पुरुष हैं। तो मैंने उनको फोन किया, मैंने उनको फोन करता था, वो मैं पागल कर देता भैया मुझे यहाँ से निकलना है प्लीज मुझे निकलना है। फिर उन्होंने बोला कि ठीक है तुम आ जाओ, और मैं एक डायरेक्टर है अलख नंदन सिन्हा जी, मैं अलख दादा से उनसे मिलवा दूंगा, पर वो तुम्हें रखेंगे नहीं रखेंगे उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो फिर मैंने एक समय ग्रेजुएशन करने के तुरंत बाद में MA के लिए मैंने अप्लाई किया था और मैं भोपाल की बस में बैठ गया रात को, शादियों का सीजन था, बहुत बहुत ढोल बज रहे थे, बस निकल नहीं पा रही थी शहर से, और मैं बस में बैठा हूं और मेरे घुटने कांप रहे हैं, और मैं सोच रहा हूं कि मैं एक बंदे का नंबर जान है सिर्फ मेरा, उसकी शक्ल भी नहीं देखी और वो किस तरह के होंगे, किस तरह का व्यवहार होगा उनको, और मैं उस शहर में किसी को जानता नहीं हूं, और मैं वैसे ही जा रहा हूं, मेरे घुटने कांप रहे हैं और बारात की वजह से बस धीरे धीरे चल रही है, मैं सोच रहा हूं कहीं ये भगवान का संकेत तो नहीं है कि अभी मौका उतर ले, है ना। और मैं फिर बस से नहीं उतरा और मैं पहुंच गया उधर 5 बजे मॉर्निंग में, और मैं 5 बजे से उनको

0: फोन कर रहा हूँ अभी 5 बजे कोई कोई फोन उठाएगा?
1: बिल्कुल,
0: वो तो उठे, जब उठे 10 बजे उन्होंने मुझे कॉल किया, उन्होंने बोला कि वो रोशनपुरा चौराहे पे 12 बजे मिलेंगे। मैंने कहा 12 बजे तक मैं क्या करूंगा, मैं जाके कहीं, मैंने कुछ पोहा हुआ खाया, नाश्ता वास्ता किया और मैं डिवाइडर पे खड़ा हुआ 2 घंटे के लिए। मैंने कहा, मैं उनको बोल दिया कि मैं बीच डिवाइडर पे खड़ा रहूंगा भैया, ऐसा ना हो कि मेरा फोन बंद हो जाए या आपको फोन कुछ बंद हो जाए, मैं रिस्क नहीं ले सकता। तो मैं डिवाइडर पे खड़ा रहा और फिर एक बंदा
1: रोशनपुरा चौराहे,
0: हाँ, एक बंदा शरीफ सा बंदा, एक हाथ में झोला लेके एक बंदा, हाँ, मेरे पास आए और मैं वो उनको देखा मैंने कि मेरे को भगवान आ गए मेरे लिए, ये मेरे को रास्ता दिलाएंगे, ये पहला इंसान है जो मुझे कहीं पहुंचाएगा। और वो मुझे मिले, मैंने उनको देखा, मैं बहुत इमोशनल हूँ, मैंने उनके पैर छुए, वो नहीं बोले कि पैर वैर नहीं छूते, मैंने कि बोले हमारे यहाँ तो पैर बड़ों के पैर छूते हैं, उन्होंने बोले नहीं नहीं पैर नहीं छूते क्योंकि लोग अजीब के होते हैं, तो उन्होंने मुझे समझाया। और कट्टू फिर वो मुझे एक डायरेक्टर के घर में ले गए, अलग दादा के घर में, और हम बैठे हुए हैं और 1 घंटा हो गया।
1: पहले हेमंत आया,
0: हेमंत दादा आए पहले, और उन्होंने बोला कि मेरा तो कोई ग्रुप नहीं है भाई, मैं किसी ग्रुप में काम करता हूँ, मैं डायरेक्टर को मिलवा दूंगा, और क्योंकि वो उनका ग्रुप का नाम नटबुंदिल है और तुम बुंदेलखंड से हो तो हो सकता है तुम्हें रख ले, और तुमने बोला तुम गाने आने गाते हो तो हो सकता है तुम्हें म्यूजिक के बंदों को रख ले। और मैं अतरंगीता सर, बेल बॉटम पैंट पहना हुआ है, लाल पीली कलर की शर्ट पहनी हुई है, बाल मेरे तेरे नाम जैसे हैं, बड़े बड़े मैंने बाल रखे हुए थे। तो मैं वहां पहुंचा, लगता कि उधर रहते थे प्रोफेसर कॉलोनी में, तो उनके घर के बाहर हम बैठे हुए हैं, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया बैठे बैठे, पानी आया चाय आई, हम पी के बैठे हुए हैं, और मैं पूछूं कि क्या हुआ, तो बोले कि दादा कुछ पढ़ रहे हैं। और मैं सोचूं कि ऐसी क्या पढ़ाई है कि लोग घर में आके बैठे हैं, बंदा पढ़ ही रहा है, आ ही नहीं रहा है। फिर मुझे पता चला कि लोग इतने डिसिप्लिन होते हैं कि अपना पूरा काम करके आएंगे वो, उन्हें बैठना है तो बैठो। फिर अलग दादा एक आए, अंदर से एक बूढ़ा सा आदमी आया और उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने बोला कि कौन है ये, उन्होंने बोला किसको लेके आ गए, कौन है, मेरी शक्ल देख के। अरे मैंने कहा सर मैं देवेंद्र हिरवार, और मैंने बहुत नाटक किए हैं छतरपुर में, मेरा बहुत नाम है, मेरे कॉलेज में पूरे लोग जानते हैं, हाँ। आपके ग्रुप को मैं बहुत बढ़िया कर दूंगा सर, मैं बहुत कॉन्फिडेंस था मेरे को, ये ताकत लगा रहा था क्योंकि मैं डरा हुआ भी था, तो मुझे और ताकत लगा, मरता हुआ आदमी और हाथ पे चलाता है, तो मैं हाथ पे चला रहा था। उन्होंने बोला भाई इससे हो ही नहीं पाएगा, उनको देखे इसको भगाओ, इससे हो नहीं पाएगा। तो मैंने बोला सर ये ऑप्शन ही नहीं है, मैं जा ही नहीं सकता, मुझे कहीं जाना है और मैं उसके लिए आया हूँ, मैं जा ही नहीं सकता, लौट नहीं सकता मैं। तो फिर उन्होंने मेरी जिद देखी, उन्होंने बोला कि यार ये लड़का पता नहीं, उन्होंने बोला कि देखो ऐसे लड़के जो घर से पैसे मांगते हैं उनको हम अपने ग्रुप में रखते नहीं है, और हम अपने ग्रुप में तुरंत जुड़े हुए नए बंदे को पैसे देते भी नहीं है, तो तुम क्या करोगे? मैं सर कुछ भी करूंगा, मैं आप मुझे बोलो मैं कुछ भी करूंगा, आपकी रिहर्सल स्पेस साफ कर दूंगा, आपको कुछ भी कर दूंगा मैं। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, तो हम तुमको रहने के लिए बस व्यवस्था कर सकते हैं, आपको बाकी चीजें आप खुद से देखनी पड़ेंगी। तो जिस रिपेक्टरी कंपनी में उनका सामान रहता था, हाथा एक जगह थी श्यामला हिल्स पे, उसमें मैं हेमंत देवलेकर भैया और एक और जितेंद्र भाई एक थे जो कि पत्रकार थे वो रहते थे, तो ये लोगों के साथ रहना हुआ मेरा पहली बार। और ये पढ़ने लिखने वाले लोग थे, भोपाल के साहित्य के लोग आते थे उस कमरे में, वहां पे एक छोटी सी लाइब्रेरी भी थी, और उनके साथ रहना, कविताएं सुनना, हेमंत भैया को सुनना, और फिर मैं हिम्मत करके मैंने बोला कि भैया एक बार मैंने बोला कि मैं भी लिखता हूँ। तो उन्होंने बोला कि अच्छा अच्छा, तो एक महफिल थी, मैंने हिम्मत करके बोल दिया, उन्होंने बोला कि क्या क्या लिखा, तो तुम चाहो तो पढ़ सकते हो देवेंद्र, क्योंकि बहुत ही प्यारे काइंड थे और मुझे लगा कि सच में वो मेरे लिए भगवान जैसे ही हैं, अभी भी मुझे बहुत प्यार करते हैं। तब मैंने एक बुंदेली कविता लिखी थी जो कि मेरी एक तरीके से पहली कविता थी, और मैंने उनको फिर सुनाई उस महफिल में, सुनाई पहली बार। मैं इधर सुना दूं आपको?
1: जरूर।
0: तो कविता बुंदेली में ही है कि दद्दा मोखा मेला जाने, आज ते 5 रुपया दे दे गड़गड़िया है लाने, दद्दा मोखा मेला जाने, ऊंचे ऊंचे गड़े हिड़ोरा बिचरी खूब बराई, और मेला में मिल जे है दद्दा मोखा मम्मा माई, ओ पुत्रा और पुतनिया हल्के कक्का से लेबोने, आज ते 5 रुपया दे दे गड़गड़िया है लाने, दद्दा मोखा मेला जाने, घूमत घूमत जो दद्दा मोखा मौसी मिल जे है, कैया लेके बड़े प्यार से हल्के मुन्ना के है, मोखा अपने मौसिया से गुब्बारो लेबोने,
1: वाह वाह,
0: मोखा अपने मौसिया से गुब्बारो लेबोने, आज ते 5 रुपया दे दे गड़गड़िया है लाने, दद्दा मोखा मेला जाने,
1: क्या बात है।
0: हरिया बूठा गिद्दा फद्दा बन के गए जे गुंडा, ये उसके दोस्त हैं,
1: बिल्कुल,
0: हरिया बूठा गिद्दा फद्दा बन के गए जे गुंडा, जिनके संगे बड़ी रहान में खेलो गिल्ली डंडा, जो मेलाना जा पाहो उनका आके तिनगाने,
1: वाह वाह,
0: आज ते 5 रुपया दे दे गड़गड़िया है लाने, दद्दा मोखा मेला जाने,
1: वाह वाह।
0: आखिरी बंद है कि दद्दा धीरे से मुस्काए, ढीले दोई बेला, और नए तंगड़िया बंठन के गए दोई घूमबे मेला, फिर मेला में फिर दद्दा ने गड़गड़िया ले बुआई, और कंधे पे बैठा के पूरो मेला दो घुमाई, कहते हैं देवेंद्र जे बचपन हमें भूल नहीं पाने, और आज ते 5 रुपया दे दे गड़गड़िया है लाने, दद्दा मोखा मेला जाने,
1: कहते हैं देवेंद्र।
0: उस समय ये बुंदेलखंड कभी गानों में कभी

0: जो राइटर होता था उसका नाम छाप बोलते थे उसे, छाप है, तो छाप लगा के ही मैंने पहली कविता लिखी थी, मेरी बुंदेली कविता थी, और वहां से ही मेरा साहित्य के बारे में शेक्सपियर पढ़ना शुरू किया, ब्रेक्ट पढ़ना शुरू किया, चेखव पढ़ना शुरू किया, मोहन राकेश पढ़ना शुरू किया, गिरीश कर्नाड पढ़ना शुरू किया, विजय तेंदुलकर पढ़ना शुरू किया, बादल सरकार पढ़ना, तो वो साहित्य से जुड़ना शुरू हुआ।
1: उस समय खर्च निकालने के लिए क्या करते थे आप?
0: खर्च तो मेरा कुछ था ही नहीं, मैं तो आटा तो मैं घर से ले गया था, और 10 रुपए का 5 रुपए का नमकीन का एक पैकेट आता है, भुजिया बोले ली और रोटी बना के, और रोटी में घी लगा के, घी और ये दोनों चीजें घर से ले गया था, और रोल बना के उसमें नमकीन डाल देता और उसको ऐसे खाता था। खर्च कुछ था ही नहीं,
1: बस खाना हो गया,
0: खाना हो गया, और वहां से रिहर्सल के लिए वॉक करता था, तो वॉक करके वहां पे जाता था, रिहर्सल करता था, टाइम से पहले पहुंचता था, तो रिहर्सल स्पेस साफ करता था, ये ड्यूटी थी मेरी, रिहर्सल स्पेस साफ करना है, चढ़ाइयां बिछानी है, डायरेक्टर की कुर्सी लगानी है, पानी की बोतलें भरनी है। तो मैं और मेरे दो दोस्त और थे, एक दर्शित जो अभी कास्टिंग करता है कास्टिंग में, और एक मेरा दोस्त था सिद्धार्थ पांडे, जो कि मेरा पहला दोस्त बना, कि उस तरह से भोपाल का पहला बेस्ट फ्रेंड मेरा बना, और हम तीन लोग जाते थे, हम पहले पहुंचते थे, हम सब कुछ काम करते थे, डायरेक्टर आते थे बैठते थे, बड़े बड़े लोग एक्टिंग करते थे ग्रुप में, और मैं देखता था भाई ये तो बहुत अच्छे पढ़ते हैं, मेरी भाषा का बहुत खराब था, एक नाटक कर रहे थे तांबे के कीड़े, और दादा मुझे और मेरी भाषा बहुत खराब थी, तो उसमें थे एक पत्ती एक पत्थर एक शब्द, ऐसे कुछ डायलॉग हुआ करते थे, वो भुवनेश्वर का नाटक था, एब्स्ट्रैक्ट नाटक था, और पहला नाटक मुझे करने को मिला, मैं कुछ ऐसे अजीब से नाटक करने के बाद अचानक से एक एब्स्ट्रैक्ट नाटक करने लग गया, तो मेरे लिए तो बहुत ज्यादा हो गया। तो उसमें एक डायलॉग था, ले लो कांच के बीच, तो मैं बोलता ले लो कांच के बीच, तो बोलते ले लो नहीं, वो मुझे सिखाते थे ले लो नहीं ले लो, और मैं बोलता था ले लो, और मैं बोलता था कि मैं वही तो बोलता हूँ, और मुझे इस बात पे गाली मिलती थी, और वो बोलते थे तुम बुंदेली फोड़ रहे हो, यार मैं समझ नहीं आता मैं वही तो बोलता हूँ। फिर मेरे दोस्त मुझे समझाते थे, मुझे पता चला कि मेरे वो भाषा पे कितना काम करना पड़ेगा। सर मुझे अच्छे से याद है कि वो दादा के साथ काम करते करते ड्रामा स्कूल खुला भोपाल में, एक एमपी स्कूल ऑफ ड्रामा, और मुझे पता चला कि भाई यहाँ पे तो मैं पैसे मैं कमा नहीं सकता, ग्रुप में पैसे मिलते नहीं, तो मुझे अब इस इंस्टीट्यूट में जाना पड़ेगा जहाँ पे साल में इतने सारे लोग आएंगे नाटक कराने के लिए, वो खुला ही था। तो मैंने फिर एमपी स्कूल ड्रामा के लिए एग्जाम दिया, पहला राउंड में मेरा सिलेक्शन हुआ, इंटरव्यू में मेरा सिलेक्शन हुआ, फिर वर्कशॉप में मैं गया, फिर वर्कशॉप में का एक माहौल। सो भोपाल में मैंने देखा कि एक नाटक कर रहे थे कि मैं कैसे मैंने म्यूजिक बनाना समझा, मैंने सीखा तो किसी नहीं है, मैंने हारमोनियम सीख लिया था, पर म्यूजिक बनाना मैंने कैसे समझा कि एक नाटक कर रहे थे हम लोअर डेप्थ, तिवराई शर्मा मैम जो कि हम उनको डायरेक्ट करने आई थी जो कि हमारे बीच में नहीं है, पर मैम का बहुत बड़ा योगदान है मेरे को सब चीजों के लिए, काफी एनर्जी में भी जाने ले जाने में उनका बहुत योगदान है। तो मैम का नाटक था और हम उसको कर रहे थे, और संजय उपाध्याय सर जो कि बहुत बड़ा नाम है म्यूजिक इंडस्ट्री में और थिएटर की इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम है, एसएन अवार्डी हैं वो, और मेरे गुरु हैं, मैं उनको बहुत प्यार से उनसे सीखा है मैंने। तो एक नाटक कर रहे थे, तो उस नाटक में हम उज्जैन में हमारी वर्कशॉप लगी हुई थी और उज्जैन में हम एक महीने के लिए वहां पे थे, तो सर ऐसे मेरे सामने ही गाने बना रहे थे, हारमोनियम बजाना मुझे आता था पर मैंने गाने नहीं बनाए थे, तो उन्होंने गाना बनाया मेरे सामने ही, और वो गाना मुझे ही गाना था तो मेरे सामने बना रहे थे, क्योंकि मैम पूछती थी कि संजय क्या हुआ, तो बताते थे मैम हम कर रहे हैं। तो एक गाना उन्होंने बनाया, एक कविता थी, दिखती है आस क्यों पाक पसारे, सही में है मन क्यों क्यों रूठे किनारे, तो उन्होंने इस गाने को कंपोज किया। सर देखिए छोटी सी बात है पर उन्होंने मेरे सामने कंपोज किया और मैं इससे इंस्पायर हो इनलाइट हो गया, मुझे लगा कि भाई ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ। तो गाना ऐसा कुछ था।

0: तो ये गाना मुझे लगा कि भाई ये तो इतना बढ़िया काम है। तो फिर मैं आया उधर से वर्कशॉप के बाद, मैंने कुछ दिनों में कुछ 4-5 गाने बनाने की कोशिश की, लिखने की शुरू किए, क्योंकि मैं पढ़ता था भावे में, लाइब्रेरी में पढ़ता था, बहुत सारे कवियों को मैंने पढ़ा हुआ था, तो मैंने कुछ कुछ गाने लिखने शुरू किए,
1: कंपोज करना शुरू किया या
0: लिखने भी, लिखना दिखता तो मैं कविताएं था ही, पर मैंने कंपोज किए फिर 4-5 गाने। और फिर मैंने भोपाल में आके स्कूल के बाद मैंने बोला सर से कि सर मैं एक 5-6 गानों का 7-8 मिनट का 15-20 मिनट का एक शो करना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, पर ये ऐसी परंपरा बनाओ कि हर सैटरडे को कोई एक बंदा परफॉर्म करेगा। तो मैंने कहा हाँ, तो सर उसकी शुरुआत मैं ही करता हूँ। अगले
1: को यहाँ एक गाने की जगह बनाते हैं क्योंकि बहुत दिलचस्प दास्तान है, एक गाना सुनते हैं उसके बाद ये दास्तान सुनेंगे। तो बताओ यहाँ कौन सा गाना होना चाहिए देवेंद्र?
0: वो साथी रे।

0: ये परंपरा शुरू करो कि कोई परफॉर्म करेगा,
1: हाँ,
0: तो इसके आगे क्या हुआ?
1: तो मैंने कुछ गाने बनाए और मैंने परफॉर्म किया, तो वो गाने परफॉर्म करने के बाद कुछ बुंदेली भी गाने थे, कुछ ऐसे कुछ गाने थे।

0: ऐसा कुछ गाना था, एक सुना देता हूँ ऐसे करके। सुबह का भोला जीरो का दिल हीरो बन के लौटा है, सुबह का भोला जीरो का दिल हीरो बन के लौटा है, फिर से जन्म हुआ है उसका, फिर से मिला एक मौका है, फिर से जन्म हुआ है उसका, फिर से मिला एक मौका है, मेहनत करके भाग्य जगा ले तुझको किसने रोका है, सुबह का भोला जीरो कादिर हीरो बन के लौटा है। तो एक फेलियर आदमी की कहानी थी कि वो फेल हो गया था, फिर वो कैसे हीरो बन के लौट के आया है, उसके ऊपर हमने ये नाटक, और ये पहला नाटक था जिसके लिए मैंने म्यूजिक बनाया था, उसके बाद तो ये लंबा सिलसिला है और फिर
1: म्यूजिक का सिलसिला
0: चालू हो गया। फिर उसके बाद में पास आउट हुआ और फिर वीके सर ने बोल दिया कि भाई तू पास आउट होके दिल्ली आ जाना मेरे ग्रुप में काम करना।
1: अच्छा,
0: तो एक ब्रिज में लिया कि मुझे दिल्ली जाने का मौका मिल गया क्योंकि मुझे दिल्ली ही पहुंचना है
1: डेस्टिनेशन। वो बोर्ड और
0: वो तो छूटे नहीं है, वो रिकॉर्डिंग तो छूटी नहीं है।
1: हाँ।
0: वो तो मैं मुझे जाने थे स्कूल, उधर हुआ नहीं है। जिस समय मैंने एमपी स्कूल ड्रामा के लिए ऑडिशन किया था उस समय मैंने एनएसडी का भी ऑडिशन किया था, पर एमपी स्कूल ड्रामा मेरा हो गया और देने गया इंटरव्यू, तो उन्होंने बोला कि भोपाल में खुद एक ड्रामा स्कूल खुला है, भोपाल में काम करते हो तो भोपाल में आपने नहीं दिया। मैंने बोला मैंने दिया था, तो उन्होंने क्या हुआ, मैंने कि हो गया, तो उन्होंने बोला पहले वहां पढ़ के आओ।
1: अरे
0: मैंने कहा यार, तो फिर मुझे पढ़ने को वहां पे मौका मिला और फिर मैं जुलाई में पास आउट हुआ था। 4 अगस्त 2012 को मैं दिल्ली आ गया था वीके सर के ग्रुप में काम करने के लिए और फिर मेरे को 14 में मेरा सिलेक्शन हुआ।
1: Okay.
0: तो उसके बाद मैं दिल्ली में लगातार काम किया, दिल्ली में काम किया।
1: 14 में एनएसडी में सिलेक्शन
0: हो गया
1: और वहीं वो
0: और वो धुरंधर जी से मिलना हुआ मेरा।
1: मिले धुरंधर जी?
0: धुरंधर जी उस समय तक थे, धुरंधर जी पर वो मुझे भूल चुके थे तब तक।
1: हाँ।
0: मैंने बोला आपको याद है एक बच्चा आया था, आपने मुझे बोला था कि तेरा नहीं हो पाएगा, यार ऐसे वो मनगढ़ंत कहानी सुना रहे वो प्यार करते थे, वो थोड़ा सीनियर जैसे थे ना, जैसे बुजुर्ग कैसे होते हैं, तो ऐसे थे वो, क्योंकि वो ऐसा कल्चरल ग्रुप है, एक्टिविटी है, तो वहाँ पे गार्ड गार्ड की तरह ट्रीट नहीं किया जाता जैसे दुनिया में होता है
1: जी।
0: तो वो ऐसे होता है कि अरे आप दादा हो, मतलब
1: प्यार
0: मिलता है, परिवार के सदस्य हो, सीनियर सदस्य हो आप, तो उस तरह से। तो धुरंधर जी से काफी लंबा समय तक उनसे प्यार रहा है और फिर वो रिटायर्ड हो गए, तो अब मिलना कम होता है, पर मैं दुआ करता हूँ जहाँ भी हूँ, बहुत ही अच्छे थे वो।
1: एनएसडी ने आपकी दुनिया को कितना बदला?
0: सो एनएसडी में भी मैं एक्टिंग करने गया था, मैंने एक्टिंग करनी थी मुझे और मुझे शौक था एक्टिंग करने का, और मैंने पहला एक बड़ा नाटक मैं लीड रोल किया। उसके पहले तो क्योंकि मेरी भाषा बहुत खराब थी, एमपी स्कूल ड्रामा में मैं नाटकों में रोल करता था, एक नाटक में 6 रोल करता था और मेरे डायलॉग किसके कैसे होते थे, छोटे छोटे रोल होते थे, बंदूक किसके पास है, मैं बोलता राजगुरु के पास, मैं डायलॉग खत्म, रोल भी खत्म मेरा रोल भी खत्म, मेरी भाषा इतनी खराब थी।
1: अच्छा,
0: क्योंकि
1: लेकिन ये फिर भाषा पर काम कैसे किया? ये हाँ, बहुत
0: मैं बता रहा कि मैं ये कविता पढ़ते पढ़ते मैंने पहली बार शामिल बोलना शुरू किया था, शामिल बोलना शुरू किया पहले, क्योंकि मैं शामिल बोलता था, शेक्सपियर बोलता था।
1: हाँ।
0: तो लोग हंसते थे।
1: हाँ।
0: तो मुझे लगा कि अरे यार ये तो मैं बहुत बड़ा मसला है।
1: हाँ। हाँ।
0: तो मैंने भाषा पे काम किया, दोस्तों ने मुझे हेल्प की। हाँ। मुझे लगातार टोका, मुझे समझाया और फिर मैं कॉन्शियस हो गया उसको लेके।
1: हाँ, हाँ, हाँ।
0: मैं उसको लेके कॉन्शियस हो गया कि भाई अच्छा अच्छा मैं गलत बोलता था,
1: शक को साफ बोल रहे हो,
0: हमेशा ही बोलता था। तो पहली बार मैंने ये कविता जो राजीव जोशी की बहुत पॉपुलर कविता है, बाद में मैंने उसको कंपोज भी किया।
1: हाँ।
0: जो हमारे बैंड का मंडी हाउस द बैंड, हमारा जो बैंड है उसमें गाना है ना।
1: हाँ।
0: जो इस पागलपन में शामिल नहीं होंगे मारे जाएंगे।
1: हाँ।
0: तो शामिल मैंने पहली बार शब्द बोला था जिसमें मैंने सा को सही बोला था।
1: हाँ।
0: शामिल बोला था, मेरे दोस्त चौंक गए थे कि भाई बोल दिया, यही तो बोलना था, इतने दिन से तुमसे यही तो बुलवाना चाह रहे थे हम।
1: ओके, ओके।
0: तो ये पहली बार ऐसे भाषा पे काम किया और जब मैं पहली बार इसमें एनएसजी आया और मैंने बहुत बड़ा रोल किया लोअर डेप नाटक में, दोबारा हुआ एनएसजी में और उसमें मैंने साचिन का रोल किया और डायरेक्ट कर रहे थे अनुज खुटवर सर, और मेरा बड़ा नाम हुआ उस नाटक से, क्योंकि फर्स्ट ईयर में कोई लड़का आया और 2-2.5 घंटे के नाटक में 1.5-2 घंटे कम से कम स्टेज पे और लगातार बोलना है और कैरेक्टर बहुत डिफिकल्ट, कुछ भी चीज जो मैं नहीं करता था सबको उसको करना है, मैनेज्म पकड़ने की कोशिश की, और लंबे अंतराल के बाद वो नाटक बहुत अच्छा हुआ। पर जैसे ही मैं सेकेंड ईयर में गया और उस समय मुझे समझ में आया कि यार मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ, जिस कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, जिन लोगों से मैं बिलोंग करता हूँ, अगर मैं एक्टिंग मैंने ले ली तो उनकी कहानियां कौन कहेगा। तो फिर मैंने वहां से अपना रुझान बदला और मैंने डिजाइन एंड डायरेक्शन में अपने आप को कोर्स लिया सेकेंड ईयर से, आप स्पेशलाइजेशन करते हो तो वो लिया और फिर मैं उस तरफ आ गया और फिर मैंने अपनी कहानियां लिखनी शुरू की, अपनी बात लिखनी शुरू की, जहां से मैं बिलोंग करता हूँ उस जमीन की सच्चाई को लिखना शुरू किया, सोसाइटी के पे क्वेश्चन करना शुरू किया। तो फिर मुझे ऐसे लगा कि मैंने ठीक किया, क्योंकि मैं अभी भी एक्टिंग तो मैं कर ही लेता हूँ, मेरे को लोग प्यार करते हैं और मेरे को पता ही है कि मैं डायरेक्शन के हिसाब से जो मैं डायरेक्ट करता हूँ, क्योंकि मुझे इतना प्रेशर नहीं रहता क्योंकि मैं डायरेक्ट करता हूँ, तो मैं एक्टिंग भी बहुत सरल तरीके से करता हूँ, लोग मेरी एक्टिंग की तारीफ भी कर देते इस बहाने कि भाई तुम लोड नहीं लेते,
1: बिल्कुल
0: तुम्हारी एफर्टलेस दिखती है। तो ऐसे करके शुरू हुआ पूरा।

0: तो फिर दिल्ली में कौन से बड़े नाटक इस दौर की बात की है?
1: जब दिल्ली पहुंचा उस दौर के बड़े नाटक हुए थे, विरासत एक नाटक किया था अनुराधा कपूर मैम ने, बहुत बड़ा लेवल पे वो नाटक किया था जिसका बहुत नाम हुआ। उस समय बंसी दादा भी नाटक करते थे,
0: बंसी कौल
1: जी भी नाटक करते थे, एनएसडी में भी उनके साथ मैंने एक नाटक किया जिसका नाम था खेल मंडी खेल, उसका म्यूजिक मैंने बनाया।
0: मुखौटा,
1: हाँ, तो वो मूवमेंट थिएटर करते थे, लाजल लाइव थिएटर करते थे और वो फार्स कॉमेडी करते थे, वो कन्विक्शन के साथ कराते थे, वो बहुत बढ़िया काम था। तो उनके साथ भी काम करने का, त्रिपुराई शर्मा जी का नाम उस समय बहुत था और बहुत उनके साथ नाटक किए हम लोगों ने और बहुत नाटक देखे उनके, और बाहर भी दिल्ली के जो ग्रुप्स थे उनके साथ भी काफी नाटक देखे। एक नाटक देखा था मैंने वाटर स्टेशन जो कि साउथ का नाटक था, और उस समय भारंगम होते थे तो भारंगम से भी बहुत सारे नाटक आते थे, दुनिया के सारे नाटक, बहुत सारे नाटक उस समय
0: बिल्कुल
1: देखे हमने। अविलाश पिल्लई सर के नाटक देखे थे हमने, और बहुत अलग अलग तरीके के, बहुत इंटरनेशनल लोगों से मिलना हुआ, पूरे देश के अलग अलग जगह के लोगों के, अलग अलग भाषाओं के लोगों से मिलना हुआ, और पावरफुल लड़कियों से मिलना हुआ जो कि अपनी बात बहुत स्ट्रांगली कह पाती हैं और जो सोसाइटी में स्ट्रांगली अपनी प्रेजेंस को प्रूव करती हैं और वो दिखाती हैं कि वो किसी से कम नहीं है, इंटेलेक्चुअली और क्रिएटिवली भी वो किसी से कम नहीं है। तो उन टीचर्स से ज्यादा हम बैचमेट्स से सीखते हैं।
0: तो वहां से फिर मुंबई कैसे आना हुआ?
1: मैं पास आउट हुआ 17 में और फिर मेरे पास एक कॉल आया बहुत बड़े डायरेक्टर का, क्योंकि मैंने उस समय मेरा डिप्लोमा हुआ था, डिरेल मैंने किया था, वो नाटक उस साल का बहुत बड़ा नाटक बन गया और वो थिएटर ओलंपिक हुआ, उसकी क्लोजिंग में हुआ, वो इतना बड़ा नाटक था, उसके 1000 लोग देखते थे और वो मैंने ही लिखा था, डायरेक्ट किया था, डिजाइन किया था, और एमपी छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे वो मैंने बनाया एक नाटक कि वहां से एक रेल की पटरी निकलती है और वहां पे एक गार्ड रहता है और वहां पे फाटक है और उस बंदे ने किसी बंदे को किडनैप कर रखा है, उसकी कहानी थी पूरा, ऐसे ओपन स्पेस में करता था मैं। तो उस नाटक में एक गाना था, तो वो गाना और उसके काफी गाने ऐसे पॉपुलर हुए और वो मैंने रिकॉर्ड किया, तो दोस्तों ने मुझसे मांगे तो मैंने दे दिया किसी को, तो कुछ पत्रकार दोस्तों को भी दे दिया, उन्होंने गाना किसी डायरेक्टर को सुना दिया, कभी बड़े डायरेक्टर थे, उनका नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैंने उनके साथ फिर काम नहीं हो पाया, और उन्होंने मुझे कॉल किया कि तू बम्बई आ जा और मैं हम काम करेंगे। वो बहुत बड़ा नाम था वो डायरेक्टर का और मैं ऐसे चमक गया। रात का टाइम था, 12 बजे के आसपास एनएसजी से पास आउट होने के पहले की बात है, कुछ दिन बचे हैं, 15 दिन बचे हैं, और मेरे पास एक कॉल आता है, कुत्ते भौंक रहे हैं, हेली रोड पे मैं चल रहा हूँ मेरे दोस्तों के साथ में, और एक कॉल आया, उन्होंने बोला कि मैं फलाना बोल रहा हूँ, मैंने बोला कि मैं सर मैं समझा नहीं हूँ, उन्होंने बोला फलाना बोल रहा हूँ, सर वे कुत्तों की बहुत भौंकने की आवाज़ म्यूट हो गई है, मेरे दोस्त आगे निकल चुके हैं और मैं वहीं खड़ा हुआ हूँ, कुत्ते मेरे आसपास पहुंच रहे, सुनाई देना बंद हो गया मुझे। मैंने कहा अरे हाँ सर, अरे सर मैं तो मर जाऊंगा सर, क्या हो गया सर, मैं आप बोल रहे हो क्या? हाँ हाँ मैं बोल रहा हूँ तो आ जाना मुंबई और अपन मिलते हैं, कुछ काम करते हैं। फिर मैं आया मुंबई, उनसे मिलना हुआ पर वो काम नहीं बन पाया, अभी तक मैंने उनके साथ काम नहीं किया, पर उम्मीद है कि कभी ना कभी काम करेंगे। पर फिर ऐसे में मुंबई आ गया
0: और यहाँ से फिर मुंबई में काम का सिलसिला शुरू हुआ।
1: हाँ, मुंबई में काम का सिलसिला तो सर ऐसे ही शुरू होता कि 3 महीने तो मैं समंदर पे जाके बैठा, क्योंकि पहली बार समंदर देखा था और पता ही नहीं रहता था जाना किधर है, पर ये बता था कि वहाँ हर हाल में पहुंचना है, जहाँ जाने का ख्वाब देखा है तो उसी तरफ बढ़ने की कोशिश करते थे, निकलते थे। फिर एक नाटक बना लिया, क्योंकि कोई काम नहीं देगा तो क्या करोगे, फिर मैंने एक नाटक बना लिया कांजी हाउस जो मैंने ही लिखा था, और वो भी उसी बुंदेलखंड पृष्ठभूमि पे, वो शुरू ऐसे होता था, आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है।
0: अच्छा।
1: वो क्योंकि रेडियो को बंदा था तो रेडियो पे कोई न्यूज चल रही है और आज शाम को 4-7 बजे उसका मैंने अनाउंसमेंट ऐसे बनाया था, इतने बजे नाटक होने वाला है जिस इस पृष्ठभूमि पे है, ऐसे करके उसमें ये अभिनेता काम कर रहे हैं, ये उसमें इस तरह के गाने, इस तरह का म्यूजिक है। तो कांजी हाउस उसको बहुत प्यार मिला, मैंने उसके 25 शो किए और वो फिर कोविड लग गया, हम पृथ्वी करने ही वाले थे, कोविड लग गया, फिर वो पूरा का पूरा बंद हो गया नाटक। फिर अभी बहुत समय बाद मैंने एक बड़ा नाटक, मतलब कम लोगों के साथ में एक बड़ा नाटक बनाने की, बड़ी बात के साथ बनाने की कोशिश की है, जिसका नाम है बहुत जोर से प्यार लगा है, जो अभी लगातार हो रहा है।
0: उसका एक गाना सुनाओ यार,
1: उसका टाइटल सॉन्ग सुना दूंगा मैं आपको।
0: बिल्कुल
1: सुनाता हूँ मैं आपको, उसका एक गाना है जो टाइटल सॉन्ग है। मैं एक इसकी छोटी सी कबीरी बता देता हूँ कि एक छोटा सा सेंटेंस जिस उम्र में मैं पढ़ता हूँ, छोटी उम्र में, लाइक मैं अगर 13-14 साल का हूँ 12-13 साल का हूँ उस समय कोई इंसान, ऐसा इंसान जिसके होने से आप चमकते हो, जिसके होने से आपको खुशी होती है, जिसके बगल से गुजरने से आपको कोई आपका क्रश है, और वो कोई एक ऐसी बात कह दे, एक सेंटेंस ऐसा बोल दे, उस सेंटेंस का असर कितना समय रहता है और वो सेंटेंस आपकी पूरी दुनिया कैसे बदल सकता है, वो एक सेंटेंस की कहानी है ये एक तरीके से। अगर वो नहीं होता तो ये लड़के की जो जिंदगी है, जो गुड्डू नाम का जो कैरेक्टर है, उसकी जिंदगी कुछ और ही होती, उस घटना ने उसकी जिंदगी बदल दी उस पर एक कहानी है। हर किसी की जिंदगी में ऐसा होता है, एक संवाद कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है, भाषा में कितना पावर है, और अगर वो मीन करके, अगर वो सच में इंटेंसिटी के साथ बोला गया सेंटेंस है, संवाद है, तो वो क्या बदल सकता है, वो तबाही ला सकता है। तो वो कहानी है। अब ये गाना तो थोड़ा कमर्शियल गाना है क्योंकि हमारा नाटक भी कमर्शियल है, पर बात वही है कि वो फोक से शुरू होके ऐसे कमर्शियल की तरफ बढ़ता है क्योंकि वो कैरेक्टर भी ऐसे छोटे गांव से निकल के कहां-कहां पहुंचता है, उसकी कहानी है।

0: बहुत जोर से जोर से जोर से प्यार लगा है।
1: क्या बात है, क्या बात है।
0: जहन की हर एक चोट थी गायब, उन होठों में होठ थे गायब, हाथ थे गायब, बात थी गायब, दुनिया की औकात थी गायब। गायब पूरा बदन हुआ था, मैं तो उसका कफन हुआ था। बचने को बस सांस बची थी, फिर भी आधी रात बची थी।
1: वाह।
0: सुबह उठा तो कान के नीचे, सुबह उठा तो कान के नीचे, गर्दन पर स्कार लगा है। बहुत जोर से जोर से जोर से प्यार लगा है। पा, पा, पा, पा, पा, बहुत जोर से प्यार लगा है।
1: क्या बात है, बढ़िया गाना।
0: जी जी जी।
1: कैसा रिस्पॉन्स है इस नाटक का?
0: सर जो भी देख रहा है उनको बहुत पसंद आ रहा है, और क्योंकि म्यूजिकल है तो लोग उससे और जुड़ते जा रहे हैं। और अभी हमने लगातार 5-6 शो किए, हाउसफुल शो किए हैं, और हमें भी बहुत शो करने हैं, पूरे हिंदुस्तान घूमना है। तो जो भी श्रोता जो सुन रहे हैं हमें, अगर वो चाहें तो हमें बुला सकते हैं। और दो परफॉर्मेंस हम लगातार कर रहे हैं, एक तो हमारे मंडी हाउस बैंड है जो कि ऐसे गाने हैं, वो सारे गाने ओरिजिनल गाने हैं, इतने बड़े बड़े गाने हैं जो आपने फिल्मों में भी नहीं सुने होंगे। रोहिणी ने ऐसा बोला हुआ है, मैंने नहीं बोला हुआ है। तो बहुत अच्छे गाने हैं, बहुत ही टैलेंटेड लोग हैं, और इसे कम्यून ने प्रोड्यूस किया हुआ है, और हमें इसे बहुत करना है, और अभी हम कर रहे हैं। अभी आगे हमारे शो है, हम पृथ्वी में भी करने वाले हैं, एनएमसीसी में भी कर रहे हैं। तो अभी बहुत प्यार की उम्मीद है, अभी बहुत प्यार चाहिए सर, बहुत नाम चाहिए, क्योंकि एक ऐसी जगह से निकलना है ताकि बहुत सारे लोगों को ताकत मिले और एक थोड़ा एग्जाम्पल बने कि हाँ कहीं से भी सपने देखे जा सकते हैं।
1: अभी वेब सीरीज आई थी बैंड वाले,
0: जी जी,
1: वो एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? स्वानंद है उस वेब सीरीज?
0: जी जी, स्वानंद दादा हैं, और अंकुर तिवारी जी ने को डायरेक्ट किया है, को क्रिएटर है वो, और अक्षय वर्मा जी ने उसको डायरेक्ट किया। उसमें मेरे कैरेक्टर नाम है जिग्गी। जिग्गी एक कैरेक्टर है जो एक लड़की को प्यार करता था, पर वो लड़की प्रोफेसर की बेटी थी, इसलिए प्रोफेसर को पता चला कि मेरी लड़की के पीछे पड़ा हुआ है ये। तो उस लड़के को अपने घर बुलाया राखी वाले दिन, और उससे राखी बनवा दी। तो वो जिग्गी कैरेक्टर ऐसा है कि वो राखी भाई बना हुआ बेचारा
1: बेचारा।
0: अब वो क्या करे, उसके दिमाग में बहुत है, वो प्यार भी करता है पर उसको बहन मानता है वो। अब उसको वो पीछे घूमता रहता है 24 घंटे, वो अपनी थार से उसके पीछे घूमता है। बहुत मतलब लोगों ने मुझे बहुत उसके लिए प्यार इसलिए दिया क्योंकि लोग उसमें कह रहे हैं कि तुमने उसमें बिल्कुल एक्टिंग नहीं की। क्योंकि मेरे को लगा कि मैं उसमें क्या ही एक्टिंग करूंगा। मैंने उसको समझा बस कैरेक्टर को, क्योंकि समझाने वाले लोग भी अच्छे थे, स्वानंद दादा भी थे, अंकुर जी भी थे, अक्षय वर्मा जी भी थे, और आसपास के लोग, रोविंद सर उसमें काम कर रहे थे, हमारे गुरु जी रोविंद सर काम, आशीष विद्यार्थी जी उसमें काम कर रहे हैं, तो काफी लोग उसमें थे। तो उसमें बहुत ही अच्छा था, उसमें मेरा गाना भी था, मैंने गाने बनाने के लिए पहले उससे जुड़ा था। गाना उसमें सब मोह माया नाम का एक गाना मैंने बनाया था। अच्छा, वो गाना कुछ ऐसा था, वो देखो सब लूप में फंस गए, सभी लिटिल विट चू

0: डूड सब मोह माया है काफी ऐसे फन सॉन्ग है, आम आदमी का गाना है कि बेचारा क्या चाय चढ़ा के दूध में फंस गए,
1: वाह वाह,
0: पी के कहीं तो फूक में फंस गए,
1: वाह,
0: पिचकारी से खेल रहे थे नजरों की बंदूक में फंस गए,
1: क्या
0: उसके लिरिक्स ऐसे हैं मतलब,
1: वाह वाह देवेंद्र बहुत अच्छा।

0: लगा आपसे बात करके, और सबसे अच्छी बातें वो होती हैं जिनमें आगे के लिए हमेशा गुंजाइश छोड़ दी जाए।
1: जी जी जी।
0: तो फिर कभी मिलेंगे और आगे और बहुत सारी बातचीत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया विविध भाई,
1: बहुत बहुत शुक्रिया। रेडियो का मेरी जिंदगी में बहुत ही योगदान रहा है, और आप यकीन नहीं मानोगे मैंने बहुत सुना है विविध भारती। मैंने सुनता था आकाशवाणी का टाइम खत्म होता था, फिर बोलते थे आप विविध भारती से कनेक्ट करते हैं, कर दिया जा रहा है आपको, फिर वहां से आप सुनते थे प्रोग्राम लगातार।
0: बिल्कुल।
1: और बहुत ही एक सादगी है, एक सरलता है, एक मोहब्बत इतना नहीं एक रेडियो में।
0: बिल्कुल।
1: मैं बड़ा मिस करता हूँ इसको, और मैंने तो सुना ही, मैंने बताया कि वो रेडियो के गाने मेरे जहन में चलते रहते थे, बैरन होगी जिंदगी मैं कहाँ पे कहूँ जैसे गाने मैंने सुन सुन के बड़ा हुआ हूँ मैं। सो मेरे साथ एक बड़ी खासियत जुड़ जाती है मेरे साथ कि मैंने थोड़ा म्यूजिक और जो लोक है, जो फोक है, वो काफ़ी मैंने जिया है और मैंने उसको महसूस किया है। और दूसरा, मैं शहर भी रहा हूँ तो मैंने हर तरह की शहर से होके पानी पी के आया हूँ, तो मेरे लिए ये काम कर जाता है। और रेडियो का मेरे लिए बड़ा योगदान है कि वो गाना नहीं सुनता जब जब प्यार पे पहरा हुआ है तो मेरे ख्याल ही नहीं आता दिमाग में, और मैं आज आपके साथ बैठा हुआ
0: था। सफर है।
1: हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे को बहुत अच्छा लगता है अच्छे लोगों से बात करके, और आपको तो मैं पढ़ता आया हूँ, मैं आपकी किताब भी पढ़ी है शैलेंद्र के ऊपर, और मुझे स्वानंदा ने दी थी वो पढ़ने के लिए, तो मैं उसको भी पढ़ता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपसे लगातार जुड़ा रहूंगा, आपसे बात करता रहूंगा, विविध भारती से जुड़ा रहूंगा।
0: शुक्रिया,
1: बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।

सुन रहे थे जाने माने अभिनेता देवेंद्र अहिरवार से यूनुस खान की बातचीत। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल, संपादन सहयोग रीमा जोशी का था। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम

0: दिनों एक वाक्य ऐसा है जो हम सब बहुत बार बोल रहे हैं और वो वाक्य है उफ ये गर्मी। हीट वेव का प्रकोप पूरे देश में चरम पर है। डॉक्टर सुनीता दुबे बता रही हैं हीट वेव से जुड़ी सावधानियों के बारे में।
1: जो हीट का प्रॉब्लम है वो बहुत मेजर है। अगर डिग्री आपका 40 के ऊपर हो गया सेल्सियस पे, तो उसको आपको सडनली चक्कर आना, डिजी होना, क्रैम्प आना, उल्टी होना, आवाज़ भी टिनिटस भी आना है गर्मी की वजह से, और आप कोलैप्स भी हो जाते हो। अगर आपको लगता है कि हीट वेव के द्वारा अफेक्टेड हो, जैसे कि आप बाहर हो धूप में खड़े हो, इमिडिएटली आपको छाया में आना चाहिए, बॉडी को ठंडा कोई पानी है या टॉवल से गौज से करना चाहिए।

0: एटली हाइड्रेट करना चाहिए. ORS हुआ, नींबू पानी हुआ, शक्कर का पानी हुआ, या लिक्विड जो भी, नारियल पानी हुआ, ये सब छाछ, ये सब चीजें आप पी के इमीडिएटली अपने बॉडी को हाइड्रेट करिए. स्पेशली अगर आपको मेडिकल प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, या प्रेग्नेंट हो या छोटे बच्चे हो, ये लोग ज्यादा अफेक्टेड होते हैं. जो लिक्विड हो, अप्रॉक्सीमेटली 3 लीटर बॉडी में आपको फ्लूइड जाना चाहिए, वो किसी भी फॉर्म में हो. सेकेंडली, आपको जो खाने का भी टाइम है वो आपको थोड़ा सा ठीक से करना चाहिए, क्योंकि लाइट खाना चाहिए. तो मुझे लगता है कि आपको घर का होम कुक फूड खाना चाहिए और सिंपल खाना खाना चाहिए. और अगर आपको लग रहा है कि हीट वेव है, बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहा है, आपका बीपी चेक करना पड़ेगा आपको, तो आपको एक्सपर्टाइज डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इमीडिएटली जो प्रिकॉशन, जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देते हैं उसको करना चाहिए. उसको आपको IV लगाना पड़े या ORS आपको ओरली टाइमली दिया जाए और मेडिसिन देना पड़े. डिपेंड्स कि अगर कोई मेडिकल इशू है तो आपको मेडिकल इशू को भी ट्रीटमेंट करना पड़ता है. तो इससे बेसिकली हीट वेव है एक कंडीशन है जो पर्टिकुलर.
1: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से. हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं FM 110.7 MHz पर. इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 11 बजे हैं. कार्यक्रम विवरण में अब आप जानेंगे हमारे केंद्र से प्रसारित शेष रहे कार्यक्रमों की रूपरेखा के बारे में.

सबसे पहले जानकारी प्राप्त करते हैं प्रथम सभा के शेष रहे कार्यक्रमों और उनके प्रसारण समय के बारे में। अब से थोड़ी ही देर बाद 11:05 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत। गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम सुरबहार आप सुन पाएंगे दिन के 12:00। लोक संगीत का कार्यक्रम माटी के स्वर आप सुनेंगे दिन के 12:30 पर। कार्यक्रम में आज आपको सुनवाएंगे आरती सोनी और साथियों को। आकाशवाणी जयपुर से हिंदी में प्रादेशिक समाचार होंगे दिन में 1:00। महिलाएं अपना कार्यक्रम महिला जगत सुनेंगी दिन में 1:05 पर। आकाशवाणी दिल्ली से रिले मिड डे न्यूज का समय रहेगा दोपहर 2:15 पर आप सुनेंगे दोपहर समाचार आकाशवाणी दिल्ली से। फिल्म संगीत का कार्यक्रम तराने नए पुराने आप सुन पाएंगे दोपहर 2:30 पर। ये सभी कार्यक्रम होंगे प्रथम सभा के शेष रहे। आइए अब जानकारी लेते हैं सायंकालीन सभा के कार्यक्रमों और उनके प्रसारण समय के बारे में।

हमारी आज की सायकालीन सभा आरंभ होगी शाम 5 बजे कार्यक्रम युववाणी के साथ। आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी में समाचार होंगे शाम 6 बजे, अंग्रेजी में समाचार होंगे शाम 6:05 पर, संस्कृत में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से ही होंगे शाम 6:20 पर। शाम 6:30 पर आप सुनेंगे आकाशवाणी जयपुर से हिंदी में प्रादेशिक समाचार। राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार होंगे शाम 6:45 पर आकाशवाणी जयपुर से। जिले की चिट्ठी का प्रसारण आकाशवाणी जयपुर से ही किया जाएगा शाम 6:40 पर। कार्यक्रम खेती और गृहस्थी आप सुनेंगे शाम 7 बजे। फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता आप सुन पाएंगे रात्रि 8 बजे। रात्रि 8:45 पर आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से समाचार संध्या। News@9 का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली से ही होगा रात्रि 9 बजे। रात्रि 9:15 पर आप सुनेंगे राजस्थानी लोक संगीत।

फिल्म संगीत आप सुन पाएंगे रात्रि 9:30 पर। रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा। सभा के अंत में हिंदी में समाचार होंगे।

ये आकाशवाणी दिल्ली से रात्रि 11 बजे अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से ही होंगे 11:05 पर। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण, जिसमें आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे हमारे केंद्र से प्रसारित प्रथम व द्वितीय सभा के शेष रही कार्यक्रमों के बारे में।

हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.7 MHz पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 11:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत।

फिल्म संगीत के कार्यक्रम चित्रपट संगीत का पहला गीत आप सुन रहे थे सितम फिल्म से। आवाजें थी सोनू निगम और श्रेया घोषाल की। इस गीत को लिखा था कमाल ने और संगीत निखिल विनय का था।

चित्रपट संगीत में अभी आप सुन रहे हैं समीर की शब्द रचना को नदीम श्रवण के संगीत में। आवाजें हैं उदित नारायण अलका याग्निक की फिल्म हम हो गए आपके।

कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे हरी हरंग की आवाज में। इस गीत को लिखा था समीर ने और संगीत अनु मलिक का था।

अभी आप अपने रेडियो सेट पे सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत। कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे कसूर फिल्म का गीत। आवाजें थी अलका याग्निक और उदित नारायण की। इस गीत को शब्द दिए थे समीर ने और धुन बनाई थी नदीम श्रवण ने।

0: सोल्जर फिल्म में अभी आप सुन रहे थे हेमा सरदेसाई और कुमार सानू को। इस गीत को लिखा था समीर ने और संगीत था अनु मलिक का।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है, आप सुन रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी चूरू। क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के साथ। आकाशवाणी चूरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चूरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चूरू, आपकी पहचान, हमारी आवाज़।

स्टाइल फिल्म में अभी आप आवाजें सुन रहे थे अभिजीत और हेमा सरदेसाई की। इस गीत को शब्द दिए थे अब्बास ने और संगीतकार थे संजीव दर्शन। फिल्म संगीत के कार्यक्रम चित्रपट संगीत में अब आपको सुनवा रहे हैं समीर की शब्द रचना को अनु मलिक के संगीत में। आवाज है अलका याग्निक की, फिल्म का नाम

0: फिल्म संगीत के कार्यक्रम चित्रपट संगीत में अभी आप सुन रहे थे कुमार सानू की आवाज को। फिल्म थी जाल। इस गीत को शब्द दिए थे समीर ने और धुन बनाई थी आनंद राज आनंद ने।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है, आप सुन रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी चूरू। क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के साथ। आकाशवाणी चूरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चूरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चूरू, आपकी पहचान, हमारी आवाज़।

फिल्म संगीत के कार्यक्रम चित्रपट संगीत में अभी आपको सुनवा रहे हैं मुस्कान फिल्म का गीत। आवाजें हैं उदित नारायण और अनुराधा पोडवाल की। इसमें गीतकार समीर हैं और संगीतकार निखिल विनय।

फिल्म संगीत के कार्यक्रम चित्रपट संगीत का अंतिम गीत अभी आपने सुना था कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में। फिल्म थी स्टंटमैन। इस गीत को शब्द दिए थे समीर ने और संगीत था नदीम श्रवण का। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.7 MHz पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 12 बजे हैं। आइए सुनते हैं गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम सुरबहार। गैर फिल्मी गीतों और गजलों के कार्यक्रम सुरबहार में आज आपको सुनवा रहे हैं जगजीत सिंह को।

ये आकाशवाणी का प्रसारण है। आप सुन रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी चूरू। क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के साथ। आकाशवाणी चूरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक, कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चूरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चूरू, आपकी पहचान, हमारी आवाज़।

अभी आप सुन रहे थे गैर फिल्मी गीत और गजलों का कार्यक्रम सुरबहार। कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे जगजीत सिंह को। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.7 MHz पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 12:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं लोक संगीत का कार्यक्रम माटी के स्वर। कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रहे हैं आरती सोनी और साथियों को।

में मान गणी रो काम काज अणथाग, परदेसा में मान गणी रो काम काज अणथाग। पढ़िया जरी जय कर्म मिनख राजा के फिरिया भाग, उमर वण सुख रो गूंजे राग।

हमरा रे समझा।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और

0: हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए, उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

0: साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

आरती सोनी और साथियों की आवाजों में अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत का कार्यक्रम माटी के स्वर। हम आकाशवाणी के चोरू केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.7 MHz पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन का 1 बजने को है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी जयपुर से हिंदी में प्रादेशिक समाचार। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: चारु के साथ मैं रितिका गुप्ता। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो का कल जयपुर आने का कार्यक्रम है। वे आमेर महल का भ्रमण करेंगे। श्री रूबियो के दौरे को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस की ओर से व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। इस हाई प्रोफाइल यात्रा को भारत और अमेरिका के बीच सांस्कृतिक, कूटनीति और रणनीतिक संबंधों से जोड़कर देखा जा रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री 4 दिन के भारत प्रवास पर हैं। उन्होंने आज नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात की। हैदराबाद हाउस में हुई इस चर्चा में पश्चिम एशिया संकट से उपजे मौजूदा हालात और रक्षा सहयोग पर चर्चा की गई। इसके बाद डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापक वैश्विक सामरिक भागीदारी है। दोनों देशों के संबंधों का पूरी दुनिया पर असर पड़ता है। उन्होंने कहा कि बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा और इसके सार्थक परिणामों की उम्मीद है। केंद्र सरकार वजन और माप की जांच प्रणाली को मजबूत करने के लिए जांच केंद्रों GATC की भूमिका का विस्तार करेगी। इसके लिए 2013 के नियम में संशोधन किया गया है। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने ये जानकारी देते हुए बताया कि नए नियमों में GATC वजन और माप की 23 श्रेणियों का सत्यापन कर सकेंगे। इनमें पेट्रोल, डीजल, CNG, LPG, LNG और हाइड्रोजन डिस्पेंसर जांच भी शामिल है। इस पहल का उद्देश्य व्यापार को पारदर्शी बनाना और तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देना है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज भीलवाड़ा में हमीरगढ़ हवाई पट्टी का जायजा लिया। श्री मेघवाल ने भीलवाड़ा सांसद दामोदर अग्रवाल और जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू से जिले के विकास से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की। इस दौरान सांसद अग्रवाल की ओर से भीलवाड़ा जिले से व्यावसायिक उड़ाने शुरू करने की मांग रखी गई। उन्होंने कहा कि इससे वस्त्र उद्योग को संबल मिलेगा। श्री मेघवाल ने इस प्रस्ताव को केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के समक्ष रखने का आश्वासन दिया। प्रदेश में स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए एक जिला एक उत्पाद ODOP 2024 में 2 अहम बदलाव किए गए हैं। इसके तहत रत्नाभूषण उत्पाद से जुड़े उद्यमों के विस्तार पर भी मार्जिन मनी अनुदान दिया जाएगा। साथ ही निजी संस्थानों के माध्यम से तकनीकी अपग्रेडेशन भी हो सकेगा। उद्योग विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार सूक्ष्म इकाइयों को 20 लाख रुपए और लघु श्रेणी की इकाइयों को 15 लाख रुपए तक का मार्जिन मनी अनुदान मिल सकेगा। वहीं निजी संस्थानों के माध्यम से तकनीकी अपग्रेडेशन के लिए 5 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा। फिट इंडिया मूवमेंट के तहत संडे ऑन साइकिल की धूम आज प्रदेश भर में देखी गई। विभिन्न स्थानों पर अधिकारियों, खिलाड़ियों, युवाओं और फिटनेस प्रेमियों ने उत्साह के साथ इस मुहिम में हिस्सा लिया। इस मौके पर जयपुर के SMS स्टेडियम के चारों ओर साइकिल रैली रखी गई। लोगों को स्वस्थ जीवन शैली के प्रति जागरूक करने के लिए ये आयोजन हुआ। हनुमानगढ़, जैसलमेर, कोटपुतली बहरोड, सलुम्बर, बालोतरा, झुंझुनू और पाली में भी साइकिल रैली के जरिए लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया गया। कई जगह योग दिवस काउंटडाउन कार्यक्रम को भी इससे जोड़कर योगाभ्यास, जुम्बा, रोप स्कीपिंग सहित अन्य गतिविधियां हुई। IPL क्रिकेट के लीग चरण का आज आखिरी दिन है। इस दौरान राजस्थान रॉयल्स, पंजाब किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच प्लेऑफ के लिए मुकाबला देखने को मिलेगा। आज खेले जाने वाले पहले मुकाबले में मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स की टीमों के बीच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में टक्कर होगी। वहीं दूसरा मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच कोलकाता के ईडन गार्डन में होगा। दिल्ली और मुंबई पहले ही प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुके हैं। राज्य का ज्यादातर हिस्सा प्रचंड गर्मी और लू की चपेट में है। मौसम विभाग ने आज 18 जिलों में हीट वेव का ऑरेंज और येलो अलर्ट बताया है। इस बीच राजधानी जयपुर, अलवर, टोंक, सवाईमाधोपुर सहित कई जिलों में कल शाम आंधी बारिश का दौर चला। हालांकि लोगों को तेज गर्मी और उमस से राहत नहीं मिल सकी। उधर पश्चिमी राजस्थान में लू के प्रकोप के कारण तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। करीब 46 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ जैसलमेर सबसे गर्म स्थान रहा। वहीं कल से नौतपे की शुरुआत हो रही है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार इस दौरान गर्मी बढ़ने और तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: FM 105.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के चोरू केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन का 1:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम महिला जगत।

जी बहनों, इस प्यारे से गीत के बाद में फिर से स्वागत है कार्यक्रम महिला जगत में। और बहनों, जब हम बात करते हैं अपने रिश्तों के बारे में, अपने परिवार के बारे में, तो उसे बनाए रखने के लिए सौम्यता, सहनशीलता बहुत ज़रूरी होता है। एक मजबूत परिवार हमें ताकत देता है, लेकिन परिवार को मजबूत बनाने के लिए हमें कुछ छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना चाहिए, जिससे कि हमारे रिश्ते भी मजबूत बने रहें। कई बार हम अलग अलग कारणों से या किसी भी वजह से परिवार से दूरी बना लेते हैं और धीरे धीरे हम उन्हें लेकर अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाते हैं और ये दूरियां जो हैं बढ़ती जाती हैं और हमें ये लगता है कि हमने जिन कारणों से दूरियां बनाई थी वो हमारे सही थे और ये दूरियाँ भी सही है। लेकिन ऐसा करने से आपका परिवार टूट जाता है, आपके रिश्ते भी टूट जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि हमारे जो माता पिता हैं उनके साथ जैसा हमारा रिश्ता होता है, उसका असर बाहर की दुनिया में भी मिलने वालों लोगों से और रिश्तों पर भी पड़ता है। इसलिए यह ज़रूरी है कि आप अपने पेरेंट्स की अच्छाइयों और उनके जो उन्होंने आपके लिए जो काम किया है उनको भी याद रखें और उनके हमेशा आभारी रहें, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आने वाली पीढ़ी जो है, यानी कि आपके जो बच्चे हैं, वो भी आपसे इसी तरह से बातें सीखेंगे और वो भी आपको इसी तरह से सम्मान देंगे। शिकायतें या पुराने झगड़ों को हम मन में रखे रखते हैं, उनको नहीं रखें। अगर हम वो शिकायतें हैं या जो भी झगड़े हैं बनाए रखेंगे तो हमारे रिश्तों में दूरियां बढ़ती जाएंगी।

जी बहनों, हम बात कर रहे थे अपने रिश्तों के बारे में। तो हमारे जो मन में मनमुटाव कुछ रहता है, कोई तनाव रहता है रिश्तों को लेके, तो सबसे पहले उसे दूर करना होगा। और अगर हम घर में बड़े हैं तो क्षमा करना सीखें, और अगर छोटे हैं तो माफ़ी मांगना सीखें। इससे नाराज़गी और कड़वाहट जो होती है वो दूर होता है, और आपके रिश्ते भी जो है मजबूत बने रहते हैं। तो कोशिश ये करें कि माफ़ करना भी सीखें और माफ़ी मांगना भी सीखें, बड़ों का सम्मान करें। और बात जब रिश्तों की आती है तो सब सोचते हैं कि हमारे रिश्ते हमेशा मधुर रहें, कोई भी ये नहीं चाहता कि हमारे रिश्ते बिखर जाएं या टूट जाएं। इसलिए कोशिश ये करें कि आप उसमें एक तालमेल बना के रखें, यानी कि हम

जानते हैं कि आजकल भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हम लोग कहीं ना कहीं बिजी रहते हैं, हमें टाइम नहीं मिलता है, समय नहीं मिलता है अपने रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए या बातचीत करने के लिए एक दूसरे से। लेकिन कोशिश ये करें कि अगर आप अपना परिवार अच्छा चाहते हैं, रिश्तों को बनाए रखना चाहते हैं, तो आपको इस ज़िंदगी में से भी समय निकालना पड़ेगा और तभी आपके रिश्ते मजबूत बन सकते हैं। और कई बार ये भी होता है बहनों कि जैसे हम अपने को हमेशा सही समझते हैं और दूसरों को हमेशा गलत समझते हैं। ये सभी की आदत होती है क्योंकि हम कमियां ढूंढते रहते हैं सबके अंदर, सामने वाला जो भी है उसमें बहुत सारी कमियां हम गिना देते हैं। लेकिन जब बात आती है अपने ऊपर, हम कभी भी ये नहीं कहते कि हमारे अंदर ये वाली कमी है और हमें इस कमी को दूर करना चाहिए। लेकिन जब कोशिश ये करनी चाहिए हमेशा हमें कि सामने वालों में हम कमियां निकाल रहे हैं तो हो सकता है उसमें भी कोई ना कोई अच्छाई ज़रूर होगी, तो उस अच्छाई को हम ग्रहण कर सकते हैं। और हो सकता है जब हमारे रिश्ते बिगड़ रहे हैं, टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में अगर हमारे अंदर भी कुछ कमियां लग रही है हमें, तो उसे दूर कर लेना चाहिए। हम अहम में अहंकार में बैठे रहते हैं कि नहीं, हमारी तो गलती है ही नहीं, सामने वाले की ही सारी गलती है। तो ऐसी भावना अगर हम बना के चलेंगे तो कभी भी हमारे रिश्ते मजबूत नहीं बनेंगे और बिखरने लगेंगे। दूसरों की भावनाओं को भी हमें समझना चाहिए। कई बार हम हमेशा ये सोचते हैं कि सामने वाले ने हमें ठेस पहुंचाई, लेकिन हो सकता है कहीं ना कहीं आपने भी उसको ठेस पहुंचाई होगी, तभी ये दूरियां बढ़ी है और तभी इस तरह की बातें होने लगी हैं।

जी बहनों, जब हमारा किसी से वाद विवाद होता है या झगड़ा हो जाता है तो हम कुछ भी बोल देते हैं या सामने वाला भी हमें कुछ बोल देता है और सामने वाले की बात सुन के हम बहुत दुखी हो जाते हैं। लेकिन ऐसा उनके साथ में भी होता है। अगर आपने भी उनको कुछ भला बुरा कहा है तो सामने वाले को भी ज़रूर तकलीफ हुई होगी। इसलिए जो भी हैं, भावनाओं को समझने की कोशिश करें, केवल अपने लिए ही नहीं जिएं। जैसे आप अपने को सही मानते हैं वैसे ही दूसरा भी अपने आप को सही समझता है। आपस में जो गलतफहमियां होती है उनको जन्म ना लेने दें। हर मुद्दे पर स्वस्थ बातचीत को हमेशा बढ़ावा दें। बातचीत के लिए कभी भी दूसरे का इंतज़ार ना करें कि सामने वाला आके हमसे बातचीत शुरू करे, बल्कि जो अपने आप से ही आप पहल करें, स्वयं से पहल करें कि आप ही उस बातचीत को शुरू करेंगे। और बात जब मान सम्मान की आ जाती है बहनों, तो सम्मान एक ऐसा स्तंभ है जिससे पारिवारिक संबंधों में मजबूती आती है। सम्मान के बिना रिश्ते बिगड़ जाते हैं, इसलिए परिवार के हर एक सदस्य को एक दूसरे के प्रति सम्मान रखना चाहिए। फिर भी चाहे वो किसी भी उम्र के हैं, चाहे वो छोटे हैं घर में या बड़े हैं, उनको सम्मान हमेशा रखना ही चाहिए। माता पिता की जब हम बात करते हैं बहनों, तो माता पिता अपने बच्चों के जन्मदाता होते हैं, पालनहार होते हैं और सबसे अधिक प्रेम करने वाले होते हैं। निस्वार्थ भाव से वो देखभाल करने वाले होते हैं और अपने बच्चों की सभी ज़रूरतों को समय पर पूरा करने की कोशिश करते हैं। इसके बदले में वह केवल सम्मान चाहते हैं। अगर बच्चे उनका आदर नहीं करते हैं तो वो अंतर मन से दुखी हो जाते हैं। इसलिए हर एक बच्चे को अपने माता पिता से प्रेम भी करना चाहिए और उनका सम्मान भी करना चाहिए। कभी गुस्से में वो कुछ बोल भी देते हैं तो बड़े होते हैं वो हमें भले के लिए ही कुछ समझाते हैं या भले के लिए ही कुछ बोलते हैं, तो उनको सुनकर वापस जवाब ना दें, क्योंकि अगर आप पलट कर जवाब देते हैं तो वो बहुत दुखी हो जाते हैं। तो कोशिश ये करें, मान सम्मान बनाए रखें, बड़ों के प्रति छोटों के प्रति प्रेम बनाए रखें, तो आपके रिश्तों में हमेशा मधुरता बनी रहेगी।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के साथ। आकाशवाणी चूरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चूरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चूरू, आपकी पहचान, हमारी आवाज।
2: जी बहनों, अंतराल के बाद में फिर से स्वागत है कार्यक्रम महिला जगत में। और बहनों, जैसे छुट्टियां चल रही है तो बच्चे हमारे घर पे ही रहते हैं और इन दिनों मेहमानों का आना जाना भी लगा रहता है, तो ऐसे में जो घर का काम है थोड़ा सा बढ़ भी जाता है। लेकिन ये जो स्थिति है वो बहुत अच्छी होती है इस समय की, क्योंकि इस समय हमारे जो बच्चे हैं वो घर पे रहते हैं तो पूरे साल हम उनसे कोई भी काम नहीं करवाते, क्योंकि वो स्कूल जाते रहते हैं, उनको होमवर्क करना होता है, बहुत सारा काम उनके पास में भी होता है और उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो, इसलिए हम कोई भी काम नहीं करवाते हैं। लेकिन इस समय, ऐसे समय में छुट्टियों के टाइम हम जब घर पे कोई और सदस्य आ रहे हैं या हम लोग अकेले भी हैं, तो भी बच्चों को छोटे छोटे काम हैं जो सिखा सकते हैं, जो उनकी अच्छी आदतों में शामिल कर सकते हैं। और जैसे बात करते हैं घर की साफ़ सफाई की, स्वच्छता की, तो हमें अपने बच्चों को ये काम सिखा देना चाहिए कि स्वच्छता है वो हमारे कह सकते हैं कि सिर्फ शारीरिक ही नहीं होती, मानसिक भी होनी चाहिए और वातावरण भी स्वच्छ होना चाहिए। इसके लिए ज़रूरी है कि वो अपने घर की सफाई या जिस रूम में वो बैठते हैं, पढ़ते हैं या अपना जो हॉलीडे होमवर्क करते हैं या गेम खेलते हैं, तो कम से कम उस रूम की सफाई करना वो ज़रूर सीखें। और छोटे छोटे काम जो हैं आपके किचन के हैं या बाहर के कुछ काम ऐसे हैं जो वो कर सकते हैं अपने उम्र के हिसाब से, तो वो काम हमें उन्हें

सिखाने चाहिए। अब स्वच्छता का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम लोग घर के आसपास को स्वच्छ कर लें और घर की साफ़ सफाई कर लें। कई बार बच्चों में ये आदत होती है कि छुट्टियां हैं तो हम नहाएंगे नहीं, या लेट नहाते हैं, या ब्रश नहीं करते हैं। तो ये छोटी छोटी जो अच्छी आदतें हैं उनमें डालना हमें ज़रूरी होता है कि वो नियम से ऐसे काम करें, और ऐसा करने से वो स्वस्थ रहेंगे और उनका जो आसपास का वातावरण है।

अपना हाथ धो लेते हैं और उन्हें ये ध्यान नहीं होता है कि जिस थाली में हमने खाना खाया है वो हमें किचन तक रखनी है या सिंक में रख के आनी है। तो ऐसी छोटी छोटी आदतें हैं जो हम छुट्टियों में हम उन्हें सिखा सकते हैं। इसके साथ ही हम इन सब चीज़ों का महत्व भी उनको सिखाएं कि अगर वो जब बड़े होते हैं और वो पढ़ने के लिए अगर उन्हें बाहर जाना होता है या किसी काम के लिए उन्हें बाहर जाना होता है तो ऐसे समय में अगर उनको काम जब अच्छे से आता है तो उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, किसी भी परेशानी का सामना बाहर नहीं करना पड़ेगा। अगर उन्हें कोई भी काम नहीं आता है घर का तो उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है अगर वो बाहर जाते हैं तो। इसलिए अपने जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, अपने वातावरण को स्वच्छ रखने के लिए, शारीरिक मानसिक और जो स्वच्छता है वातावरण की उसको बनाए रखने के लिए ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों में अच्छी आदतें डालें और छोटी छोटी बातें उनके हम इन छुट्टियों के दौरान सिखाते रहें।

जी बहनों, जैसा कि हम बात कर रहे थे कि बच्चों की छुट्टियां शुरू हो चुकी है, तो ऐसे में जब हमारे घर पे मेहमान आते हैं तो ऐसे समय में ये सबसे सही समय है जब बच्चों को छोटी छोटी जिम्मेदारियां सिखाने का, जैसे कि शाम की चाय परोसने का काम उन्हें सौंप दें ताकि वे आत्मविश्वास के साथ में मेहमान नवाजी का जो कौशल है वो सीख सकें। जैसे कोई भी घर में मेहमान आते हैं तो हम उन्हें पहले ये सिखाएं कि नमस्कार प्रणाम करने के बाद में बच्चों को ये सिखाएं कि वे मेहमान से पूछें कि उन्हें कैसा पानी चाहिए, पानी पिलाने का तरीका उन्हें हम सिखाएं। साथ ही जैसे रोज़ाना उनसे काम हम करवा सकते हैं कि रोज़मर्रा जो घर में खाना परोसने का काम जो होता है, बड़ों को खाना खिलाने का जो काम होता है वो भी वो कर सकते हैं। अगर हम ये छोटी छोटी आदत उनको शुरू में सिखाने लग जाते हैं तो आगे चल के एक सही तरीका सीख जाते हैं। चीज़ों को पहचानने का तरीका हम उन्हें सिखाएं, उन्हें साफ़ सुथरा बताएं कि कौन कौन सी चीज़ कहाँ पे रखी है, और जब वो मेहमानों के सामने आते हैं या उन्हें पानी का गिलास ट्रे में रख के परोसने के लिए आते हैं तो वापस भी उन्हें गिलास उठा के लेके जाना होता है किचन तक, और उसे किस तरह से रखना होता है, तो ये चीज़ भी हम उन्हें सिखा सकते हैं। और सुरक्षित बर्तन भी हम उन्हें बताएं कि जैसे कि आप पानी पिला रहे हैं और अगर वो कांच का गिलास है तो उसे वापस कैसे सुरक्षित रखना है, कौन सी जगह पे रखना है और किस तरह से साफ़ करके रखना है, ये हम अपने बच्चों को सिखा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जब मेहमान हमारे घर पे आते हैं तो उन्हें पानी कौन से गिलास में परोसना है या पकड़ाना है, या दूसरी बात यह है कि उन्हें पानी जैसे पिलाना है तो पानी पिलाने के लिए उनके लिए कौन सा गिलास कौन से मेहमानों के लिए काम में लेना है, और दूसरी बात है कि जब हम खाना उनको खिला रहे हैं तो बच्चों को ये सिखाएं कि खाना उनके लिए ले जाते समय आपको उन्हें कैसे सर्व करना है, कैसे परोसना है, तो ये चीज़ें हम सिखा सकते हैं। साथ ही जैसे अगर हम मेहमानों को चाय पकड़ा रहे हैं तो चाय के साथ बच्चों को जैसे नमकीन लेके आना है या फिर बिस्किट आप उनके सामने रख रहे हैं तो वो कौन से जो बाउल है उनमें रखने हैं और किस तरह से उनके सामने परोसना है, और सलीके का ध्यान ज़रूर रखें। कोशिश ये करें बच्चों को ये सिखाएं कि कुछ बच्चों की आदत होती है कि दौड़ के मेहमानों के पास में पानी का गिलास लेके गए हैं या नाश्ता लेके गए हैं या ठंडा जो भी आप परोस रहे हैं वो लेके जा रहे हैं तो वो कुछ तो ट्रे में ही बिखर जाता है, जिससे मेहमानों को भी ये लगता है कि उनके बच्चे किस तरह से हैं। तो अगर आप ये छोटी छोटी बातें उन्हें इन गर्मियों में सिखा सकते हैं, छुट्टियों में सिखा सकते हैं, तो आपके बच्चों

जी बहनों, चलते चलते अब आपको कोल्ड सैंडविच बनाना सिखा देते हैं। सबसे पहले इसमें ज़रूरत होगी ब्रेड की 2 स्लाइस, दही, 1 बड़ा चम्मच बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, 1 छोटा चम्मच बारीक कटी हुई गाजर, ये एक व्यक्ति के लिए आपको बता रहे हैं, और 1 छोटा चम्मच इसमें चाहिएंगे उबले हुए जो मक्के के दाने होते हैं, 1 छोटा चम्मच आपको काली मिर्च का जो पाउडर है वो चाहिए, और थोड़ा सा काला नमक। और इसको जो बनाने का तरीका है वो आपको बता देते हैं, बिल्कुल सिंपल सा है। बर्तन में आप दही ले लें और बारीक कटी जो सब्जियां हैं और मक्के के दाने इसमें मिला दें, काली मिर्च का पाउडर और काला नमक डालकर अच्छी तरह से इसको मिला लें। इसके बाद में जो ब्रेड के स्लाइस है उसके जो किनारे हैं उनको काट दें, और इस पर जो आपने तैयार की है सब्जी का जो मसाला उसको फैला दें उस मिश्रण को, और ऊपर से दूसरी ब्रेड रख कर दबा दें हल्का सा। उसके बीच में अब इसको कट कर लें, और सैंडविच जैसे आकार में इसको कट कर सकते हैं, और अपने बच्चों को खिलाएंगे सॉस के साथ में या चटनी के साथ में, तो बच्चे बहुत खुश होकर इसको खाना चाहेंगे और उनको ये बहुत अच्छा लगेगा। तो बहनों, अब आज का कार्यक्रम जो है समाप्ति की ओर है, और कार्यक्रम से इजाज़त दें।

अभी महिलाएं सुन रही थी अपना कार्यक्रम महिला जगत। हम आकाशवाणी के चोरू केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.7 MHz पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 2 बजने को है। अब से कुछ ही बोलोगा आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से। पहले 2 बजे मिड डे न्यूज, 2:15 का समय रहेगा दोपहर समाचारों के लिए। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत और अमेरिका ने दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को महत्वपूर्ण बताया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा, शीघ्र व्यापार समझौता जरूरी, देश के लिए ऊर्जा आपूर्ति के विविधीकरण पर जोर। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक बताया। पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा क्षेत्र के पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार दिबांशु पांडा ने भारी बढ़त हासिल की। सरकार ने इबोला के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए भारतीय नागरिकों को कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के क्वेटा में रेलवे ट्रैक के पास हुए विस्फोट में 24 लोग मारे गए और फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट आज से पेरिस में शुरू हो रहा है।

0: अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर बातचीत की। दोनों पक्षों ने भारत और अमेरिका सामरिक भागीदारी को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि ये भागीदारी व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी और क्षेत्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से है। डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापक वैश्विक सामरिक भागीदारी है जो गहरे सहयोग पर आधारित है।
1: भारत और अमेरिका के बीच राजनीतिक समझ के बारे में हमारे बीच एक रणनीतिक साझेदारी है। ये साझेदारी कई क्षेत्रों में दोनों पक्षों के राष्ट्रीय हितों से बनती है। बैठक में हमने पश्चिम एशिया, मध्य पूर्व, भारतीय उपमहाद्वीप और पूर्वी एशिया से संबंधित घटनाक्रमों पर चर्चा की।
0: उन्होंने कहा कि दोनों देशों के संबंधों का पूरी दुनिया पर असर पड़ता है और कई क्षेत्रों में उनके हित एक समान हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि मौजूदा चर्चा जटिल वैश्विक परिस्थितियों में हुई है, लेकिन उन्हें खुले मन से और सार्थक चर्चा का विश्वास है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्दी अंतिम रूप दिया जाना जरूरी है। विदेश मंत्री ने ऊर्जा व्यापार में हुए विस्तार का स्वागत किया और कहा कि अधिकाधिक स्रोतों से ऊर्जा की आपूर्ति भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए जरूरी है। डॉ. जयशंकर ने यह भी कहा कि दोनों देशों की जनता के परस्पर संबंध महत्वपूर्ण हैं और कानूनी तौर पर आवाजाही में व्यवधान उत्पन्न नहीं होना चाहिए। ईरान संघर्ष के बारे में श्री जयशंकर ने कहा कि भारत और अमरीका दोनों इस पक्ष में है कि दुनिया भर में ऊर्जा की कीमतें कम रहें।
1: हम इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता चाहते हैं। दूसरा, हमारे लिए प्रवासी समुदाय का कल्याण और भलाई बहुत आवश्यक है। तीसरा, हम चाहते हैं कि ईंधन की कीमतें कम हों, क्योंकि हम इसके बहुत बड़े आयातक हैं और इसका अधिकतर हिस्सा इसी क्षेत्र से आता है। हम इस क्षेत्र से सुरक्षित और बिना किसी रुकावट के समुद्री व्यापार के पूरी तरह पक्ष में हैं। और साथ ही हम ये देखना चाहते हैं कि वहां के बाजार खुलें। हम कोई रुकावट नहीं देखना चाहते। These would be the principles with which we would
0: approach that region. अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि भारत अमेरिका के सबसे महत्वपूर्ण सामरिक भागीदारों में से है।
2: एक रणनीतिक साझेदारी बहुत अलग चीज है। ये उससे कहीं अधिक व्यापक है। जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं, उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
0: श्री रूबियो ने कहा कि दोनों देशों ने आतंकवाद की पीड़ा झेली है और दोनों देश उन मुद्दों पर एक जैसी राय रखते हैं जो आने वाली सदी की रूपरेखा तय करेंगे। श्री रूबियो ने कहा कि ऊर्जा के मुद्दे पर भी दोनों देशों की राय एक समान है। एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि अमेरिका 21वीं सदी के लिए अपनी आप्रवासन नीति को नया रूप दे रहा है। ईरान के बारे में उन्होंने कहा कि अगले कुछ घंटों में सकारात्मक खबरें आ सकती हैं। दोनों नेताओं ने खाड़ी और हिंद प्रशांत सहित क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की। श्री रूबियो की भारत यात्रा ऐसे समय में हुई है जब क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक भी होने वाली है। इससे पहले विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने आज अपने उद्घाटन संबोधन में कहा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापक वैश्विक सामरिक भागीदारी है जो गहरे सहयोग पर आधारित है। उन्होंने बात नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ बैठक में कही। अमेरिकी विदेश मंत्री 4 दिन की यात्रा पर कल भारत पहुंचे। वे 26 मई को क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वॉन्ग और जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सू मोटेगी भी शामिल होंगे। विदेश मंत्रियों के बीच प्राथमिक क्षेत्रों में क्वाड सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल में फलता विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतगणना जारी है। ताजा समाचार मिलने तक 16वें दौर में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा काफी आगे चल रहे हैं। उन्हें अब तक 76,397 वोट मिले हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPIM के शंभुनाथ कुर्मी दूसरे स्थान पर हैं, कांग्रेस के अब्दुल रजाक मुल्ला तीसरे और तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार जहांगीर खान चौथे स्थान पर हैं। वोटों की गिनती 14 केंद्रों पर की जा रही है। मतगणना 21 चरणों में हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर देश में अराजकता फैलाने का आरोप लगाया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ राहुल गांधी का बयान कांग्रेस और विपक्षी दलों की साजिश की ओर इशारा करता है। श्री गोयल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य देश को बदनाम करना, संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करना और विदेश जाकर विदेशी शक्तियों से भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की अपील करना है। मत्स्य पालन, पशुपालन और दुग्ध उत्पादन मंत्री राजीव रंजन सिंह कल मिजोरम के आइजोल में समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में मछली पालन, पशुपालन और दुग्ध उत्पादन से जुड़ी योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में करस्योंग इकाई ने आज आकाशवाणी एट 90 मैराथन का आयोजन किया। करस्योंग के विधायक सोनम लामा ने मैराथन को रवाना किया। श्री लामा ने कहा कि आकाशवाणी की 90 वर्ष की अनवरत और गौरवशाली सेवाओं का स्मरण नेपाल और नेपाली भाषियों के लिए अत्यंत गौरव का क्षण है। 8 जून 1936 को स्थापित आकाशवाणी करस्योंग नेपाली भाषियों को लगातार शिक्षा, सूचना और मनोरंजन प्रदान कर रहा है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं कक्षा के परिणाम के संबंध में नई सूचना जारी की है। ये सूचना 21 और 22 मई को गलत फीस कट जाने को देखते हुए जारी की गई है। ये समस्या जांची गई उत्तर पुस्तिकाओं के स्कैन की गई कॉपी के लिए आवेदन के दौरान हुई थी। बोर्ड ने कहा है कि कुछ मामलों में ज्यादा भुगतान काटा गया है जबकि कुछ मामलों में कम राशि ली गई है। CBSE के अनुसार अतिरिक्त भुगतान के मामलों में राशि खाते में लौटा दी जाएगी। कम भुगतान के मामले में विद्यार्थियों को बाकी भुगतान के लिए अलग से सूचित किया जाएगा। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि उचित शुल्क वाले सभी आवेदनों के मामलों में उत्तर पुस्तिका उपलब्ध कराई जाएगी और विद्यार्थियों को नए सिरे से आवेदन नहीं करना होगा। महाराष्ट्र की नाशिक अदालत में विशेष जांच दल ने TCS कंपनी से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि 4 आरोपियों के खिलाफ कल अभियोग पत्र दाखिल किया गया। सरकार ने विकसित भारत जीरामजी अधिनियम 2025 के अंतर्गत व्यापक जन परामर्श के लिए प्रारूप प्रकाशित किया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन और संस्था 21 जून तक प्रारूप के बारे में आपत्ति तथा सुझाव दे सकते हैं। अधिनियम में एक वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। इसके अनुसार निर्धारित समय में काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। भारत ने अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्रों को चिकित्सा सामग्री और सुरक्षा किट की पहली खेप भेजी है। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये सामग्री उभरते इबोला संकट को देखते हुए भेजी गई है। उन्होंने कहा कि भारत इस संकट से निपटने में अफ्रीका का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने इबोला संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारतीय नागरिकों को अफ्रीकी देश कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा न करने की सलाह दी है। एक रिपोर्ट।
1: सरकार ने इन देशों में मौजूद भारतीय नागरिकों से भी स्थानीय स्वास्थ्य दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने और एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इबोला को आपात स्थिति घोषित किया है। इबोला वायरस से फैलने वाला रोग है जिसमें बुखार और रक्तस्राव होता है। फिलहाल इसके लिए कोई टीका या इलाज उपलब्ध नहीं है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में आज रेलवे लाइन पर हुए धमाके में 24 लोग मारे गए हैं और कई घायल हैं। ये धमाका राजधानी क्वेटा के चमन फाटक रेलवे स्टेशन के पास हुआ। धमाके में एक रेलगाड़ी को मामूली नुकसान पहुंचा और आसपास खड़ी 10 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं। धमाके के बाद एहतियात के तौर पर पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस को क्वेटा रेलवे स्टेशन पर रोक दिया गया। शहर के कई संस्थानों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है क्योंकि मलबे में दबे यात्रियों को अब भी निकाला जा रहा है। उत्तरी चीन में एक कोयला खदान में हुए धमाके में 82 लोग मारे गए हैं। शुक्रवार को धमाके के समय लगभग 247 श्रमिक ड्यूटी पर थे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने घायलों के इलाज और खदान में बचे लोगों की तलाश के लिए निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के शानशी प्रांत में

0: वाहन दुर्घटना में मरने वालों के प्रति गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में चीन के लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने लापता लोगों की तत्काल और सुरक्षित वापसी की कामना भी की है। भारत में चीन के राजदूत शिव फेईहुंग ने शांसी में खान दुर्घटना के मृतकों के प्रति संवेदना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। चीन के राजदूत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि दुर्घटना स्थल पर राहत और बचाव कार्य चल रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी के बाद त्वरित कार्रवाई के लिए अधिकारियों और सीक्रेट सर्विस एजेंटों को धन्यवाद दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर कहा कि संदिग्ध का हिंसक इतिहास था। पेरिस में फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के मुकाबले अब से कुछ देर में शुरू होंगे। पहला मैच तीन बार के चैंपियन सर्बिया के नोवाक जोकोविच और फ्रांस के जियोवानी पेत्री पेरिकार्ड के बीच होगा। आज ही अलेक्जेंडर ज्वेरेव और टेलर फ्रिट्ज आमने सामने होंगे। विश्व के नंबर एक खिलाड़ी इटली के यानिक सिनर अपना पहला मैच कल खेलेंगे। पुरुष डबल्स में भारत के युकी भांबरी न्यूजीलैंड के माइकल वेनस के साथ और एन श्रीराम बालाजी ब्राजील के मार्सेलो जमोलिनर के साथ खेलेंगे। अन्य खेल खबरों के साथ है जागृति शर्मा।
1: आईपीएल क्रिकेट में आज दो मुकाबले खेले जाएंगे। पहला मैच मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुंबई में दोपहर बाद 3:30 बजे से होगा। दूसरा मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच शाम 7:30 बजे से होगा। विजेता टीमों को प्लेऑफ में जगह मिलेगी। इससे पहले कल पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। उधर गुरविंदर वीर सिंह ने फेडरेशन कप एथलेटिक्स प्रतियोगिता में पुरुषों की 100 मीटर स्पर्धा का स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। उन्होंने नए राष्ट्र कीर्तिमान के साथ राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अनिमेश कुजूर ने रजत और प्रणव प्रमोद ने कांस्य पदक जीता है। इस बीच ईरान की फुटबॉल टीम ने फीफा विश्व कप के लिए अपना बेस कैंप अमेरिका से मैक्सिको ले जाने का फैसला किया है। इसके लिए उसे फीफा से मंजूरी भी मिल गई है। फीफा विश्व कप अगले महीने से शुरू होगा। बेस कैंप अमेरिका से हटाने का फैसला ईरान, अमेरिका और इसराइल के बीच बढ़ते भू राजनीतिक तनाव को देखते हुए लिया गया है।
0: विश्व स्वास्थ्य संगठन की बैठक स्विट्जरलैंड के जिनेवा में संपन्न हो गई है। बैठक में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुपक्षीय सहयोग के लिए कई संकल्प लिए गए। बैठक में दिमागी दौरों, टीबी, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, आपातकालीन चिकित्सा, हीमोफीलिया, प्रिसिजन मेडिसिन और विकिरण से संबंधित निर्णय लिए गए। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि स्वस्थ समाज ही समृद्ध राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। आज सुबह गुजरात के अहमदाबाद में साइकिल दिवस और राष्ट्रमंडल दिवस के अवसर पर उन्होंने कहा कि साइकिल चलाने से प्रदूषण के समाधान के साथ साथ ईंधन की भी बचत होती है। मौसम विभाग ने आज पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में लू चलने की आशंका व्यक्त की है। अगले 5 दिन तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, विदर्भ, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के कुछ इलाकों में लू चलने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और अमेरिका ने दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को महत्वपूर्ण बताया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा शीघ्र व्यापार समझौता जरूरी, देश के लिए ऊर्जा आपूर्ति के विविधीकरण पर जोर। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक बताया। पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा क्षेत्र के पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार देवांशु पांडा ने भारी बढ़त हासिल की। सरकार ने इबोला के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए भारतीय नागरिकों को कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: FM 107 MHz पर हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 2:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम तराने नए पुराने।

तराने नए पुराने फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी को। फिल्म थी आरती। इस गीत को शब्द दिए थे मजरूह ने और संगीत था राजेश रोशन का।

0: श्रोता अभी अपने रेडियो सेट पे सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम तराने नए पुराने। कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे घर फिल्म का गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। इस गीत को लिखा था गुलजार ने और संगीत था आरडी बर्मन का।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है, आप सुन रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी चूरू। क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के साथ। आकाशवाणी चूरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चूरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चूरू, आपकी पहचान हमारी आवाज।
0: श्रोता अभी अपने रेडियो सेट पे सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम तराने नए पुराने। अंतराल से पहले कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति के रूप में आपने सुना था तेरे बिन साजन आरती फिल्म का ये गीत मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में। इस गीत को लिखा था मजरूह सुल्तानपुरी ने और संगीत था रोशन का। कार्यक्रम में दूसरा गीत आपने सुना था वजीर फिल्म से तेरे बिन। इस गीत को गाया था सोनू निगम और श्रेया घोषाल ने। इस गीत को लिखा था विधु विनोद चोपड़ा ने और संगीतकार थे शांतनु मोइत्रा। कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं समीर की शब्द रचना को आनंद मिलिंद के संगीत में। आवाजी हैं अलका याग्निक कुमार सानू की फिल्म सन।

फिल्म संगीत के कार्यक्रम तराने नए पुराने में अभी आप सुन रहे थे अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज में सनम फिल्म का गीत। इस गीत को लिखा था समीर ने और संगीत आनंद मिलिंद का था।

फिल्म संगीत के कार्यक्रम तराने नए पुराने में अभी आप सुन रहे थे संगम फिल्म का गीत। आवाजें थी लता मंगेशकर और मुकेश की। इसमें गीतकार थे शैलेंद्र और संगीतकार शंकर जयकिशन।

फिल्म संगीत के कार्यक्रम तराने नए पुराने का अंतिम गीत अभी आप सुन रहे थे मिथुन और अरिजीत की आवाजों में सनम रे फिल्म से। इस गीत के बोल भी मिथुन के थे और संगीतकार भी मिथुन थे। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम तराने नए पुराने अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं FM 110.7 MHz पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 3 बज चुके हैं। हमारी आज की प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होते हैं। सायंकालीन सभा में शाम 5 बजे आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दें।

FM 100.7 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का चूरू केंद्र है। श्रोताओं, इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के ठीक 5 बज चुके हैं। अब आज की हमारी सायंकालीन प्रसारण सभा आरंभ होती है। सभा के आरंभ में आइए सुनें हमारी युवा श्रोताओं का अपना कार्यक्रम युववाणी।

जी दोस्तों, स्वागत हो चुका है आपका फेवरेट प्रोग्राम युवाणी ओनली ऑन 100.7 FM पर, जहां आज के प्रोग्राम में आप सुनेंगे आपकी रेडियो दोस्त कोमल दैया को। युवाणी सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।

दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। प्रोग्राम चल रहा है युवाणी, और जैसा कि आप सब जानते हैं रविवार को हमारा खास सेगमेंट होता है शेखावाटी की धड़कन, जिसमें हम आपके द्वारा भेजी गई कुछ कहानी, कविता, किस्से जो हैं वो आप हमें ईमेल के जरिए भेजते हैं और वही हम अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं। साथ ही हमारी शेखावाटी के बारे में भी जो है चर्चा हम करते हैं, क्योंकि शेखावाटी की धड़कन हमारा खास सेगमेंट है और शेखावाटी की बात ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बिल्कुल दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजस्थान की उस आन बान और शान की, जो केवल सिर पर बांधा जाने वाला कपड़ा नहीं बल्कि सम्मान, संस्कृति, परंपरा और पहचान का प्रतीक होती है। बिल्कुल दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हमारी शेखावाटी की पगड़ी, जिसके क्या पहचान है, क्या सम्मान है और इसके पीछे की क्या संस्कृति है, इसके बारे में हम जानेंगे। दोस्तों राजस्थान का नाम सुनते ही जो है वो हमारे आंखों के सामने रंग बिरंगी पगड़ियां, ऊंट, हवेलियां और लोकगीत ये सारे सामने आने लगते हैं। और जब बात शेखावाटी की हो तो यहाँ की पगड़ी जो है वो अपनी अलग ही पहचान रखती है। ये केवल सिर्फ पहनावे का हिस्सा नहीं बल्कि यहाँ के लोग जो है वो उसकी उनकी शान है, आत्मसम्मान है और सांस्कृतिक विरासत का एक जीवंत जो प्रतीक है वो उस पगड़ी में हमें देखने को मिलता है। दोस्तों पगड़ी क्या होती है, मतलब हम सब जानते हैं, लेकिन ये है कि इसको अगर डिस्क्राइब हम करना चाहें कि पगड़ी क्या होती है। पगड़ी एक लंबा कपड़ा होता है जिसे सिर पर विशेष तरीके से बांधा जाता है। राजस्थान में इसको साफा, फेंटा या फिर पाग भी कहते हैं, लेकिन शेखावाटी की पगड़ी की बात जो है वो अलग है। वो एक खास पगड़ी होती है। यहाँ के जो यहाँ पर हर रंग के, हर बांधने का तरीका है, हर अवसर की पगड़ी का अपना एक अर्थ होता है। यहाँ की जो पगड़ी होती है वो केवल सिर ढकने के लिए नहीं पहनी जाती बल्कि ये बताती है कि व्यक्ति जो है वो किस क्षेत्र से है, किस अवसर पर आया है और उसकी जो सामाजिक स्थिति है और उसके मन में सामने वाले के लिए कितना सम्मान है, ये सारी चीजें जो वो पगड़ी देखकर हम समझ सकते हैं। क्योंकि दोस्तों राजस्थान का शेखावाटी क्षेत्र जो है

जैसे कि सीकर, झुंझुनू और चुरू जिले में फैला हुआ है। तो ये जो क्षेत्र है वो अपनी भव्य हवेलियां हैं, लोक कला है, वीरता और परंपराओं के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की जो बोली है, खान पान है, लोकगीत है और पहनावा है, उन सब की अलग अलग पहचान है और इनमें सबसे खास है शेखावाटी की पगड़ी। दोस्तों, पुराने समय में किसी भी व्यक्ति को अगर पगड़ी देख कर लोग पहचान लेते थे कि वो किस इलाके से आया है। पगड़ी सम्मान का प्रतीक थी। किसी की पगड़ी जो उछालना सबसे बड़ा अपमान माना जाता था, इसलिए आज भी गांव में लोग कहते हैं कि पगड़ी की लाज रखनी चाहिए। बिल्कुल दोस्तों, क्योंकि ये पगड़ी नहीं, ये हमारा सम्मान है और पगड़ी का और सम्मान का एक अलग ही रिश्ता है। भारतीय संस्कृति में हम देखें कि सिर को जो है वो बहुत सम्मानजनक माना जाता है और इसी कारण जो है सिर पर बांधी जाने वाली जो पगड़ी है वो सम्मान का प्रतीक जो है वो बन गई है। और हम बात करें राजस्थान में, जब भी किसी अतिथि का स्वागत किया जाता है तो उसको फिर साफा, पगड़ी ये सारी पहनाकर जो है वो सम्मान दिया जाता है। शादी विवाह हो या फिर कोई भी सामाजिक कार्यक्रम हो, धार्मिक कोई भी जो प्रोग्राम हो, किसी भी विशेष समारोह में अगर हो, तो पगड़ी पहनना जो है वो एक आदर और प्रतिष्ठा का जो प्रतीक है वो हमारे शेखावाटी में माना जाता है। कई बार आपने भी देखा होगा कि बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि हमारी पगड़ी की इज्जत रखना। इसका ये मतलब होता है कि हमारे परिवार की जो प्रतिष्ठा है, हमारे समाज की जो प्रतिष्ठा है, वो हमेशा बनी रहनी चाहिए। दोस्तों, बातें भी हम यूं ही जारी है और हमारे शेखावाटी धड़कन की जो सेगमेंट की जो खास चर्चा है वो भी जारी है। फिलहाल आपको लिए चलते एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक की ओर।

जी दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। प्रोग्राम चल रहा है युवाणी खास।

सेगमेंट जिसमें हम बात कर रहे थे शेखावाटी की पगड़ी, इसकी पहचान क्या है, इसका सम्मान किस लिए किया जाता है, इसके पीछे की संस्कृति क्या है। दोस्तों बहुत सारी अलग अलग कलर की पगड़ी जो है वो पहनी जाती हैं, अलग अलग तरीके से पहनी जाती हैं। तो शेखावाटी की जो पगड़ियाँ हैं, सबसे खूबसूरत बात है कि इनके रंग, इनके अलग अलग रंग हैं, हर रंग अपने आप में एक संदेश देता है। जैसे कि लाल और केसरिया पगड़ी है तो वीरता, उत्साह, सम्मान का जो प्रतीक है वो इस रंग को माना जाता है। शादी विवाह है या फिर जो भी अच्छे काम किए जाते हैं उस पर ज़्यादा पहनी जाती है। सफ़ेद रंग की जो पगड़ी पहनी जाती है वो शांति, सादगी और बुजुर्गों के सम्मान का प्रतीक मानी जाती है। वहीं अगर हरे रंग की पगड़ी की हम बात करें तो खुशहाली और प्रकृति से जुड़ाव का संकेत ये पगड़ी हमें देती है। और एक जो बहुरंगी साफा पहना जाता है दोस्तों, वो त्योहारों और मेलों की रौनक बढ़ाने के लिए पहना जाता है। राजस्थान की तपती गर्मी में चमकीले रंग जो है वो यहाँ की संस्कृति में उत्साह और जीवंतता जो है वो बढ़ देते हैं। बिल्कुल दोस्तों, और इसके पीछे बांधने की जो कला है वो भी अलग है। मतलब हर कोई जो है इस पगड़ी को बांध नहीं सकता, इसकी एक कला जो है वो भी है। पगड़ी बांधना जो है वो एक ऐसी कला है कि हर कोई आसानी से इसे बांध ही नहीं सकता। शेखावाटी में पुराने समय में लोग जो है वो विशेष तरीके से पगड़ी बांधते थे। कई घरों में जो वो ये कला है वो पीढ़ी दर पीढ़ी सिखाई भी जाती थी। और बाद में पगड़ी का कपड़ा जो है वो बहुत कई मीटर लंबा होता है, और इसे मोड़ना, घुमाना, फिर सिर पर संतुलित तरीके से बांधना, धैर्य, अनुभव, ये सारी चीज़ें जो है वो एक पगड़ी बांधने में ज़रूरी होती हैं। और आज भी हम देखते हैं कि गाँव में कई बुजुर्ग ऐसी सुंदर पगड़ी बांधते हैं कि देखने वाले बस देखते ही रह जाते हैं। तो ये पगड़ी जो है वो हमारे शेखावाटी की पहचान है। और बहुत सारे हमारे लोकगीत हैं, कहावत है, उनमें भी जो है वो पगड़ी की चर्चा की जाती है। साथ ही बदलते समय में जो है वो पगड़ी की स्थिति भी शायद कहीं ना कहीं चेंज हो गई है, क्योंकि आज का दौर जो है दोस्तों आधुनिकता का है और युवाओं का पहनाव जो है वो बदल रहा है। जैसे अलग अलग पहनावा जो है वो यूथ जो है वो पहनते जा रहे हैं और अपने पहनावे को बदलते जा रहे हैं। और इसके बीच जो है वो पगड़ी का उपयोग पहले जितना शायद नहीं होता है, लेकिन खुशी की बात या फिर यूँ कहें कि हमें तसल्ली देने वाली बात यह है कि आज भी जो है शादी होती है या त्यौहार होता है, कोई भी जैसे दीपावली, गणगौर, होली, बहुत सारी सांस्कृतिक और आयोजन होते हैं, उनमें लोग गर्व के साथ पगड़ी पहनते हैं। तो अब तो युवा जो है वो सोशल मीडिया है, सांस्कृतिक कार्यक्रम है, उनके जरिए जो है अपनी परंपरा से दोबारा से जुड़ना जो है वो शुरू हो चुके हैं। राजस्थानी थीम वाली शादियां होती है, कार्यक्रमों में पगड़ी का जो महत्व है वो फिर से बढ़ना शुरू हो जाता है। और इन सब के बीच दोस्तों एक बात यह है कि इन सारी जो हमारी संस्कृति है, जो इस सब के पीछे का सम्मान है, वो एक युवा की जिम्मेदारी भी बनती है। क्योंकि दोस्तों संस्कृति केवल जो है वो किताबों में नहीं बसती, वो तब बसती है जब नई पीढ़ी जो है वो पुरानी अपनी संस्कृति को बनाए रखती है और उसको दिल के साथ जो है वो अपनाती है। और आज भी हमें ये ज़रूरत है कि युवा अपनी संस्कृति को समझें और उस पर गर्व करें, क्योंकि पगड़ी केवल जो है वो कपड़ा नहीं, वो हमारी जड़ों से एक जुड़ाव जो है वो बना हुआ है। और ये हमारे जो पूर्वज थे उनकी वीरता, सादगी और सम्मान का याद जो है वो हमें दिलाती है। अगर हम अपनी संस्कृति को भूल जाएंगे तो आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो भी हम कहीं ना कहीं जो है वो इन सबसे दूर होती चली जाएगी। इसलिए हमें ये चाहिए कि हम अपने जो भी त्यौहार हैं, पारंपरिक जो भी आयोजन हैं और बहुत सारे विशेष अवसर होते हैं, उन पर पगड़ी पहनने की परंपरा जो है वो उसको बनाए रखें। क्योंकि दोस्तों एक बात ये भी है कि आज जब राजस्थान की पहचान पूरी दुनिया में भी बनी हुई है, देश विदेश से आने वाले जो पर्यटक हैं वो भी यहाँ की संस्कृति को करीब से देखना चाहते हैं और बहुत सारी जानकारी जो हमारी संस्कृति की वो यहाँ आकर उनको मिलती है। तो जब विदेशी मेहमान रंग बिरंगी पगड़ी पहनते हैं तब तस्वीरें खिंचाते हैं और राजस्थान की संस्कृति का जो है वो आनंद लेते हैं। तो हम जो है वो अपनी विरासत पर और ज़्यादा अधिक गर्व जो है वो महसूस करते हैं, यानी कि बाहर से लोग आकर हमारी संस्कृति को अपना रहे हैं, उसको गहराई के साथ जान रहे हैं, तो ये भी हमारे लिए एक सम्मानजनक बात होती है। जब भी अगर हम बात करें दोस्तों पगड़ी और वीरता के बीच क्या संबंध है, क्योंकि हमारी संस्कृति पुरानी चली आ रही है तो उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों में ये देखें कि राजस्थान जो है वो हमेशा से वीरों की भूमि रही है। यहाँ के जो योद्धा थे वो अपनी युद्ध भूमि में अपनी पगड़ी को सम्मान के साथ पहनते थे जब भी कोई युद्ध करने जाते थे, और पगड़ी उनके साहस और स्वाभिमान का प्रतीक थी। वो अपने प्राण दे सकते थे लेकिन अपनी पगड़ी का अपमान सहन नहीं कर सकते थे, और यही जो बात है वो हमारी शेखावाटी को अलग बनाती है। और आज भी राजस्थान में जब हम बात करें कि पगड़ी जो है वो हमारे राजस्थान की आन बान और शान है, तो इसमें यूँ कहे कि जब भी हम पगड़ी पहनते हैं तो एक सम्मान जो है वो हमारे मन से अपने
आप महसूस जो है वो होने लगता है। क्योंकि दोस्तों शेखावाटी में पगड़ी जो है वो केवल एक व्यक्तित्व सम्मान नहीं है बल्कि सामाजिक एकता का भी प्रतीक है। जब भी हम देखते हैं कि गांव में किसी भी विवाद को सुलझाया जाता है तो बड़े बुजुर्ग जो है वो पगड़ी पहनकर पंचायत में बैठते थे। तो ये सारी चीजें जो है वो पुरानी आगे से आगे चली आ रही हैं और हमें जरूरत है कि हम उनको और आगे तक लेके जाएं। क्योंकि आज का दौर जो है वो फैशन की दुनिया में भी राजस्थानी पगड़ी का जो प्रभाव है वो बना हुआ है। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि आज भी हमारी संस्कृति कितनी मजबूत बनी हुई है। बहुत सारे डिजाइनर्स जो है वो अपनी पारंपरिक पगड़ी को आधुनिक रूप में जो है वो बना रहे हैं और प्रस्तुत कर रहे हैं। इससे हमारी जो संस्कृति है वो नई पीढ़ी तक और ज़्यादा आकर्षक तरीके से पहुँच रही है, लेकिन हमारी संस्कृति वैसे की वैसे बनी हुई है। तो दोस्तों किसी भी समाज की असली ताकत उसकी संस्कृति होती है। जिस समाज को अपनी परंपराओं पर गर्व होता है वो समाज हमेशा आगे बढ़ता है। और शेखावाटी की पगड़ी जो है वो हमें यही सिखाती है कि सम्मान करें, अपनी पहचान पर गर्व करें और अपनी संस्कृति को सहेज कर रखें। क्योंकि हमें आधुनिक बनना है लेकिन अपनी जड़ों को जो है वो कभी भी नहीं भूलना है। दोस्तों प्रोग्राम में बातें यूं ही जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ 100.7 FM पर। फिलहाल आपको लिए चलते एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक की ओर।

0: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस
1: बस
0: समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: ये आकाशवाणी का प्रसारण है, आप सुन रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी चूरू।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: जी दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का खास सेगमेंट शेखा वाटी की धड़कन। अब आपको लिए चलते हैं हमारे ईमेल्स की ओर, जिसमें हमारे श्रोता हमें कहानी, कविता, किस्से या फिर अपने जो विचार हैं वो हमारे साथ शेयर करते हैं। तो दोस्तों, पहला ईमेल जो है वो हमें मिला है सुभाष चंद्र चूनाराम के ढाणी तारानगर से। इन्होंने कुछ लाइनों में जो है वो अपनी बात कहनी चाहिए, और इन्होंने लिखा है, जिंदगी सीधे सीधे चलना ठीक नहीं, उबड़ खाबड़ पड़ाव भी जरूरी है, तैरते तैरते बाजू थक जाएंगे, एक पल के लिए नाव भी जरूरी है, बदलाव भी जरूरी है, ये घाव भी जरूरी है, इतनी धूप अच्छी नहीं, थोड़ी छांव भी जरूरी है, सफर जो धूप का किया तो तजुर्बा हुआ।

कि सुभाष चंद्र जी आपने बहुत ही प्यारी लाइंस जो है वो हमें लिखकर भेजी हैं ईमेल्स के जरिए। दोस्तों ये जो कविता है या फिर ये जो लाइंस हैं वो हमारे जीवन के जो उतार चढ़ाव है उसके महत्व को समझाती हैं, क्योंकि इनमें इन्होंने कहा है कि जीवन जो है वो हमेशा जो है वो आसान और सीधा नहीं होता, क्योंकि कठिनाइयाँ ही जो है वो इंसान को मजबूत बनाती है, और अनुभवी जो है वो भी तभी मिलता है जब हम जो है वो कठिनाइयों से निकल कर और उनका परिस्थितियों का सामना करें, क्योंकि लगातार संघर्ष करते रहने के बीच आराम और शांति के कुछ पल जो है वो भी जरूरी होते हैं। जैसे धूप के साथ छांव जीवन में जो है वो एक बैलेंस बनाए रखती है, वैसे ही सुख दुख है, बदलाव और संघर्ष जो है वो हमेशा इंसान को जो है वो मजबूत बनाते हैं। सिर्फ केवल यूं कहें कि आरामदायक जीवन जीने से जो है वो सच्चा अनुभव हमें अपनी लाइफ का नहीं मिलता। जीवन का असली जो सीख है वो यही है कि कठिन परिस्थितियां हो और चुनौतियों का सामना करना है वो हमें आना चाहिए। जो व्यक्ति इन सब के आगे जो है वो बढ़ गया तो उसको अपने जीवन में कहीं भी जो है वो कोई भी परिस्थिति नहीं रोक सकती और वो अपना काम जो है वो आसानी से कर सकता है। दोस्तों जिंदगी जो है वो एक किताब जैसी है, हर पन्ना कुछ ना कुछ नया सिखाता है, कुछ पन्ने हंसी से भर जाते हैं तो कुछ आंसुओं से, लेकिन हर पन्ना जो है वो हमें जीवन में आगे बढ़ने की सीख देता है। जैसे हम बात करें कि नदी अगर केवल शांत बहती रहे तो फिर समंदर तक कैसे पहुंचेगी, रास्ते के पत्थर ही जो है वो उसकी रफ्तार और पहचान जो है वो बना देते हैं। और इंसान की जो असली ताकत है वो मुश्किल जो टाइम आता है उसमें ही पता चलता है, क्योंकि सोना जो है वो कभी भी आग में तपकर जो है वो कुंदन बनता है। हर ठोकर जो है वो हमें अपनी लाइफ में एक नई सीख देती है। अगर रास्ते में हमें गिरना ना हो तो फिर संभल कर चलना कोई भी नहीं सीखता। अगर हमारी परिस्थितियां यूं कहें कि हमेशा सही सही चलती रहें तो हमें कठिनाइयों का जो है वो पता भी नहीं चलेगा और हम जीवन में शायद इतना कुछ नहीं सीख पाते जितना हम अपनी कठिनाइयों से और अपनी जो परिस्थिति बदलाव होता है उनसे सीखते हैं। क्योंकि जिंदगी जो है वो सिर्फ मंजिल पाने का नाम नहीं बल्कि हमारे रास्तों से सीखते हुए और मुस्कुराकर आगे बढ़ने का नाम है। हमेशा जो है वो हमें आसान रास्ते इंसान को जो है वो कमजोर बना देते हैं, इसलिए जब भी कठिन रास्ते आए तो उसे मजबूत और समझदार हमेशा बनना चाहिए और हर परिस्थिति से जो है कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। दोस्तों प्रोग्राम भी जारी है, आपको लिए चलते एक

क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के साथ। आकाशवाणी चूरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात

0: की आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चूरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चूरू, आपकी पहचान, हमारी आवाज।
1: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: जी दोस्तों, अब आपको लिए चलते हैं हमारे अगले ईमेल की ओर जो हमें मिला है वार्ड नंबर 24 चूरू से, और लिखने वाले प्रियंका, पलक, अंजू, ललिता और सुमन। दोस्तों, इन्होंने एक बहुत ही प्यारी जो कहानी है वो हमें लिख के भेजी है, जो हमें अपने जीवन का सार है वो समझाती है। एक बार एक गांव में दो दोस्त रहते थे, अर्जुन और मोहन। दोनों ने साथ में खेती शुरू की। अर्जुन जो है वो हमेशा आसान रास्ता चुनता था, जबकि मोहन जो है वो मेहनत और धैर्य में विश्वास रखता था। एक साल जो है वो गांव में बहुत सूखा पड़ गया, खेतों में पानी की कमी हो गई, तो अर्जुन ने सोचा कि अब खेती से कुछ नहीं होगा और उसने अपना काम वहीं छोड़ दिया। लेकिन मोहन जो है वो रोज सुबह उठकर दूर नदी से पानी लाता और अपने खेत को थोड़ा थोड़ा सींचता रहा। गांव वाले जो है वो उसका मजाक भी उड़ाते थे, कहते इतनी मेहनत का क्या ही फायदा। फिर भी मोहन जो है वो मुस्कुरा देता और अपना काम लगे रहता। कुछ महीनों बाद जब बारिश हुई तो अर्जुन का खेत पूरी तरह सूख चुका था, लेकिन क्योंकि उसने जो है वो उम्मीद छोड़ दी थी। लेकिन मोहन के खेत में छोटी छोटी हरी फसलें जो है वो अभी भी बची हुई थी, और वही फसल जो है बाद में पूरे गांव में सबसे अच्छी निकली। तब जाके मोहन ने कहा कि मुश्किल समय में जो है वो हमें रोकने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आता है। जो धूप में टिकना सीख लेता है, वही छांव में असली जो अपनी कीमत है वो समझता है। बिल्कुल दोस्तों, बहुत ही प्यारी जो कहानी है इन्होंने लिख के भेजी है, और ये कहानी दोस्तों हमें यही सिखाती है कि कितना भी जो है वो कठिन समय आए, हमें जो है वो अपने धैर्य और अपनी मेहनत जो है वो नहीं छोड़नी चाहिए। जहाँ अर्जुन ने हार मान ली, वहीं मोहन ने जो है वो लगातार प्रयास किया और लास्ट में जाके जो है वो सक्सेस भी हुआ। तो हमारे जीवन में जो है वो संघर्ष, उम्मीदें बनाए रखने वाला जो व्यक्ति है, वही वो अपनी जीवन की असली सफलता और खुशियों तक पहुँच सकता है। इसलिए हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, हमेशा संघर्ष करते रहना चाहिए, और एक ना एक दिन आपका जो संघर्ष है वो आपकी उस आपकी मेहनत का फल जो है वो आपको जरूर मिलेगा। दोस्तों, बातें भी आगे जा रही हैं, आपको एक और म्यूजिकल ब्रेक के लिए लिए चलते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ प्रोग्राम

जी दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। प्रोग्राम चल रहा है युवाणी, खास सेगमेंट शेखावाटी की धड़कन। दोस्तों, हम बात करें युवा की। युवा केवल उम्र का नहीं होता, बल्कि सोच, ऊर्जा और सपनों और फिर बदलाव का नाम होता है। हर दौर में जो है युवा है का जो है उन्होंने समाज को एक नई दिशा दी है। आज का युवा केवल अपने लिए नहीं सोचता, बल्कि समाज है, देश है और आने वाले भविष्य के लिए भी जागरूक है। क्योंकि दोस्तों, किसी भी देश की सबसे बड़ी शक्ति जो है वो युवा होते हैं। युवा वो ऊर्जा है जो कठिन परिस्थितियों को भी जो है वो अवसरों में बदल देते हैं। और आज का युवा जो है वो पहले से ज्यादा जागरूक हो चुका है, आत्मविश्वासी हो चुका है और तकनीक से जुड़ चुका है। वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत भी कर

रहता है, नए रास्ते बनाने का साहस भी रखता है। क्योंकि पहले लोग कहते थे कि जो चल रहा है उसी को चलने दो, लेकिन आज का युवा ये पूछता है कि अगर कुछ बेहतर हो सकता है तो फिर बदलाव क्यों नहीं, और यही सोच जो है वो एक नई पहचान बनाती है। दोस्तों आज का युवा जो है वो केवल नौकरी तक सीमित नहीं रहना चाहता, वो कुछ नया करना चाहता है, अपनी अलग पहचान बनाना चाहता है। जैसे कोई स्टार्टअप शुरू कर रहा है, कोई सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी कला दिखा रहा है, तो कोई खेती में नई तकनीक अपना रहा है, और कई तो है ये कि शिक्षा और समाज के जो सेवा क्षेत्र हैं उनमें भी युवा जो है वो काम कर रहा है। यानी आज का युवा जो है वो केवल सपने नहीं देखता बल्कि उनको पूरा करने की कोशिश भी करता है। और आज का युवा जो है वो तकनीक से जुड़ा हुआ है, आज का टाइम जो है वो भी डिजिटल युग है, और मोबाइल, इंटरनेट, सोशल मीडिया, ये सारी चीज़ों में जो है युवा की जो दुनिया है वो बदलती है। आज का गांव का जो युवा है वो भी ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा है, अपना हुनर जो है वो दुनिया तक पहुंचा सकता है, और घर बैठे बहुत सारी नई चीज़ें जो है वो सीख सकता है। लेकिन तकनीक का दोस्तों सही उपयोग बहुत ज़रूरी है। अगर सोशल मीडिया हमें प्रेरणा और सीखने का माध्यम बनती है हमारे लिए, तो ये बहुत ही यूजफुल हमारे लिए है। लेकिन अगर टाइम की बर्बादी बन जाए तो ये फिर नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए समझदारी इसी में है कि तकनीक को साधन बनाया जाए, ना कि आदत बननी चाहिए। नई सोच के साथ जिम्मेदारी भी जरूरी है। सिर्फ सपने देखना काफी नहीं होता, उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत है, डिसिप्लिन है, और साथ ही धैर्य जो है वो भी रखना बहुत जरूरी होता है। और आज का युवा जो है वो अपने परिवार, समाज और देश के प्रति जो है जिम्मेदार बना हुआ है, और यही सबसे बड़ी जो युवा की पहचान है। अगर युवा जो है वो सही दिशा में आगे बढ़े तो बेरोजगारी जो है वो कम भी हो सकती है, समाज में जागरूकता बढ़ सकती है, और साथ ही साथ देश की तेजी से विकास भी हो सकता है। क्योंकि युवा जो है वो अपनी संस्कृति से एक जुड़ाव महसूस करता है। आधुनिक बनना अच्छी बात है, लेकिन अपनी संस्कृति और परंपराओं को भूल जाना ये सही नहीं है। और युवा जो है वो अपनी परंपराओं से, अपनी संस्कृति से आज भी जुड़ा हुआ है। हम देखते हैं कि नई तकनीक है वो युवा सीख रहा है, और बहुत सारी चीज़ें जो है नई नई चीज़ें वो युवा सीख भी रहा है, और उसके प्रति जो है लोगों को जागरूक भी कर रहा है, जिससे क्या है कि दुनिया से जुड़ता ही जा रहा है। और ये बहुत ही सही है कि लेकिन इसमें ये होना जरूरी है कि साथ ही अपनी भाषा, अपनी लोक कला, अपने रीति रिवाज, अपने संस्कारों को भी समझना जरूरी है। जहाँ हम तकनीक को अपना रहे हैं, नई नई चीज़ें जो है उनमें अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, तो उसी के साथ जो है हमारी संस्कृति है, हमारे संस्कार हैं, उन चीज़ों को भी हमें साथ में लेकर चलना चाहिए। और जो युवा अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है उसकी पहचान जो है वो सबसे मजबूत बनती है। क्योंकि दोस्तों सफलता जो है वो हर किसी को तुरंत नहीं मिलती, कई बार जो है वो मेहनत के बाद भी हमें असफलता मिलती है। लेकिन जब असफलता हमारे लिए अंत नहीं होती बल्कि सीखने का एक और अवसर जो है वो हमें देती है। हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम अपनी लाइफ में सक्सेस नहीं हुए तो शायद आगे भी नहीं होंगे, और उसके बजाय जो वो हम मेहनत करना भी छोड़ दें, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक असफलता जब हमारी लाइफ में आती है तो वो कुछ और नई चीज़ें जो है वो हमें सिखा कर जाती हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्हें हार नहीं माननी, हमें किसी भी परिस्थिति में जो है वो हार नहीं माननी। युवा जो है बस उनको तो ये चाहिए कि असफलता है उससे बिल्कुल ना डरें, बल्कि उससे सीखकर जो है वो आगे बढ़े, अपनी लाइफ में कुछ और नया करने की सोचें। क्योंकि दोस्तों एक सकारात्मक सोच जो है वो इंसान की पूरी जिंदगी बदल सकता है। अगर युवा जो है वो अपने अंदर आत्मविश्वास रखे, मेहनत करे और सही दिशा में अगर आगे बढ़े तो कोई भी टारगेट जो है वो उसके लिए मुश्किल नहीं होता है। और वहीं अगर हम नेगेटिव सोच जो है अपनी बना लेते हैं तो वो हमें कमजोर बना देती है। और जब पॉजिटिव सोच हमें हम रखते हैं हमारे अंदर तो नई उम्मीद, नई पहचान जो है वो हमें मिलती है। आज का समाज जो है वो सबसे ज़्यादा जागरूक जो है वो युवा है। उसमें ऐसे युवा जो शिक्षा, स्वच्छता, पर्यावरण, महिला और सम्मान, साथ ही साथ जो है वो सामाजिक एकता जैसे मुद्दों पर जो है वो आगे बढ़ते हैं और उन पर जो है लोगों को जागरूक भी करते हैं। और अगर हम ये देखते हैं कि युवा अगर इस चीज़ को ठान ले तो समाज की कोई भी समस्या जो है वो हम कभी भी जो है वो किसी भी तरीके से कम कर सकते हैं। एक जागरूक युवा जो है वो केवल अपनी ज़िंदगी नहीं बदलता बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन जाता है। तो दोस्तों हर युवा के अंदर कोई ना कोई खास प्रतिभा जरूर होती है। किसी को गाना पसंद है, किसी को लिखना पसंद है, किसी को खेलना पसंद है, तो किसी को विज्ञान और तकनीक के साथ जुड़ना पसंद है। बस हमें ये जरूरत है कि उस प्रतिभा को पहचानना है, अपने टैलेंट को पहचान कर उसको आगे उसमें निखार लाने की जरूरत है। दूसरों की नकल करने से बेहतर है कि अपनी एक अलग पहचान बने। हम क्या सोचते हैं, हमारा माइंड किस तरीके से जो वो क्रिएटिव बन सकता है, क्या चीज़ें जो है वो हम अपनी लाइफ में जो है वो और बेहतर कर सकते हैं, उन चीज़ों के बारे में हमें ज़्यादा सोचना चाहिए।

क्योंकि जिंदगी में कभी भी खुद को अगर हम कमजोर समझते हैं तो फिर हम आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि हर एक बड़ा बदलाव युवा से ही शुरू होता है। अगर आपके पास सपने हैं, मेहनत करने का हौसला है और कुछ अच्छा करने की अगर हमारे अंदर सोच है, तो फिर हम अपनी पहचान जो है वो जरूर बना सकते हैं। और हमें इन सारी चीजों के जरिए एक चीज याद रखनी चाहिए कि उम्र नहीं, सोच जो है वो इंसान को बड़ा बनाती है। तो दोस्तों, इस चर्चा में हमने यही जाना कि युवा की जो सोच है वो नई पहचान की असली ताकत है। आज का युवा अगर सही दिशा में अपनी ऊर्जा और प्रतिभा का उपयोग कर रहा है तो वह न केवल अपनी जिंदगी अच्छी बना रहा है बल्कि पूरे समाज और देश का भविष्य बदल सकता है। तो दोस्तों, ये तो था आज का हमारा कार्यक्रम युवाणी, खास सेगमेंट शेखावाटी की धड़कन। फिलहाल प्रोग्राम से जाने की इजाजत दे कोमल दैया को। नमस्कार।

अभी युवा साथी सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। ये आकाशवाणी का चूरू केंद्र है FM 100.7 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय शाम के 5:55 हो चुके हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण में आज की सायंकालीन सभा के शेष रहे कार्यक्रम और उनके प्रसारण समय के।

अब से थोड़ी देर में यानी शाम 6 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। अंग्रेजी में समाचार होंगे शाम 6:05 पर। ये समाचार बुलेटिन आकाशवाणी केंद्र दिल्ली से प्रसारित होंगे शाम 6:00।

शाम 6:20 पर आप सुनेंगे आकाशवाणी केंद्र दिल्ली से रिले संस्कृत में समाचार। हिंदी में प्रादेशिक समाचार होंगे शाम 6:30 पर। 6:42 पर सुनिए जिले की चिट्ठी का प्रसारण। शाम 6:48 का समय रहेगा राजस्थानी में प्रादेशिक समाचारों का। ये समाचार प्रसारण हम आकाशवाणी केंद्र जयपुर अजमेर से

शाम 7 बजे श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम खेती और गृहस्थी। इस कार्यक्रम में होंगी चर्चाएं, लोकगीत एवं लोक भजन। फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता श्रोता सुन पाएंगे रात्रि 8 बजे। 8:45 पर सुनिए समाचार संध्या। News@9 का प्रसारण होगा रात्रि 9 बजे। ये समाचार प्रसारण आप सुनेंगे आकाशवाणी केंद्र

रात्रि 9:15 पर आप सुनेंगे राजस्थानी लोक संगीत। फिल्म संगीत का प्रसारण होगा रात्रि 9:30 पर। रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा का प्रसारण। ये कार्यक्रम हम आकाशवाणी केंद्र दिल्ली से प्रसारित

ये समाचार बुलेटिन आकाशवाणी केंद्र दिल्ली से रिले होंगे। अभी श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण में आज की सायंकालीन सभा के शेष रहे कार्यक्रम और उनके प्रसारण समय।

ये आकाशवाणी का चूरू केंद्र है, FM 110.7 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, शाम के 6 बजने वाले हैं। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से पहले हिंदी में और 6:05 पर अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
1: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
0: ईरान संघर्ष पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जिनके अमेरिका, इसराइल, ईरान और अन्य खाड़ी देशों के साथ मजबूत रिश्ते हैं। उन्होंने कहा कि भारत क्षेत्र में शांति और स्थिरता तथा भारतीय समुदाय के कल्याण के साथ साथ ईंधन की कम कीमतें चाहता है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया। अमेरिका के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। यह बैठक 26 मई को आयोजित की जाएगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी भी भाग लेंगे। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,000 से अधिक मतों से हराया। श्री कुर्मी को 40,600 से अधिक वोट मिले हैं। तीसरे स्थान पर कांग्रेस के अब्दुल रज्जाक और चौथे स्थान पर तृणमूल कांग्रेस के जहांगीर खान रहे। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान फलता में मतदान में धांधली होने के बाद इस सीट पर पुनर्मतदान के आदेश दिए थे। यहाँ इस महीने की 21 तारीख को मतदान कराया गया था। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास और IIT कानपुर के प्रोफेसरों और तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने का निर्देश दिया है। यह निर्णय CBSE के परीक्षा परिणाम सेवा पोर्टल के संबंध में विद्यार्थियों और अभिभावकों की चिंताओं और समस्याओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की 4 सदस्यों की मेडिकल टीम ने आज भोपाल में पूर्व मॉडल और अभिनेत्री त्रिशा शर्मा का दूसरा पोस्टमार्टम किया। यह पोस्टमार्टम कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लगभग 3 घंटे तक चला। कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद शव परिवार को सौंप दिया गया और भोपाल के भदभदा शमशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। 33 वर्षीय त्रिशा की मृत्यु भोपाल में उनके ससुराल में हुई थी। त्रिशा के परिवार ने ससुराल वालों पर दहेज उत्पीड़न और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नागरिक अलंकरण

कार्यक्रम का पहला गीत फिल्म वीर जारा से, आवाजें लता मंगेशकर, उदित नारायण और साथियों की। गीतकार हैं जावेद अख्तर, संगीतकार मदन।

स्वदेश फिल्म में आप सुन रहे थे ए.आर. रहमान को। इस गीत के साथ कार्यक्रम देशभक्ति फिल्मी गीत अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी चूरू का प्रसारण है FM बैंड के 100.7 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 6:20 होने वाले हैं। अब आप दिल्ली केंद्र से सुनेंगे संस्कृत में।

0: मुख्य समाचार। प्रदेश में कल से वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की शुरुआत होगी। जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने की दिशा में होंगे कई कार्यक्रम। राज्य सरकार ने राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति 2024 में अहम बदलाव किए। तकनीकी अपग्रेडेशन के लिए दिए जाने वाले अनुदान को 1 करोड़ रुपए किया। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा, नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। और प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में तेज गर्मी और लू का असर जारी, अगले कुछ दिन राहत के आसार नहीं। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में कल से जल संग्रहण और संरक्षण के लिए वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की शुरुआत होगी। गंगा दशमी से शुरू हो रहा ये अभियान 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस तक चलेगा। इस अभियान को लोगों को अधिक से अधिक जोड़ने के लिए जन आंदोलन का रूप दिया जाएगा। और ब्यौरा समाचार कक्ष से हमारे सहयोगी जितेंद्र प्रधान से।
1: जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में कल से शुरू हो रहे वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत राज्य भर में आम जन को इस अभियान से जोड़ा जाएगा। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने पंचायतों, स्वयंसेवी संस्थाओं, धार्मिक संगठनों, उद्योगपतियों, युवाओं और आम जन की भागीदारी सुनिश्चित करने की पहल की है। अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा टोंक जिले के बीसलपुर बांध से जल पूजन और शिव अभिषेक से करेंगे। इसी दिन मुख्यमंत्री भरतपुर के श्री गंगा माता मंदिर में आरती और सुजान गंगा नहर में दीपदान भी करेंगे। इसी तरह राज्य के विभिन्न जिलों में कुओं, बावड़ियों, तालाबों, नहरों और अन्य जल स्रोतों के पूजन के साथ जिला स्तरीय अभियान की शुरुआत होगी। जागरूकता को लेकर वंदे गंगा प्रभात फेरियां, लेखन प्रतियोगिताएं, पीपल पूजन, पौधारोपण सहित कई गतिविधियां आयोजित की जाएंगी।
0: राज्य सरकार ने राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति 2024 में अहम बदलाव किए हैं। नीति के तहत तकनीकी अपग्रेडेशन के लिए दिए जाने वाले अधिकतम अनुदान को 50 लाख रुपए से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इस नीति में संशोधन की अधिसूचना जारी कर दी गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य बजट 2026-27 के तहत वित्त और विनियोग विधेयक पर चर्चा के दौरान इसकी घोषणा की थी। उद्योग और वाणिज्य आयुक्त नीलाभ सक्सेना ने बताया कि तकनीकी अपग्रेडेशन पर दिए जाने वाले अनुदान में बढ़ोतरी से उद्योग वैश्विक प्रतिस्पर्धा के अनुरूप आधुनिक तकनीक को अपना सकेंगे। इससे उत्पादन क्षमता बढ़ने के साथ साथ गुणवत्ता में भी सुधार होगा। इसके साथ ही स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए एक जिला एक उत्पाद ODOP 2024 में भी महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इसके तहत रत्नाभूषण उत्पाद से जुड़े

0: उद्यमों के विस्तार पर भी मार्जिन मनी अनुदान दिया जाएगा, साथ ही निजी संस्थानों के माध्यम से तकनीकी अपग्रेडेशन भी हो सकेगा। उद्योग विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार सूक्ष्म इकाइयों को 20 लाख रुपए और लघु श्रेणी की इकाइयों को 15 लाख रुपए तक का मार्जिन मनी अनुदान मिल सकेगा। वहीं निजी संस्थानों के माध्यम से तकनीकी अपग्रेडेशन के लिए 5 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो का कल जयपुर आने का कार्यक्रम है। वे आमेर महल का भ्रमण करेंगे। श्री रूबियो के दौरे पर को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस की ओर से व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री की इस यात्रा को भारत और अमेरिका के बीच सांस्कृतिक, कूटनीति और रणनीतिक संबंधों से जोड़कर देखा जा रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो 4 दिन के भारत प्रवास पर हैं। उन्होंने आज नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात की। हैदराबाद हाउस में हुई इस चर्चा में पश्चिम एशिया संकट से उपजे मौजूदा हालात और रक्षा सहयोग पर चर्चा की गई। इसके बाद डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापक वैश्विक सामरिक भागीदारी है। दोनों देशों के संबंधों का पूरी दुनिया पर असर पड़ता है। उन्होंने कहा कि बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा और इसके सार्थक परिणाम मिलने की उम्मीद है। प्रदेश के बालोतरा जिले में स्थित सिवाना रिंग कॉम्प्लेक्स में दुर्लभ खनिजों का भंडार मिला है, जो देश को रॉकेट से लेकर न्यूक्लियर प्लांट्स का कच्चा माल उपलब्ध करवाने और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी बनाने में सहायक होगा। केंद्रीय खान मंत्रालय की एक बैठक में सिवाना रिंग कॉम्प्लेक्स में मौजूद दुर्लभ खनिजों के भंडार को रेखांकित किया गया है। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अधिकारियों को सिवाना रिंग कॉम्प्लेक्स के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रदेश में नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए हैं।
1: नारी शक्ति बंधन अधिनियम,
0: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR News और फेसबुक AIR News Rajasthan पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज भीलवाड़ा दौरे पर रहे, जहां उन्होंने हमीरगढ़ हवाई पट्टी का जायजा लिया। इसके बाद श्री मेघवाल ने हमीरगढ़ रीको क्षेत्र में भीलवाड़ा टेक्सटाइल ट्रेड फेडरेशन के कार्यालय में उद्यमियों से संवाद किया। श्री मेघवाल ने पत्रकारों से बातचीत में भीलवाड़ा में व्यावसायिक उड़ाने शुरू करने के प्रस्ताव को केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के सामने रखने का आश्वासन दिया। नारी शक्ति वंदन अधिनियम का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इसे लागू करवाना केंद्र सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
1: नारी शक्ति वंदन अधिनियम, इसमें महिलाओं को लोकसभा में और राज्य विधानसभा में 33% रिजर्वेशन देने के लिए जो बिल था पास किया हुआ, उसको लागू करने का ही अवसर था, क्योंकि हमें सेंसस हमारी शुरू हुई है तो सेंसस के डेटा आने में समय लग रहा था, तो डिलिमिटेशन और सेंसस में संशोधन हम चाह रहे थे। हम सहमति बनाने में लगे हुए हैं, सहमति बनेगी तो प्रयास करेंगे निश्चित रूप से। इसमें क्या है, सरकार की तो पहली प्राथमिकता है।
0: केंद्र सरकार वजन और माप की जांच प्रणाली को मजबूत करने के लिए जांच केंद्रों GATC की भूमिका का विस्तार करेगी। इसके लिए 2013 के नियम में संशोधन किया गया है। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने ये जानकारी देते हुए बताया कि नए नियमों में GATC वजन और माप की 23 श्रेणियों का सत्यापन कर सकेंगे। इनमें पेट्रोल, डीजल, CNG, LPG, LNG और हाइड्रोजन डिस्पेंसर जांच शामिल है। इस पहल का उद्देश्य व्यापार को पारदर्शी बनाना और तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देना है। बांसवाड़ा के गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अध्ययन पीठ का शुभारंभ किया गया है। राणा पूंजा सभागार में आज आयोजित एक कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने पीठ की विधिवत शुरुआत की। समारोह को संबोधित करते हुए श्री देवनानी ने कहा कि विश्वविद्यालय की ओर से स्थापित ये अध्ययन पीठ भारतीय ज्ञान परंपरा और जीवन मूल्यों पर आधारित राष्ट्र निर्माण जैसे विषयों पर उच्च स्तरीय शोध और अकादमिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बनेगी।

0: फिट इंडिया मूवमेंट के संडे ऑन साइकिल मुहिम के तहत प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर साइकिल रैली, योगाभ्यास सहित विभिन्न फिटनेस गतिविधियां आयोजित की गईं। विभिन्न स्थानों पर अधिकारियों, खिलाड़ियों, युवाओं और फिटनेस प्रेमियों ने उत्साह के साथ इसमें भाग लिया। इस मौके पर जयपुर के एसएमएस स्टेडियम के चारों ओर साइकिल रैली रखी गई, जिसमें मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने भाग लिया। लोगों को स्वस्थ जीवन शैली के प्रति जागरूक करने के लिए ये आयोजन हुआ। हनुमानगढ़, जैसलमेर, राजसमंद, कोटपूतली, बहरोड, सलूम्बर, बालोतरा, झुंझुनू और पाली में भी साइकिल रैली के जरिए लोगों को बेहतर स्वास्थ्य का संदेश दिया गया। कई स्थानों पर योग दिवस काउंटडाउन कार्यक्रम को भी इसमें जोड़कर योगाभ्यास, जूम्बा, रोप स्किपिंग सहित अन्य गतिविधियां हुई। और अब मौसम। प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में प्रचंड गर्मी और लू का असर बना हुआ है। राजधानी जयपुर में आज दिनभर तेज धूप और गर्म हवाओं से जनजीवन प्रभावित रहा। दोपहर में बाजारों में लोगों की आवाजाही कम रही। चूरू में दिनभर लू चलने से लोगों की दिनचर्या पर प्रभाव पड़ा। बाड़मेर से हमारे संवाददाता ने बताया कि वहां लोग तेज गर्मी से बचाव के लिए कई जतन कर रहे हैं।
1: जिले में तेज लू और चिलचिलाती धूप के चलते जनजीवन प्रभावित हो रहा है। भीषण गर्मी के कारण दिन में बाजारों में लोगों की आवाजाही नहीं होने से चहल पहल कम हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय सरहद पर मुस्तैद बीएसएफ के जवानों को प्रचंड गर्मी के कारण खासी परेशानी हो रही है। भीषण गर्मी के चलते वन्य जीव भी व्याकुल दिखाई दे रहे हैं। गर्मी से बचाव के लिए लोग ठंडे पेय पदार्थों का सेवन करने समेत कई जतन कर रहे हैं। इस बीच विभिन्न सामाजिक संगठनों की ओर से पक्षियों के लिए परिंडे लगाए जा रहे हैं। प्रचंड गर्मी के मद्देनजर चिकित्सा विभाग की ओर से आमजन को एहतियात बरतने की सलाह दी गई है। जसवंत सिंह डूडी, आकाशवाणी समाचार, बाड़मेर।
0: मौसम विभाग ने अगले 3-4 दिन राज्य के अधिकांश भागों में मौसम शुष्क रहने, धूल भरी हवाएं चलने और तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। 26 और 27 मई को पश्चिमी राजस्थान के कुछ भागों में अधिकतम तापमान 46 से 47 डिग्री सेल्सियस दर्ज होने और कहीं कहीं लू चलने की संभावना है। वहीं 28 से एक नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से कुछ क्षेत्रों में आंधी और कहीं कहीं बारिश होने के आसार हैं। राजसमंद जिले के आमेट में आज एक सड़क दुर्घटना में 2 बच्चों सहित 3 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 2 अन्य लोग घायल हो गए। जानकारी के अनुसार आमेट देवगढ़ स्टेट हाईवे पर मोटरसाइकिल को सामने से आ रहे ट्रेलर ने टक्कर मार दी, जिससे मोटरसाइकिल पर सवार 3 लोगों की मृत्यु हो गई। हादसे में घायल 2 लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद उदयपुर रेफर किया गया है। पुलिस ने ट्रेलर को जब्त कर जाँच शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले रविवार को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। इसके लिए श्रोता अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 पर भेज सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में कल से वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की शुरुआत होगी। जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने की दिशा में कई कार्यक्रम होंगे। राज्य सरकार ने राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति 2024 में अहम बदलाव किए। तकनीकी अपग्रेडेशन के लिए दिए जाने वाले अनुदान को बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए किया। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा, नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। और प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में तेज गर्मी और लू का असर जारी, अगले कुछ दिन राहत के आसार नहीं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से डूंगरपुर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख चिंतन जोशी ने तैयार किया है। गंगा दशमी के अवसर पर शुरू हो रहे वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत डूंगरपुर जिले में कई गतिविधियां होंगी। ये अभियान 5 जून तक चलेगा। इसके तहत जल स्रोतों की सफाई, पौधरोपण, श्रमदान और जल संरक्षण प्रदर्शनियां सहित अन्य आयोजन होंगे। शहरों से लेकर गांवों ढाणियों तक जन भागीदारी से कई कार्यक्रम रखे जाएंगे।
2: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हाल ही में डूंगरपुर के दो दिन के दौरे पर रहे। उन्होंने जिला कलेक्ट्रेट परिसर में अधिकारियों के साथ बैठक की। श्री शर्मा स्वच्छता

सम्मान समारोह में भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने साफ सफाई के डूंगरपुर मॉडल की सराहना करते हुए कहा कि यहां लोगों ने स्वच्छता को जन उत्सव बनाया है। पूरे देश और प्रदेश में डूंगरपुर की स्वच्छता मुहिम की चर्चा है। रात्रि चौपाल के तहत मुख्यमंत्री जिले के 84 क्षेत्र की धम्बोला ग्राम पंचायत पहुंचे। उन्होंने महिलाओं, किसानों और युवाओं की समस्या

0: साथ ही गांव में तालाब संरक्षण के लिए 50 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा की। जिले में जनजातीय गरिमा उत्सव के तहत जन भागीदारी अभियान सबसे दूर सबसे पहले की शुरुआत की गई। जिला कलेक्टर देशल दान की अगुवाई में इसका शुभारंभ हुआ। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने आदि सेवा केंद्रों के जरिए ज्यादा से ज्यादा पात्र लोगों को अभियान से जोड़ने की बात कही। टीएडी उपायुक्त सत्यप्रकाश कसवा ने बताया कि इस अभियान में जिले के 638 गांवों में संतृप्ति शिविर लगाए जाएंगे। वहीं आदि कर्मयोगी वॉलंटियर्स की मदद से जनजातीय क्षेत्रों में 17 विभागों से जुड़ी सेवाएं पहुंचाई जाएंगी। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की ओर से जिले में खाद्य सामग्री से जुड़े दुकानदारों से साफ सफाई रखने और मिलावटी सामान नहीं बेचने की अपील की जा रही है। सीएमएचओ डॉक्टर अलंकार गुप्ता ने बताया कि जिले में शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान चलाया जा रहा है। इसमें दुकानदारों को शुद्ध और साफ सुथरी खाद्य सामग्री रखने और बेचने के लिए पाबंद किया गया है। अभियान के तहत विभिन्न खाने पीने की चीजों के नमूने इकट्ठे कर जांच के लिए भेजे जा रहे हैं। जिले में पिछले दिनों ग्राम विकास रथों की रौनक देखी गई। केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी भीलुड़ा गांव में आयोजित ग्राम विकास रथ कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने लोगों से सरकारी योजनाओं का फायदा उठाने की अपील की। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े भी पिछले दिनों डूंगरपुर प्रवास पर रहे। राज्यपाल ने कौशल विकास और महिला सशक्तिकरण समारोह में शिरकत की। कार्यक्रम में राज्यपाल ने वीरांगना कालीबाई की शहादत को याद किया। उन्होंने विद्यार्थियों से कभी भी परीक्षा में नकल नहीं करने का आह्वान किया। जिले में पिछले दिनों कॉफी विद कलेक्टर संवाद कार्यक्रम हुआ। इसमें जिला कलेक्टर ने प्रतिभावान छात्राओं को सम्मानित किया। कार्यक्रम में छात्राओं से संवाद करते हुए जिला कलेक्टर ने उन्हें करियर मार्गदर्शन भी दिया। उन्होंने छात्राओं को अपडेट रहने और डिजिटल तकनीक सीखने के लिए प्रेरित किया। मेरा युवा भारत कार्यक्रम में पिछले दिनों डूंगरपुर में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया। इस दौरान कई प्रतियोगिताएं हुई। जिला युवा अधिकारी शुभम पूर्बिया ने बताया कि समापन समारोह में विभिन्न प्रतियोगिताओं की विजेताओं को सम्मानित भी किया गया। जिले में पिछले दिनों मंगल कलश यात्रा की धूम रही। गांवों और शहरों में निकली इन यात्राओं में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई। साथ ही उपखंड मुख्यालयों पर शिवालयों में विशेष कार्यक्रम रखे गए। ये मौका था सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का। गुजरात के सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में देवस्थान विभाग और जिला प्रशासन की ओर से ये पर्व मनाया गया। इसमें शिवालयों में अभिषेक और विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान हुए। जिला स्तरीय स्वाभिमान पर्व कारोली गांव के भुवनेश्वर महादेव मंदिर में हुआ। जिले में जनगणना 2027 के तहत इन दिनों मकान सूचीकरण और आवास गणना का काम किया जा रहा है। इसके लिए प्रगणक घर घर जाकर सूचनाएं इकट्ठा कर रहे हैं। 1 मई से शुरू हुई जनगणना प्रक्रिया के तहत शुरुआती 15 दिनों में लोगों को स्वगणना का विकल्प दिया गया। इस अवधि में इच्छुक नागरिकों ने खुद ही अपने परिवार और मकान से जुड़ा ब्यौरा ऑनलाइन दर्ज किया। इसके साथ ही डूंगरपुर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर पेश से सिंझा बगतरा प्रादेशिक समाचार। पहले खास समाचार। प्रदेश में कालेओं वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान शुरुआत वेला। जल संरक्षण ने जन आंदोलन बनावन सारू वेला कई कार्यक्रम। राज्य सरकार राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति 2024 में खास बदलाव करया। तकनीकी अपग्रेडेशन सारू दी आजावन वाली सब्सिडी ने 1 करोड़ रुपया करया। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कयो, नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू करनो सरकार री ठावी प्राथमिकता। और प्रदेश रा घणकरा हल्का माय करड़ी गर्मी और लू रो असर बण्योड़ो है। आप तक कुछ दिन राहत रा आसार ने। समाचार रे साथ है मैं शंभु सिंह। अरब समाचार विगतवार। प्रदेश में कालेओं जल संरक्षण ने जन आंदोलन बनावन कानी महत्व मान्या जा रिया। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान री शुरुआत वेला। गंगा दशमियों सरोवेरियो ओ अभियान 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस ताई चालेला। और ब्यूरो साथे समाचार कक्षों मारा सहयोगी।

0: नितेंद्र प्रधान।
1: जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में कल से शुरू हो रहे वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत राज्य भर में आम जन को इस अभियान से जोड़ा जाएगा। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने पंचायतों, स्वयंसेवी संस्थाओं, धार्मिक संगठनों, उद्योगपतियों, युवाओं और आम जन की भागीदारी सुनिश्चित करने की पहल की है। अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा टोंक जिले के बीसलपुर बांध से जल पूजन और शिव अभिषेक से करेंगे। इसी दिन मुख्यमंत्री भरतपुर के श्री गंगा माता मंदिर में आरती और सुजान गंगा नहर में दीपदान भी करेंगे। इसी तरह राज्य के विभिन्न जिलों में कुओं, बावड़ियों, तालाबों, नहरों और अन्य जल स्रोतों के पूजन के साथ जिला स्तरीय अभियान की शुरुआत होगी। जागरूकता को लेकर वंदे गंगा, प्रभात फेरियां, लेखन प्रतियोगिताएं, पीपल पूजन, पौधारोपण सहित कई गतिविधियां आयोजित की जाएंगी।
0: राज्य सरकार राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति 2024 में खास बदलाव करया है। ये नीति रे तहत तकनीकी अपग्रेडेशन सारू दिया जाण वाली बत्तियों बत्ती सब्सिडी ने 50 लाख रुपयों बधार 1 करोड़ रुपया कर दी जा है। मुख्यमंत्री राज्य बजट 2026-27 रे तहत रोकड़ और विनियोग विधेयक माथे चर्चा रे दौरान ई बारे में ऐलान करियो हो। उद्योग और वाणिज्य आयुक्त श्री नीलाभ सक्सेना बतायो के तकनीकी अपग्रेडेशन माथे दिया जाण वाली सब्सिडी बधावणो प्रदेश रा उद्योग वैश्विक दौड़ मुजब आधुनिक तकनीक ने अपना सकेला, इनु उत्पादन बूतो बधण रे साथे साथे गुणवत्ता में सुधार वेला। इन रे साथे स्थानीय उत्पादन ने बधावो देवण सारू एक जिला एक उत्पाद ODOP 2024 में दो महत्वपूर्ण बदलाव करी जा है। इन रे तहत रत्नाभूषण उत्पादों जुड़िया कारोबारा रा फैलाव माथे मार्जिन मनी सब्सिडी दी जायला, साथ ही निजू संस्थानारी मार्फत तकनीकी अपग्रेडेशन वह सकेला। उद्योग महकमा कानियों काडीजी अधिसूचना मुजब सूक्ष्म इकाइया ने 20 लाख रुपया और लघु श्रेणी री इकाइया ने 15 लाख रुपया तारी मार्जिन सब्सिडी मिल सकेला। वठे निजू संस्थानारी मार्फत तकनीकी अपग्रेडेशन सारू 5 लाख रुपया री सब्सिडी दी जायला। अमेरिका रा विदेश मंत्री मार्को रूबियो रे काले जयपुर आवण रो कार्यक्रम है। वे आमेर मेल देखेला। श्री रूबियो रा दौरा ने लेर जिला प्रशासन और पुलिस कानियों तगड़ी तैयारियां करी जावे। अमेरिकी विदेश मंत्री री ई यात्रा ने भारत और अमेरिका रे बीच सांस्कृतिक कूटनीति और रणनीतिक संबंधों जोड़ने देखियो जावे। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो 4 दिन रा भारत प्रवास माथे है। वे आज नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर मिलिया। हैदराबाद हाउस में वी बतल में आथुनी एशिया संकट पैदा मौजूदा हालात और हिफाजती मदद माथे बतल करी जी। इन रे पछे डॉक्टर जयशंकर कहो के भारत और अमेरिका रे बीच गहरा वैश्विक सामरिक भागीदारी है। दोनों देशों रा संबंधों पूरी दुनिया माथे असर पड़ियो है। वणा कहो के बतल रो सिलसिलो चालतो रहेला और इन राचो खा नतीजा मिलन री आस है। बालोतरा जिलारी रिफाइनरी जैसी महत्व परियोजनाओं देश री ऊर्जा हिफाजत रे साथे सामरिक और माली हिफाजत माई महत्व भूमिका निभा रियो है। अठे सिवाना रिंग कॉम्प्लेक्स माई दुर्लभ खनिजारो भंडार मिलियो है जो देश ने रॉकेटों लेर न्यूक्लियर प्लांट्स रा कच्चा माल उपलब्ध करावण और साफ ऊर्जा रा हल्का माय अगाड़ी बनावण माय मदद करेला। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कहो के सिवाना रिंग कॉम्प्लेक्स और सिवाना ग्रेनाइट माय रियर अर्थ एलिमेंट और हेवी रियर अर्थ एलिमेंट मिलिया है। वणा एहलकारा ने निर्देश दिया के सिवाना रिंग कॉम्प्लेक्स रा असरदार क्रियान्वयन सारू प्रदेश माय नोडल एहलकार नियुक्त करया जावे जिनो काम माय तेजी आ सके। समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रिया हो। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल आज भीलवाड़ा रा दौरा माथे रिया जठे वणा हमीरगढ़ हवाई पट्टी रो जायजो लियो। इन रे पछे श्री मेघवाल हमीरगढ़ रिको हल्का माय भीलवाड़ा टेक्सटाइल ट्रेड फेडरेशन रा दफ्तर माय कारोबारियों बतल करी। श्री मेघवाल खबर नविसा ने बतल माय भीलवाड़ा माय कारोबारी उड़ान शुरू करने रा प्रस्ताव ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री सामे राखण रो भरोसो दियो। नारी शक्ति वंदन अधिनियम रो जिक्रो करता वणा कहो के इन ने लागू करनो केंद्र सरकार री ठावी प्राथमिकता है।
2: नारी शक्ति वंदन अधिनियम इसमें महिलाओं को लोकसभा में और राज्य विधानसभा में 33% रिजर्वेशन देने के लिए जो बिल था पास किया हुआ उसको

0: लागू करने का ही अवसर था, क्योंकि हमें सेंसस हमारी शुरू हुई है तो सेंसस के डेटा आने में समय लग रहा था, तो डिलिमिटेशन और सेंसस में संशोधन हम चाह रहे थे। हम सहमति बनाने में लगे हुए हैं, सहमति बनेगी तो प्रयास करेंगे निश्चित रूप से। इसमें क्या है, सरकार की तो पहली प्राथमिकता है।
1: केंद्र सरकार वजन और मापरी जांच प्रणाली ने मजबूत करण सारू जांच केंद्र जीए टीसी री भूमिका रो पसारो करेला। ये सारू साल 2013 रा कायदा माए बदलाव करी जो है। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय आ जानकारी देवता बतायो के नुआ कानूना माए जीए टीसी वजन और मापरी 23 श्रेणिया रो सत्यापन कर सकेला। इन माए पेट्रोल डीजल सीएनजी एलपीजी एलएनजी और हाइड्रोजन डिस्पेंसर जांच ही भेली है। ई पहल रो मकसद कारोबार ने साफ गोई बनावणो और तकनीक ने बढ़ावो देवणो है। बांसवाड़ा गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अध्ययन पीठ री शुरुआत करी जी है। राणा पुंजा सभागार में आज भी एक कार्यक्रम में राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष प्रोफेसर वासुदेव देवनानी पीठ री विधि पूर्ण शुरुआत करी। श्री देवनानी कहो कि विश्वविद्यालय कान्यू स्थापित आ अध्ययन पीठ भारतीय ज्ञान परंपरा एकात्म मानववाद अंत्योदय ग्राम विकास सामाजिक समरसता और सामाजिक जीवन मूल्य माथे आधारित राष्ट्र निर्माण जैसा मुद्दा माथे आला दर्जा रो शोध और अकादमिक गतिविधियां रो खास केंद्र बनेला। फिट इंडिया मोमेंट रे तहत संडे ऑन साइकिल रे तहत प्रदेश रा न्यारा न्यारा ठोड़ा साइकिल रैली योग अभ्यास समेत न्यारा न्यारा फिटनेस गतिविधियां भी। न्यारी न्यारी ठोड़ा अहलकारा खिलाड़ियां नौजवाना और फिटनेस प्रेमिया उमावरे साथ ये मुहिम माए हिस्सो लियो। ई मौके जयपुर रा एसएमएस स्टेडियम रा चारों मेर साइकिल रैली भी। लोगों ने स्वस्थ जीवन शैली रे प्रति जाग जगावन सारू ओ आयोजन भी हो। हनुमानगढ़ जैसलमेर राजसमंद कोटपुतली बहरोड सलूम्बर बालोतरा झुंझुनू और पाली माई साइकिल रैली री मार्फत लोगों ने स्वास्थ्य रे प्रति जागरूक रहन रो संदेश दिरिजियो। कई ठोड़ा योग दिवस काउंट डाउन कार्यक्रम ने इनो जोड़ ने योगा अभ्यास जुम्बा रोप स्किपिंग समेत दूजी गतिविधियां भी। और अबे मौसम प्रदेश रा घनकरा हल्का माए करड़ी गर्मी और लू रो असर बनी उड़ो है। मौसम केंद्र जयपुर आज 18 जिला माए हीट वेव रो ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी करियो है। राजधानी जयपुर माए आज दिन माए तेज तावड़ा माए आम जिंदगी माथे असर पड़ियो। जैसलमेर माए आंधी चालणो लोगों ने गर्मियों थोड़ो आराम मिलियो। चूरू माए आखे दिन लू चालती रहवणो लोगों रा काम काज माथे असर पड़ियो। बाड़मेरू हमारा खबर नवीस बतायो कि वठे लोग करड़ी गर्मियों बचन सारू कई जतन कर रिया है।
2: जिले में तेज लू और चिलचिलाती धूप के चलते जनजीवन प्रभावित हो रहा है। भीषण गर्मी के कारण दिन में बाजारों में लोगों की आवाजाही नहीं होने से चहल पहल कम हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय सरहद पर मुस्तैद बीएसएफ के जवानों को प्रचंड गर्मी के कारण खासी परेशानी हो रही है। भीषण गर्मी के चलते वन्य जीव भी व्याकुल दिखाई दे रहे हैं। गर्मी से बचाव के लिए लोग ठंडे पेय पदार्थों का सेवन करने समेत कई जतन कर रहे हैं। इस बीच विभिन्न सामाजिक संगठनों की ओर से पक्षियों के लिए परिंडे लगाए जा रहे हैं। प्रचंड गर्मी के मद्देनजर चिकित्सा विभाग की ओर से आमजन को एहतियात बरतने की सलाह दी गई है। जसवंत सिंह डूडी आकाशवाणी समाचार बाड़मेर।
1: मौसम महकमो आवता 3-4 दिन राज्य रा घनकरा हल्का माए मौसम साफ रेवण एर धूल भरी हवा चालन तापमान माए 2-3 डिग्री सेल्सियस री बढ़वार री आस जताई है। 26-27 महीने आथुणी राजस्थान रा कुछ हल्का माए 32 रो तापमान 46-47 डिग्री सेल्सियस दर्ज होवण और कठे कठे लू चालन री आस जताई है। वठे 28-29 मई एक नुआ पश्चिमी विक्षोभ रा असर प्रदेश रा कुछ हल्का माए आंधी और कठे कठे बिरखा होण री आस जताई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणियों हर महीना प्रसारित किया जाने वाला खास कार्यक्रम मन की बात में 31 मई ने आप रा विचार बतावेला। आ ई कार्यक्रम री 134वीं कड़ी वेला। ई सारू आप ही मुफ्त नंबर 1800-117800 माथे 29 मई तई आप रा राय दे सको हो। नरेंद्र मोदी ऐप और माई जीओवी ओपन फोरम री मार्फत ही आप विचार भेज सको हो। ने अबे आखिर में खास समाचार आप एक कर फिर सुन ले रहो। प्रदेश माए कालेओं वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान शुरू वेला। जल संरक्षण ने जन आंदोलन बनावन सारू वेला कई कार्यक्रम। राज्य सरकार राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति 2024 में खास बदलाव करया। तकनीकी अपग्रेडेशन सारू दिया जाने वाली सब्सिडी ने 1 करोड़ रुपया करया। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कहो नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू करनो सरकारी ठावी प्राथमिकता। अर प्रदेश रा घनकरा हल्का माए करडी गर्मी अर लू रो असर बण्योड़ो है। आप तक कुछ दिन राहत रा आसार नी। नेंडर साथे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो व्यो। मारो आगलो समाचार बुलेटिन काले सवारा 9 बजे हिंदी में प्रसारित करियो जायला। नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी का चूरू केंद्र है, FM 100.7 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, इस समय शाम के ठीक 7 बज चुके हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम खेती और

0: के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के साथ। आकाशवाणी चूरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चूरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चूरू, आपकी पहचान, हमारी आवाज।
2: कार्यक्रम खेती और गृहस्थी सुनना रहे सगड़ा किसान भाया ने गोपाल भाई कानी से हूं
3: और भाई अरविंद कानी हूं। मोकला मोकला
2: राम राम। तो अरविंद भाई, काल नौ तपो चालू है। काल तारीख होगी 25 मई, तो 25 मई लेकर 2 जून तक के ओ 9 दिन को जो टेम है, एक माह तावड़ो जो है वो खींच के पड़े
3: भाई। अबार को जो वक्त है वो देखो तावड़े को ये और सागेड़ो जीते नहीं तपगो बीते। देखो के आपा आने वाले टाइम के महीने आपने खेतां के महीने की लेना
2: ठीक बात
3: भाई। चौकी जमीन तपेगी जदीबा उपजेगी तो वक्त सारू सारी चीज इंज की ओडी चौकियों में।
2: हाँ हाँ।
3: लेकिन आपा ठहरे आप भाग दौड़े का काम आला।
2: हाँ हाँ।
3: और आपने सगे सगे देखो आजकल चाहे कोई हुए नौकरी पैसा लो हुए चाहे छोटो टाबर हुए चाहे और हुए।
2: हाँ हाँ।
3: सगलांगी जिंदगी में देखा तो दिन क्यों ले की आथरंगे तानी भागदौड़ लगी रहे
2: भाई, रेल बन रहे हैं।
3: और भी भागदौड़ वाली जिंदगी के महीने ने देखो के 9 दिन आत को नहीं के घर ऐसी चला गई बैठ जाओ और बारह निकला ही नहीं।
2: ठीक बात।
3: जब तो सरे को नहीं।
2: हाँ।
3: काम दाम तो करना पड़े,
2: करना पड़े सी।
3: और बे काम दाम करना पड़े तो बांगे महीने देखो के आपा सवा चेती रखा भाई। ने तो आपा तावड़े ने लो मार की कैस कहा के भाई एक बार है मारे जरूरी काम है जो तू थोड़ो
2: हाँ पेस है जो घुमा
3: घुमा क्यों ठंडी हवा चला दे
2: मैं
3: वो तो है को नहीं। और काम दाम भी करना पड़े
2: ठीक बात।
3: तो तावड़ो तावड़े की जगह है लेकिन आपा अपना काम दाम करा भी टेम ध्यान रखा के खेती बाड़ी को जो काम करा जो तो दिन ज्ञातन के करा।
2: सही बात।
3: और दोपहर की लाइज की होवे ने बी कमाइन झटता नहीं होवे बट

0: तो किएगा अपने शरीर में पानी की कमी को नहीं हुए और दूसरी पानी की पर्याप्त मात्रा जब अपने शरीर में होगी तो अपन तावड़ो लू लागण को डर है जो को नहीं रहे है। सुतु गावा पैरो ढीला डाला गावा पैरो सिर है जो ढक्के रखो पगा को भी जाप तो रखो दिन कमा 10 बजे चार बजे तक होश के झटक तावड़ियों बचो है। भाई ये सीधा साधा उपाय है ए आप ध्यान में रखांगा तो देखो कह तावड़ियों पड़ेगो जो पड़े ही गो भाई साली पड़े तो आप तावड़ियों बचा रह सकांगा। और काम दाम जगह जरूरी में दिन की आतन का करो चाहे वह खेती बाड़ी का काम हो चाहे घर गृहस्थी का हो चाहे इन्हें बिना खड़े जाने को काम है तो अपनी गाडुली जगी चाल वो करेगी।
1: और बिका सक सके खाने को भी एक विशेष ध्यान आप रखा।
0: हाँ
1: जी हाँ थे चर्चा करी के पे पदार्थ आंगी भाई राबड़ी है दही है छा है पुदीनो है नींबू पानी है बिल को पानी है आके अलावा भी जकी चीज की तासीर ठंडी हो बने बा चीज अगर जे आपा आपने खाने के मैं दिन के अथन के काम में लिया
0: ठीक बात है
1: तो देखो काल जगह मैं ठंड सी रहे
0: जिसोरो है
1: और चोखो जिसोरो और चोखी नींद आवे और नहीं देखो के अगर जे आपा कोई गर्म तासीर की चीज खा लिया ने
0: हाँ
1: तो ऊपर तो उकले ही उकले
0: हाँ।
1: माइन है जो को जी में चुंटा चांटी लगी रहे
0: सही बात
1: तो आपने चटपटी की चीज या
0: तलेड़ी
1: की चीज ने
0: हाँ।
1: अबार को जो को वक्त है ने
0: इन बचनो इन
1: वक्त के मायने बचनो है नहीं आपा कद भी गर्मी की चपेट में आसका
0: ठीक बात है।
1: और आपने खुद के सके सके देखो के आपने आसे पासे का जगह मुख प्राणी ने चाहे वह गर्मो में चाहे खेत में
0: ठीक बात है
1: बंग के लिए ठंडो पानी बंग चुगे के लिए कोई दाना
0: ठीक बात
1: बंग की व्यवस्था है जो की आप करा
0: भाई वो भी आपनो कर्तव्य है
1: जब दिन के 9 बजे
0: हाँ हाँ
1: लेकी 4 बजे तनी भयंकर जो तावड़ो पड़े
0: सही बात
1: और आपा खुद बारे को निकल सका भी टेम बे जका मूक प्राणी जका तीस मरता बे खट जा भाई
0: लो
1: मार दी
0: सही बात है
1: बे कोई आतो आत को नहीं के पड़ोसी ने कह दी के लिया भाई बर्फ आड़ो ठंडो पानी लिया तो बंक को कठिन कठे आपा नहीं ध्यान रखनो पड़ सी
0: ठीक बात है।
1: खेत की जकी जाडी म्याली बंक महीने है जो आपा पानी छोड़ दिया
0: सही बात है
1: या कुंड का आसे पासे या जको दरखत ज्यादा जाडू है
0: हाँ गहरो है
1: बी के नीचे है जको आपा पानी की व्यवस्था है जको
0: करनी चाहिए
1: बांके लिए जरूर करा और बी के सके सके आपना जगह घरेलू पशु ही ने
0: हाँ
1: बांको भी आपा ने इन गर्मी के महीने विशेष ख्यात रखनो पड़ेगो के भाई दिन के महीने सगे तावड़ो और सगे बे जिद लू चले ने
0: हाँ
1: भी टेम में बने ठंडी जगह आवादार जगह
0: सही बात और
1: आवादार के सगे सगे वो भी ख्यात रखा के लू है जो की सीधी नहीं लगे तो बारे नहीं बना बारे अगर जो कोई जानती और कोई दरखत के नीचे बनागा तो बन लू लगेगी सीधी
0: सही बात
1: बने इसी जगह बना के लू सीधी नहीं लगे बाकी बागी जिकी बांधने की जिकी जगह है ना
0: हाँ हाँ
1: बा आवादार होनी चाहिए
0: हाँ
1: और भी के सग सग है भाई हरियो चारो जगह किसान मैन बयांग उपलब्ध है वे तो अबार के टाइम के मैंने के आपके जगह पशुआ ने उसके भी तो हरियो चारो दी
0: ठीक बात है।
1: और जगह किसान मैन बयां के हरियो चारो नहीं है वे देखो हरे चारे के रूप के मैंने लूंग है बुरला की देश के
0: ठीक बात
1: ठंडी तासीर की जिकी चीज ही जिकी ज्यादा ज्यादा आपा अपने पशुधन ने दिया ताकि बांके भी आ गर्मी है जिकी नहीं सेदे
0: भाई पशुआन भी गर्मी न सेदे आपन भी न सेदे छोटा छोटा टबरी ही बाकी भी ख्यात रखनी पड़सी खेती बाड़ी का जगह काम है वह भी करना पड़सी बार जगी टेम है वा देखो खेता में पाड़ कराना की मजा है एकदम ऐसे पेड़ पौधा लगाऊंगा तो बांक लीजिए खड्डा खोदने की एक निश्चित दूरी में जगी तय करके जो काम है वो भी अपन करना है क्योंकि अब चारों में देखो के अनाज है या सब्जी को उत्पादन है, फलों को उत्पादन है।

0: तो बाम किया जनो जनो कह लागो कि भाई देसी चीज जे कठे मिल जा तो बीरो पाड़ो ने, क्योंकि आजकल चार मेरे अनाज को उत्पादन बढ़ाने के लिए की है कि रसायन जगह वहां को इस्तेमाल ज्यादा करे लगा, तो रसायन का इस्तेमाल से पर्यावरण को दूषित हो गयो, खेत की माटी जी कमजोर होगी, नाच दान वह भी जहर की मात्रा आने से और बाद देखो वो जहर अपने पेट तक पुग रहा है, तो आदमी हम क्या बड़ा बड़ा रोग हो गया, आदमी है जो शरीर कमजोर हो गयो, तो यूं बचा किया, तो बचने के लिए देखो देसी जी खाद है, कंपोस्ट खाद या वर्मी कंपोस्ट खाद है या हरी खाद है, वे ज्यादा से ज्यादा देखो अपन खेती बाड़ी में इस्तेमाल करनी चाहिए, ताकि अपने अनाज को जो उत्पादन हुआ सब्जी को उत्पादन हुआ वो शुद्ध हो, पौष्टिक हो, गुणकारी हो, आपा भी खावा, आपनो परिवार खावे, और आपने देश का जितना ही मान से बन जद शुद्ध चीज खाने वास्ते मिलेगी तो वह भी देखो के निरोगा रहेगा।
1: और देखो के बतलावन तो आपा खूब सारी और भी कर सिया, लेकिन अबार आपा आपने किसान बहन भाइयों ने सुनावा एक स्थल रिकॉर्डिंग है।
0: हाँ,
1: और भी स्थल रिकॉर्डिंग को जो विषय है गहरी जुताई विषय पर गांगू के किसान है सौरभ नेहरा से बिरबल की बातचीत, तो सुनो सा आ एक स्थल रिकॉर्डिंग।
2: कार्यक्रम सुनना सगला किसान भाई बहन ने भाई बिरबल कनी सू मोकला मोकला राम राम। किसान भाई बहनों आकाशवाणी की जिकी अपनी टीम है बा आज पहुंची है गांव घंगू के मायने, और घंगू गांव का जका किसान बहन भाई बहू अपा मिल्या और बैठे गांव में अपा ने एक शिक्षित युवा किसान सौरभ नेहरा मिल्या, तो बहू अपा खेती बाड़ी के विषय के मायने बतलावन करिए, और भी बतलावन में आज आपनो मुख्य बात आई रहसी के भाई जिकी गर्मी की जिकी पहाड़ है भी का के फायदा हुए बा पहाड़ अपन ने क्यों करनी चाहिए ई बाबत बहु आपा जानकारी लेसा। तो राम राम सा।
3: राम राम।
2: खेती बाड़ी को काम दाम करो।
3: हाँ जी।
2: तो खेत कितो गए आपके?
3: 30 बीघा आपड़े पक्को।
2: अच्छा पक्को 30 बीघा खेत है, तो खेत आपको सिंचित है या असिंचित है?
3: सिंचित है।
2: अच्छा सिंचित खेती आप करो, तो कितने टाइम हो कर रहे हो सिंचित?
3: आपा काफी टाइम हो कर रहे हैं, कई साल 1993-98 जकम, अब बीच में थोड़ा सो गैप हो बाकी कंटिन्यू है लगातार।
2: अच्छा तो इस बार आप सिंचित खेती करी?
3: करी।
2: तो सिंचित खेती में इस बार के बोए आप?
3: सरसों और गेहूं।
2: अच्छा बढ़िया रही फसल?
3: हाँ बढ़िया रही।
2: अच्छा अच्छा तो भाई बार उन वाले को टाइम चल रहे है, तो खेती बाड़ी में और तो कोई काम दाम है कोनी बार की है के जी मान लो आप बात नहीं कर सके भाई जकी गहरी जुताई हुए जकी पहाड़ हुए बा अपना जगह किसान बहन भाई बांके लिए के हित में रहे और भी का के फायदा हो भी पर अपनी बात रहसी, तो आज की गहरी जुताई या पहाड़ है आ हुए के है?
3: गहरी जुताई है पहाड़ है आपा जी की ट्रैक्टर है ना अपने एमबी प्लाव हो गए जगह हम डिस प्लाव हो गए तो प्लाव बोला।
2: हाँ हाँ।
3: वो है व्यू आपा जमीन में 9-12 इंच तक गहराई तक कराने बाग गहरी जुताई मावा आपने।
2: अच्छा अच्छा मतलब भाई 9-12 तक कर
3: लिया गहराई में जानो चाहिए,
2: गहराई में जानो चाहिए ताकि मिट्टी है वा पलट जा,
3: पलट जा। हाँ।
2: बिल्कुल बिल्कुल। तो आज की गहरी जुताई अपनी पहाड़ है आ अपन करनी कद चाहिए?
3: अपन गहरी जुताई अपन अप्रैल और मई के महीने में करनी चाहिए जब आपने टेम्परेचर हुआ है 40-45 डिग्री टेम्परेचर अभी टेम करनी चाहिए, और दूसरी चीज अपनी मिट्टी एकदम गिल्ली न हुआ है।
2: अच्छा,
3: और बहुत ज्यादा सख्त भी नहीं हुआ है, मतलब बीच की सी मिट्टी हुआ है अपनी खुली हुआ है थोड़ी सुखेड़ी हुआ है भी टेम करनी चाहिए।
2: अच्छा अच्छा भी टेम अपन करनी चाहिए। तो भाई आपने जिकी आ पहाड़ है गहरी जुताई है आ करना हूँ आपने खेत में के फायदो हुए?
3: यूं आपने कई फायदा ही जहाँ मैन तो जहाँ ये हुए कीट हुए लार्वा हुए लट हुए या पा गहरी जुताई करा से मिट्टी पलटे मिट्टी पलटे मिट्टी के सागे ऊपर आवे।
2: अच्छा अच्छा।
3: तो जो अपना मित्र पक्षी हुए बयान जुगली या भी दोपहर में धूप मिले जब यूं भी नष्ट हो जाए। दूसरो आपने कई खरपतवार नासी है।
2: हाँ।
3: खरपत जगह दूब घास होया मोथा घास होया आग का बीज हुए वे बहुत जिद्दी हुए
2: बिल्कुल,
3: जो गहरी जुताई करेगा तो या तो वे बहुत ज्यादा गहराई में चला जाएगा या ऊपर आ जाएगा तब भी वे धूप नष्ट हो जाएगा।
2: अच्छा।
3: तो भी के बहुत कम हो जाएगा अगले साल एकदम खत्म तो नहीं लेकिन कम होता जा
2: कम हो
3: गहरी जुताई और यूं तीसरो फायदा है वर्षा की वर्षा जल लेने बीज धारण क्षमता बढ़ जा क्यों गहरी जुताई करेगा मिट्टी गहराई तक जागी गहराई तक जागी जब जमीन ने लेयर ने तोड़ेगी गहरी जुताई तो वर्षा होगी जब अपने पानी के अवशोषण की क्षमता बढ़ जाएगी जमीन की
2: बिल्कुल
3: और बीऊ की

0: गहरी जुताई हूँ, फिर हवा को आगमन भी बढ़िया होगा।
1: अच्छा
0: बी में और बी को फायदो अपन अगली फसल में लगो, हवा को आगमन बढ़िया होगा तो अगली फसल जो भी आप बाओगा बी की जड़ होगी फसल की बात बहुत गहराई तक जाएंगे।
1: अच्छा
0: और जब आप गहरी जुताई करा मिट्टी पलट जा ऊपर ली निचली तो आपने जो सूक्ष्म जीव हो जैविक पदार्थ हो पर भी आपने मिट्टी में चारों तरफ हो जा, मतलब एक समान हो जाए।
1: भाई कहने को मतलब वो है कि आपनी जमीन है वह उपजाऊ हो जाए, जमीन में उपजाऊपन बढ़ जाए। तो थारू आ जानना चाहूंगा कि भाई आपने जहां पहाड़ है आ सुबह के टेम करनी चाहिए या शाम को टेम करनी चाहिए?
0: वो तो थे बढ़िया क्वेश्चन करे, अपन पहाड़ करनी चाहिए सुबह के टाइम ही।
1: अच्छा अच्छा,
0: यूं यो फायदा होगा आप सुबह के टाइम पहाड़ कर सियाने जब कीट हो लार्वा लट ये जो भी हैं वे ऊपर आसी तो अपना आपने जो पक्षी हैं जब सुबह सुबह ही चहल पहल हो
1: बिल्कुल
0: तो वे बांध चुग ले सी। इन्हीं आप अगर आप शाम को कर सिया, शाम को सिया रात ने ठंड रहसी, ठंड नए पक्षियों को आगमन हो सी तो ये जो कीट हो लार्वा ये वापस सामने जमीन में चला जा सी।
1: बिल्कुल,
0: जो फायदो आप सुबह कर सिया वो मिल सी अपन, वो अपन शाम के टाइम करना कौन मिले।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही शानदार बात है बताइए। तो जो की पहाड़ है अपनी आज की गहरी जुताई है आ आपने हर साल करनी चाहिए या बीच में कोई एक दो साल को गैप भी लगाना चाहिए?
0: और जो आप बारानी फसल कराए या वर्षाली बीम तो आप 3 साल में एक बार कर सका।
1: अच्छा,
0: लेकिन 3 साल में अपन कर लेनी चाहिए, हर साल बीम जरूरत को नहीं।
1: अच्छा,
0: लेकिन आप सिंचित कृषि करा या गेहूँ सरसों ये बाव आप बीम की अपनो थोड़ा सा पानी को पीएच थोड़ा ज्यादा है।
1: अच्छा,
0: तो बीम मिट्टी ऊपर की लेयर बहुत ही कठोर होती जा रही है अपनी।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: तो बीम तो आपने हर साल रबी फसल का आपा कटाई बाद में मार्च अप्रैल में कटाई कर लिया, अभी बाद में आपने जब सही उपयुक्त टाइम आवाई को करने को तो आपन हर साल ही करनी चाहिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया बात है बा अपने आप पहाड़ के बारे के महीने अपने किसान बहन भाई ने बताई है। और चलता चलता थानू एक बात रही आएगा, आपनी जी की आप बतलावन है ना आ रेडियो के माध्यम अपना जगह किसान बहन भाई बे सुनने लाग रहे हैं तो अपना जगह इतुला किसान बहन भाई बने आप के संदेश देना चाहूंगा?
0: मैं यही कहना चाहूंगा कि अब मानसून आने वाला है तो या तो आप गहरी जुताई कर ली होगी, नहीं करी है भाई लोग कर लियो। और दूसरो जो आपने एक जमीन एकदम तैयार रखो ताकि आप जब भी मानसून बारिश हो तो आप फसल भी आप जान कर सका भी को।
1: बिल्कुल,
0: और एक और मैं बात करनी चाहूंगा कि जो आजकल को जो पर्यावरण चल रहे है पर्यावरण असंतुलन तो इम अपन अभी जो मानसून आया अभी में पौधारोपण अपन जितो सक्षम आज जितो आप कर सका आप सार संभाल कर सका अभी तो अपन पौधारोपण करना ही चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: और भी पौधारोपण के लिए अपन जो गड्ढा ही गहरा गड्ढा 1.5x2 का वह अपन अभी बना के छोड़ देना चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: बीम बारिश होगी तो बीम बारिश को पानी भी अवशोषण होगा तो बढ़िया वो आप पौधारोपण करेंगे तो भी के लिए बढ़िया रहो। दूसरो अब गर्मियों को टाइम चल रहे है तो जो पशु पक्षी हैं जीव हैं ये आगे लिए जितो उसके किसान बयान आगे लिए कोई पानी की व्यवस्था करनी चाहिए, कोई चारो कोई दाणो जो जरूर आपके स्तर पर जितो उसके पानी व्यवस्था करनी चाहिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल, देखो थे बहुत ही सांतरी सांतरी बात महाराज का किसान बहन भाई मैंने बताई और बहुत ही सांतरो संदेश दियो ई बाबत आपको मोकलो मोकलो धन्यवाद है। राम राम सा
0: राम राम सा।

0: इसको सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए, उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: हाँ तो किसान भैया, अंतराल के बाद मैं आपको एक बार फिर स्वागत करा। कार्यक्रम चल रहे अपनो खेती और गृहस्थी, और खेती और गृहस्थी के मां अब देखो के बतलावन आप खूब कर ले। स्थल रिगार्डिंग पर आधारित कार्यक्रम है जिसको भी किसान भाई सुना दियो। और अब देखो के अरविंद भाई एक लोक रचना जी के डगड़ा राम और साथियों की आवाज रमाई किसान भाई और सुना।

0: आज की 420 बीसी जी की बाजार के महीने किसान मार खाया करता
1: हाँ।
0: है जो छुटकारे के लिए अपनी सरकार है जो की एक शांतरी सी और योजना लेके आई राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना।
1: सही बात।
0: और देखो के ये योजना के मायने किसान बहन भाई इंज का आपके आसे पासे की
1: हाँ।
0: जितनी भी मंडी ने
1: हाँ।
0: बंको ऑनलाइन भाव देख की
1: ठीक बात है
0: और जठे ज्यादा मुनाफो बटे है जो आसा नहीं बेच सके
1: ठीक बात है
0: और तुरंत पीसा
1: हाँ खत्म आवे सीधा
0: खत्म
1: हो
0: कोई दिक्कत नहीं। तो एक तो के खुलो बाजार हो गयो आ कोनी के भाई किसान बहन भाई हिंज का चूरू का ही तो भाई चूरू की मंडी में बेचे
1: हाँ कोई जरूरी नहीं, नहीं।
0: अगर जे बाजार भाव तेज है तो आसे पासे की या दूर दराज की जिकी
1: मंडी
0: मंडी मांगे मैन भी किसान है जिको आपको ऊंची रेट के ऊपर है आपको जिको नाज है ने जिकन बेच सके। तो एक तो बाजार भाव जिको है ने वो निर्वाड़ो मिलने लगे
1: ठीक बात है
0: और बीके सगे सगे अपना जिका किसान बहन भाई जिका के सोखी तरिया आंकलन कर ली के भाई नाज अगर जी आप दूर लेगी जावा तो किरायो बड़ो की तो लगेगो
1: सही बात है
0: अठे बेचांगा तो आपन ए रेट मिलेगी और दूर ले जा रहा तो आपनो के बचत आवेगी
1: भाई जोड़ बाकी तो करनी पड़े
0: जकी जोड़ बाकी को जको गणित है ने
1: हां हां
0: वो किसान मैन भाई जका लगावे लगया
1: हां
0: और देखो के किसान भी जोड़ बाकी बाजार की जकी जोड़ बाकी नहीं लगातो ने भी मार खातो
1: सही बात
0: और वही आभार है जको अपना किसान मैन भाई जका जोड़ बाकी लगावे लगया
1: हां
0: तो देखो के पांच पीसा की नाज तो जो खेत में होना जीतो हो गयो
1: सही बात है
0: तो भी को बाजार भाव है ने वो ज्यादा ज्यादा है जो को किसान बहन भाई ले ला गया तो भी देखा के अपना जगह किसान बहन भाई जगह की जेब के मैंने पांच पीसा की है जिकी आमदनी ज्यादा हुआ लगी
1: भाई कन पीसो रह जिकी अगर डील में भी अरविंद भाई चनगी रहे चेचाटी जी है चेहरा की बा न्यारी रहे एर सरकार भी अब चाहे आपा भी चाहवा कि भाई किसान भाया के क्या न क्या दो रुपया को फायदो जुको है वो मिले ई खातर कोई भी जुको नाज दानो आपा बेचा फिर ठावड़ी बात आ है कि आजकल जिया मोबाइल सकलांग नहीं अब मोबाइल में भी देखो के मंडी भाव कार और कार आपा घरा बैठे बैठे देखो कोई बूझने की गेला मारने की जरूरत को नहीं है मोबाइल का मां देखो के देख लो कि आप कौन से अनाज का भाव आज कितना ही चूरू मंडी में कितना ही सुजानगढ़ का सरदार सर का जयपुर का जोधपुर का खटे का ही है और जठे ज्यादा भाव मिले बठे की एक आपा आपनो जो उत्पाद है बिन बेच के पूरो जो मुनाफा है वो आपा ने लेनो चाहिए इम कोई प्रकार की कोताही जिकी है ने बा कदई नहीं करनी चाहिए। तो उम्मीद करा कि किसान भाई इतो मेहनत करके परिश्रम करके पसीनो बहाके जो अनाज को उत्पादन करें बिने बैया आंख मिच के हर कटे बेचना रो जो काम है वो मां नहीं करना चाहिए जाए। और जी राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना जी की चाल रही है बीउ जुड़ के और आपनो जो उत्पाद है बी को पूरो मुनाफो जो है वो लेने को पूरो प्रयास है जो माने करना चाहिए जाए। और अब अरविंद भाई पप्पू मस्ताने की आवाज ने मैं एक लोक रचना और सुना दिया।

अभी अपा पप्पू मस्ताना और साथियों की आवाज रवान या लोक रचना सुनी और अरविंद भाई देखो कै योजना जी भांत भांत की चाल ने अपा भी देखो कै टेम टेम पर किसान भाई बताता रवा कहता रवा कभी जितनी भी योजना जी की चाल रही ने बाऊ सगड़ा देखो कि किसान भाई ने जुड़ना चाहिए क्योंकि योजना जी की वह बा किसाना के लाभ वास्ते किसाना के फायदे वास्ते ही सरकार द्वारा चलाई रही। अब कोई कमी की बताऊं कोई कागजी कमी की बजाऊं जे आपा कोई योजनाओं जुड़ के फायदो नहीं ले रहा तो बा आपनी कमी है सरकार की कमी को नहीं। और भांत भांत की जी योजना चल रही बा में जुड़नो भी चाहिए तो बात जब योजना की चल रही है तो यूं जुड़ी देखो कि एक योजना और आपने किसान वास्ते और भी को नाम है किसान कॉल सेंटर। अब सा उस को किसान कॉल सेंटर है इका नंबर भी आप देखो कि एकांत रहे दूसरे दो दिनों पांच दिनों बताता रहा किसान 1800 180 1551। अच्छा ए टोल फ्री नंबर है कोई किसान ने ध्यान नहीं वैर वो या देखे आप नंबर मिला लेंगे और केरो फोन कटे चलो जागो कोई आजकल टेम है जो माड़ो है खड़ी उल्टी गंडी ने गल जा गले में तो इशो काम को नहीं। टोल फ्री नंबर है एक नयो पिसो इम लागे को नहीं और दिन के छह

0: और जिका लोग हुए हैं
1: हाँ हाँ
0: वे के जिके भौगोलिक एरिया की किसान बात करें ने या जठे जिके एरिया का किसान हुए हैं
1: हाँ
0: बंक की जिकी भौगोलिक परिस्थिति हो वे ने बियो के चौखतरिया वाकिप हो वे
1: भाई बन भी
0: और उदाहरण के तौर पर आपा बात करा के आपा अगर जे चूरू फोन करा तो बापरली जिकी अब बालू रेत वाली जिकी माटी है ने इनके बारे में अठे के तावड़े हूं अठे के ठंडू अठे आपने एरिया के मायने होने वाली जिकी फसली
1: हाँ हाँ
0: बम के रोग उसके के है जो को सवा चेती राखनी हो सारी चीजा के लिए वे लोग इंज का केक है अच्छी तरीके हूं वाकिप हो
1: सही बात
0: और विषय विशेषज्ञ के इसका आप
1: हाँ हाँ
0: और अब भी को नहीं के भाई कई बार आप देखा के बहुत बड़ो देश है अरबी के मायन भाई फ्री नंबर ही जो को केबरो कठे को फोन कीजा लाग जागो आ कोनी का आपा रास्ता नु फोन करा तो सब पंजाब वाली भाषा के मैं पंजाबी में समझावे बा दिक्कत है जकी कोनी होवे ए किसान कॉल सेंटर के मैंने आपा अगर जे हिंदी में बात कर सा तो सामलो आपा ने हिंदी में समझासी जे आपा ठेठ मारवाड़ी के मैंने अपनी समस्या बता सा
1: ठीक बात है
0: तो सामलो है जो को आपन के एक ठेठ मारवाड़ी भाषा के मायने
1: ठीक बात
0: चौकी तरिया हूं एक एक चीज मांड बांड की
1: हां हां
0: और आपन बूझ बूझ की आपन समझा सी
1: ठीक बात है
0: अब भाई आपा ठेरा किसान
1: हां हां
0: आपा के एक फसल जदे खेत के मन बालिया ने
1: हां हां
0: 20 दिनों लेके रे लास्ट में जके दिने खड़ो काट गी और नाज ग्रह लिया वाने जब तनी आपा के कहे आपने जकी खेत की जकी सीऊ होए ने बिंग चारों मेर घुमा
1: घुमा
0: और आपा देखा के कटे कोई सी फसल चोखी है कटे की है
1: हां हां
0: कटे कोत्यू है किसान बहन भाई इन जका के कहे भाई एक दिन जा जत तो के कहे बिने जल्दी सी देखने में बेरो को नहीं पड़े
1: सही बात
0: लेकिन भाई जके दिन लेके लास्ट तानी किसान मैन भाई जका आपके फसल की रुखड़ी करे
1: करे सा
0: तो भाई किसान मैन भाई भी जान जाई के कटची के है जको के दिक्कत है
1: हाँ हाँ
0: और ई फसल के मायने के रोग हो उसके
1: सही बात
0: तो भाई किसान मैन भाई जका आपका खेत के मायने घुमाई फिराई करता करता
1: हाँ हाँ
0: और बटेगी जी की फसल है बिको एक एक लक्षण है जो को बता की सारी जी की बीमारी है जो की आपा आपने विषय विशेष से ज्ञान बता दिया तो देखो का आपना जगह नाम ही भाई विषय विशेष से ज्ञान तो बे लोग इन जगह बस सारी समस्या बता दिया ने बिको जोड़ू निदान कर दी
1: सा
0: और अपनी भाषा में आपा ने समझा दी तो किसान मैन बया के आ कोनी के भाई खेत के मैं कोई भी रोग आ गयो और भी हूं है जो को आपा कोई मोटो नुकसान है जो को जला
1: सही बात
0: नहीं भाई किसान कॉल सेंटर हूं आपा आपने खेती बाड़ी आपनी फसल है और आऊ संबंधित कोई भी जकी चीज हो है समस्या जकी हो है
1: हां हां
0: भी को दिन के 6 बजे लेके रात ने 10 बजे के बीच के महीने
1: हां हां
0: कद भी फोन मिला की फ्री टाइम गए मैं और अपा उचित निदान है जो को आसानी हूं लेस का
1: इम के अरविंद भाई जिया किसान कॉल सेंटर है में सगड़ी पसलांग बारे में चाहे रबी की होए चाहे खरीफ की होए चाहे जायद की होए कोई सी पसल के बारे में कोई दुविधा है मन में शंका है तो बा दूर अपन करनी चाहिए इसके अलावा जिया उद्यानी की फसल है फल है सब्जी है या फूलों की खेती कोई किसान करे और बिक के बारे में भी कोई प्रश्न पूछना चाहे तो देखो के वासुविधा भी अठे है इसके अलावा जी मुर्गी पालन है मधुमक्खी पालन है पशु पालन की जानकारी भी जी किसान भाई लेवनो चाहे तो वासुविधा भी देखो के अठे उपलब्ध है बिक के अलावा कृषि की योजना जितनी भी चाल

0: वहां के बारे में भी किसान भाई कोई जानकारी लेनो चाहे तो देखो कि आप किसान कॉल सेंटर के माध्यम से और बात जानकारी घरां बैठा खेत में बैठा हासिल है जी आप कर सका। भाई सीधी सी बात है कि टोल फ्री नंबर है 1800 180 1551, दिन के 6 बजे रात ने 10 बजे तक जब थारे सुविधा लगे भी टाइम फोन की घंटी खुड़का के और बात बुझ लियो। कई बार जहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम हुए आप लोग फोन को मिलियो थोड़ी सी बात हो फोन कट गयो तो आपनो प्रश्न अगले तक पुग गयो ने और जी आपने दोबारा बात नहीं हुई है तो फोन के ऊपर मैसेज आ जी सी के थेज की बात बुझी है भी को समाधान वो है। तो अभी देखो कि एक तकड़ी सुविधा जी की है किसान खातर है तो अपन तो किसान भाई ने कहना चाहवांगा के सूझे ना बुझो ठीक है कोई फसल के बारे में कोई दरखतों के बारे में सब्जी के बारे में कट्ठे ही दिक्कत आवे तो आपने इसका टोल फ्री नंबर है आप पर फोन करके और अपन देखो कि शंका को समाधान जो है वो कर लेना चाहिए।
1: और इंगे सगे सगे देखो किसान कॉल सेंटर है जो को फायदे की चीज है नहीं।
0: हाँ हाँ।
1: बा आपना जका किसान बहन भाई आपने आसे पासे के मायने जका नवाचार कर रहे हैं खेती के मायने
0: जरूर
1: देखो खेती के मायने कोई सैकड़ों हजारों तरीके का नवाचार ही जिका आपने धरातल पर देखने मिले और आम किसान तो के बंग के बारे में के चीज है जिकी ख्यात राखनी के तरीके हुई फसल ने है जिको लिए जाए
0: सही बात
1: और इंगे मायने के है जिको सावधानी रखे जा बी के बारे में वाकिफ को नहीं हुए लेकिन वे जिका अपना प्रगतिशील किसान मैन भाई ने
0: हाँ हाँ।
1: बे के किसान कॉल सेंटर के ऊपर फोन करके और पहली बार खेती कटे बागी नहीं करेडी हो है पेंड पेंड के ऊपर है और बन के नई चीज हो है
0: सही बात है।
1: तो भी नवाचार के महीने किसान कॉल सेंटर है जो को आपने किसान मैन भाइयों के लिए के राम माने
0: भाई महत्वपूर्ण भूमिका निभावे
1: आपा बात करा के आपा पहली परंपरागत खेती करता और अब आर देखो के धीरे धीरे आपने एरिया के मायने खूब नवाचार हो रही
0: होना भी चाहिए।
1: बात करा इस बोल की पहली आपने इस बोल बात आई को नी
0: कौन बात
1: और अब आपना किसान बहन भाई इंज का नवाचार के मायने इस बोल भाव लग गया
0: हाँ हाँ।
1: तो इस बोल की जिकी फसल है बकत तो बीजे जा बिनो बीज गठों है जो को चोखो कोई सो है रहे बिन किस्म और बिन के फसल बाने के बाद में कद कद सिंचाई करनी है के सावधानी बरतनी है
0: ठीक बात
1: बे हर चीज के बारे के मायने आपा फुर्स तो और किसान कॉल सेंटर के ऊपर फोन करके ई तरीके का और भी जिक्र नवाचार ही नहीं जिका आपने एरिया के मायने एकदम नया हुए बंक है मायने के सावधानी के और जिकी चीज ही जिकी आपन चाहिए तो बंक वो आपा किसान कॉल सेंटर के ऊपर फोन करके पहली हूँ आपनी जिकी सावधानी ने बंक ऊपर अमल कर लिया
0: भाई बात है जिकी 16% सही कही है और उम्मीद करा कि आपा जिकी बातें बताई अभी पर अपना किसान भाई देखो के जरूर गौर करेगा और अब मांगीलाल पुजारी की आवाज रमाई एक लोक रचना किसान बयान और सुना दे।

मंगलाल पुजारी और साथियों की आवाज रमाई या लोक रचना सुनी कुए पर एकली है काना तेरी गायन पाछी मोड़ कुए पर एकली। तो भाई देखो के अब टेम गर्मी को चाल रही है और पानी रे सगड़ी चीजा जरूरी है, पानी की बचत जो को है बापा देखो के जीवन कमा मोगली करनी है, पानी को उपयोग सदुपयोग जो को है वो आपा ने सही तरीका करना है। और काल देखो के नौ तो

0: को है जो चालू हो रही है एक खातरा आपने सावधानी जी कार्यक्रम की शुरुआत में थन बताई वे जरूर राखियो ताकि थे निरोगा रहो स्वस्थ रहो कुशाल रहो। और अब देखो के घड़ी है जी सारो करिए आपने जो खेती और गृहस्थी कार्यक्रम है वो 28 ताणी ओजू मिलने ताणी गोपाल भाई ने
1: और भाई अरविंद ने देव सी
0: करा राम राम, राम।

अभी किसान श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम खेती और गृहस्थी। ये आकाशवाणी चूरू का प्रसारण है FM 100.7 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, रात्रि के 8 बज चुके हैं। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

आ अब लौट चले। श्रोताओं, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना। आवाजें थी उदित नारायण और अलका याग्निक की। गीत लिखा था समीर ने, संगीतकार नदीम श्रवण। आइए अब आपको सुनवाते हैं कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में फिल्म अग्निसाक्षी का ये गीत।

श्रोता भी सुन रहे थे कुमार सानू और सुनिधि चौहान को फिल्म अजनबी में। गीत लिखा था समीर ने, संगीतकार अनु मलिक। आइए एक बार फिर आपको सुनवाते हैं समीर का लिखा गीत, संगीतकार हैं आनंद मिलंद, आवाजें हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की।

0: लव आजकल। श्रोताओं, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना। आवाजें थी नीरज श्रीधर और सुनिधि चौहान की। शब्द रचना थी इरशाद कामिल की, संगीतकार प्रीतम। इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के चूरू केंद्र से फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता, ओनली ऑन 100.7 मेगाहर्ट्ज पर।
1: क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के साथ। आकाशवाणी चूरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चूरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चूरू, आपकी पहचान, हमारी आवाज। ये आकाशवाणी का प्रसारण है, आप सुन रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी चूरू।
0: अंतरालों के बाद श्रोताओं का कार्यक्रम में फिर से स्वागत है। आइए साथियों, अब आपको सुनवाते हैं अलका याग्निक और कुमार सानू को फिल्म गुप्त में।

श्रोता अभी सुन रहे थे चाइना गेट फिल्म का गीत। आवाजें थी सपना अवस्थी और अनु मलिक की। गीत लिखा था समीर ने, संगीतकार अनु मलिक। इस समय श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के चूरू केंद्र से फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता। श्रोताओं आइए सुनते हैं कार्यक्रम का।

श्रोता कार्यक्रम के आखिर में सुन रहे थे फिल्म मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी का गीत, आवाज थी कुमार सानू और अलका याग्निक की। गीत लिखा था हसरत जयपुरी ने, संगीतकार अनु मलिक। इस गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता अब यहीं समाप्त होता है। यह आकाशवाणी चूरू का प्रसारण है एफएम बैंड के 100.7 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, रात्रि के 8:45 होने वाले हैं, अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से रिले पहले समाचार संध्या और रात्रि 9 बजे न्यूज़ @9 का प्रसारण। समाचारों की प्रतीक्षा करें।

0: सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों के रूप में महत्वपूर्ण बताया। पश्चिम बंगाल में फलता विधानसभा पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार देवांशु पांडा ने 1,00,000 से अधिक वोटों से जीत हासिल की। तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार की जमानत जब्त। पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को संदिग्ध अवैध प्रवासियों के लिए हिरासत केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया। सरकार ने CBSE पुनर्मूल्यांकन पोर्टल की खामियों को दूर करने के लिए IIT मद्रास और कानपुर के विशेषज्ञों को शामिल किया। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले के थट्टे हक्कालू नदी में तेज बहाव के कारण 8 लोग डूबे। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ने हादसे पर गहरी संवेदना व्यक्त की। देश के मध्य और उत्तर पश्चिम भागों में भीषण लू के कारण जनजीवन प्रभावित। अगले 7 दिनों तक यह स्थिति बनी रहेगी। और वियतनाम में एशियाई अंडर-23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने 3 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, गतिशीलता तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम दिया जाना चाहिए।
1: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
0: ईरान संघर्ष पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जिनके अमेरिका, इसराइल, ईरान और अन्य खाड़ी देशों के साथ मजबूत रिश्ते हैं। उन्होंने कहा कि भारत के सामने मुख्य चुनौती अपने राष्ट्रहित और इन देशों के साथ संबंधों का संतुलन बनाए रखना है। उन्होंने कहा कि भारत क्षेत्र में शांति और स्थिरता तथा भारतीय समुदाय के कल्याण के साथ साथ ईंधन की कम कीमतें चाहता है।
1: हम इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता चाहते हैं। दूसरा, हमारे लिए प्रवासी समुदाय का कल्याण और भलाई बहुत आवश्यक है। तीसरा, हम चाहते हैं कि ईंधन की कीमतें कम हों क्योंकि हम इसके बहुत बड़े आयातक हैं और इसका अधिकतर हिस्सा इसी क्षेत्र से आता है।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया।
2: जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के 2 सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
0: बाद में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच मुख्य रूप से रक्षा, सुरक्षा और रणनीतिक प्रौद्योगिकी सहयोग पर चर्चा हुई। अमेरिका के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। बैठक 26 मई को होगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सी मोतेगी भी भाग लेंगे। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार शंभुनाथ कुर्मी को बड़े अंतर से हराया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: तृणमूल कांग्रेस के तथाकथित डायमंड हार्बर मॉडल को तोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी ने फलता विधानसभा सीट पर रिकॉर्ड जीत दर्ज की। पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने CPIM के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोटों के अंतर से हराया, जिन्हें 40,645 वोट मिले। देवांशु पांडा को 1,49,666 वोट मिले। तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान केवल 7,783 वोट के साथ चौथे स्थान पर रहे। कांग्रेस तीसरे स्थान पर है। इस चुनाव में तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई है। इस जीत के साथ विधानसभा की 294 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी की सीटों की संख्या बढ़कर 208 हो गई है। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार संदिग्ध अवैध प्रवासियों और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे विदेशी कैदियों के लिए हिरासत केंद्र स्थापित करने का

0: किया है। एक रिपोर्ट।
1: सभी जिलों को देश में अवैध रूप से रह रहे व्यक्तियों, कारावास की सजा पूरी कर चुके और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को वापस भेजने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। निर्देश में अधिकारियों को भारत में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों और रोहिंग्याओं के निर्वासन तथा स्वदेश वापसी प्रक्रियाओं के संबंध में गृह मंत्रालय के निर्देशों का पालन करने को कहा गया है। इससे पहले पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य पुलिस अधिकारियों को अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को अदालत में पेश करने के बजाय सीधे सीमा सुरक्षा बल को सौंपने का निर्देश दिया था। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा सीमा सुरक्षा बल को 27 किलोमीटर भूमि सौंपने के बाद सिलीगुड़ी उपमंडल के फांसी देवा क्षेत्र में भारत बांग्लादेश सीमा पर बाढ़ का काम भी शुरू हो गया है। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास और IIT कानपुर के प्रोफेसरों और तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने का निर्देश दिया है। यह निर्णय CBSE के परीक्षा परिणाम सेवा पोर्टल के संबंध में विद्यार्थियों और अभिभावकों की चिंताओं और समस्याओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। शिक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि दोनों IIT के विशेषज्ञ दल प्रणाली में तकनीकी सुधार लागू करेंगे और विशेष रूप से पोर्टल की स्थिरता तथा सर्वर के सुचारू संचालन की जाँच करेंगे। इस बीच शिक्षा मंत्री ने आज वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारामन से मुलाकात की और CBSE परिणाम और पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान तकनीकी और भुगतान से संबंधित चुनौतियों के बारे में बातचीत की। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि विचार विमर्श के दौरान यह तय किया गया कि भारतीय स्टेट बैंक, बड़ौदा बैंक, कैनरा बैंक और इंडियन बैंक CBSE की भुगतान प्रणाली को सुदृढ़ करने में मदद करेंगे। श्री प्रधान ने CBSE को अपनी भुगतान प्रणाली में पूरी तरह बदलाव करने के निर्देश दिए हैं। संघ लोक सेवा आयोग UPSC ने आज सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा और भारतीय वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 का सफलतापूर्वक आयोजन किया। UPSC ने बताया है कि ये परीक्षाएं देश के 83 शहरों में 2000 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई। अंतिम आंकड़ों के अनुसार 8 लाख से अधिक आवेदकों में से लगभग 5,49,000 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए। UPSC के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार ने परीक्षा में के सफल आयोजन के लिए UPSC टीम के साथ साथ राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के प्रयासों की सराहना की है। दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की 4 सदस्यों की मेडिकल टीम ने आज भोपाल में पूर्व मॉडल और अभिनेत्री ट्विशा शर्मा के कथित दहेज हत्या मामले में दूसरा पोस्टमार्टम किया। ये पोस्टमार्टम कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लगभग 3 घंटे तक चला। कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद शव परिवार को सौंप दिया गया। 33 वर्षीय ट्विशा की 12 मई को भोपाल में अपने ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इस बीच सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता में एक पीठ कल इस मामले की सुनवाई

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपने पर सहमति व्यक्त की है। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में आज थट्टे हक्कालू नदी में एक ही परिवार के 8 सदस्य डूब गए, इनमें 7 महिलाएं शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि शिराली गांव के लगभग 14 लोग सीप इकट्ठा करने के लिए नदी में उतरे थे, लेकिन रात्रि में तेज बारिश के बाद पानी के बहाव की चपेट में आ गए। उन्हें बचाने के लिए पानी में उतरे अन्य सदस्य भी तेज धारा में बह गए। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के निकटतम परिजनों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

ये आकाशवाणी का चूरू केंद्र है। रात्रि के 9:15 हो चुके हैं, आइए सुनते हैं राजस्थानी लोक संगीत का कार्यक्रम। आज आप सुनेंगे सुजान सिंह खींची और साथियों को।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

अभी श्रोता सुन रहे थे राजस्थानी लोक संगीत का कार्यक्रम। आज के लोक कलाकार थे सुजान सिंह खिंची और साथी। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.7 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 9:30 हो चुके हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत।

0: बन गई।
1: श्रोता कार्यक्रम के आरंभ में सुन रहे थे अनवर की आवाज में अर्पण फिल्म का गीत। गीत लिखा था आनंद बख्शी ने, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। आइए अब आपको सुनवाते हैं आनंद फिल्म का गीत, आवाज है मुकेश की। गीतकार योगेश, संगीतकार सलील।

श्रोता कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे जंगली फिल्म का गीत, आवाज मोहम्मद रफी की थी। गीत लिखा था हसरत जयपुरी ने, संगीतकार शंकर जयकिशन। आइए श्रोताओं कार्यक्रम में एक बार फिर आपको सुनवाते हैं हसरत जयपुरी का लिखा गीत, संगीतकार शंकर जयकिशन। फिल्म का नाम है ब्रह्मचारी। आवाजें हैं मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की।

गोरा और काला। श्रोताओं, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना। आवाज लता मंगेशकर और मुकेश की थी। गीत लिखा था आनंद बख्शी ने, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। आइए अब आपको सुनवाते हैं एक बार फिर मुकेश और लता मंगेशकर की युगल आवाजों में फिल्म पत्थर के सनम का ये गीत। गीत लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने, संगीतकार एक बार फिर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

श्रोताओं, फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं, FM 100.7 MHz पर। रात्रि के 10 बजने वाले हैं। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा का प्रसारण। ये कार्यक्रम आप दिल्ली केंद्र

रवि वासरिया अखिल भारतीय संगीत सभा में आज रात प्रस्तुत है सितार वादन। कलाकार हैं पंडित हरुशंकर भट्टाचार्य। जाने माने संगीतज्ञों वाली विशिष्ट परिवार में जन्मे पंडित हरुशंकर भट्टाचार्य के दादा श्री लाल मोहन भट्टाचार्य जाने माने सितार वादक थे, जिन्होंने इस सांगीतिक विरासत की नींव रखी। अपने पिता श्री गंगा शंकर भट्टाचार्य के मार्गदर्शन में पंडित हरुशंकर भट्टाचार्य ने शुरुआती तालीम हासिल की। आगे चलकर आपको विष्णुपुर घराना के श्री मुरलीधर ठाकुर से सीखने का सुअवसर भी प्राप्त हुआ। 1968 में पंडित हरुशंकर भट्टाचार्य उस समय के बंबई यानी मुंबई रवाना हुए। आपने वहां बीनकार शैली के लिए प्रसिद्ध इंदौर घराने के

0: प्रवाद प्रतिम सितार वादक पद्म भूषण उस्ताद अब्दुल हलीम जाफर खान से सितार वादन सीखना आरंभ किया। आकाशवाणी और दूरदर्शन के शीर्ष श्रेणी के कलाकार पंडित हरिशंकर भट्टाचार्य की जाफर खानी बाज के तौर पर एक विशिष्ट पहचान है। आपने देश और विदेश के तमाम संगीत समारोहों में अपनी बेहतरीन प्रस्तुतियां दी हैं। पंडित हरिशंकर भट्टाचार्य भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद यानी ICCR के सूचीबद्ध कलाकार हैं। साथ ही आपको अनगिनत पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। यही नहीं, पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा आयोजित अपना उत्सव समारोह में आपने संगीत निर्देशक की भूमिका भी निभाई है। आज रात पंडित हरिशंकर भट्टाचार्य के साथ तबले पर संगत करेंगे प्रशांतो दे रॉय।
1: इन द रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा टुनाइट वी प्रेजेंट सितार रिसाइटल बाय पंडित हरिशंकर भट्टाचार्य। बोर्न इन अ डिस्टिंग्विश्ड म्यूजिकल फैमिली ऑफ अकॉम्प्लिश्ड म्यूजिशियंस वेर हिज ग्रैंडफादर द रिनाउंड सितारिया Sri Lal Mohan Bhattacharya is said to have laid the foundation of this rich legacy, and Pandit Hrishankar Bhattacharya stepping into this world of music with initial training under the able guidance of his father, Sri Ganga Shankar Bhattacharya. Further, he also received training from Sri Murali Das Thakur of the Bishnupur Gharana. Later in 1968, Pandit Hrishankar Bhattacharya moved to Bombay, present-day Mumbai, to undergo intensive talim under the legendary sitar maestro Padma Bhushan Ustad Abdul Halim Zafar Khan of the Indore Gharana, famous for his Binkar style. A top-grade sitar artist of Akashvani and Doordarshan, Pandit Hrishankar Bhattacharya, with his unique artistic identity as a Jafar Khani Baj, has performed extensively at major classical music concerts and festivals across India and abroad. An impaneled artist of the Indian Council for Cultural Relations, Pandit Hrishankar Bhattacharya has received several awards and accolades and has also contributed as a music director for Apna Utsav, a festival organized by the government of West Bengal. In tonight's presentation, Pandit Hrishankar Bhattacharya is accompanied on the tabla by Prashanto De Roy.
0: पंडित हरिशंकर भट्टाचार्य सितार वादन की इस प्रस्तुति का आरंभ राग दरबारी के साथ करेंगे। यह बंदिश आलाप और जोड़ के साथ शुरू होगी, जो गत में विलंबित तीन ताल तत्पश्चात मध्य लय तीन ताल में आबद्ध है।
1: पंडित हरिशंकर भट्टाचार्य स्टार्ट्स हिज सितार रिसाइटल विद राग दरबारी। बिगिनिंग विद आलाप एंड जोड़, द कंपोजिशन ऑफ द राग is set to gat in vilambit tintal, followed by mantilayati.

0: सितार वादन के अंतर्गत आप पंडित हरशंकर भट्टाचार्य से राग दरबारी सुन रहे थे। आपकी अगली प्रस्तुति है राग छायानट, जो आप आलाप से शुरू करेंगे। यह बंदिश गत में विलंबित तीन ताल तत्पश्चात द्रुत तीन ताल में आबद्ध है।
1: You are listening to Rag Darbari on the sitar by Pandit Harishankar Bhattacharya. He continues with his presentation in Rag Chayanat, which begins in Alap with a composition set to

0: सितार वादन के इस कार्यक्रम में आप राग छायानट सुन रहे थे। पंडित हरिशंकर भट्टाचार्य आज की इस प्रस्तुति का समापन राग जिला काफी के साथ करेंगे। शुरुआत आलाप से होगी और यह बंदिश गत में दीप चंदी, तत्पश्चात द्रुत तीन ताल में आबद्ध है।
1: You are listening to Raga Chayanat in the sitar recital. Pandit Harishankar Bhattacharya concludes his presentation with Rag Zila Kafi. Beginning with Alap, the composition of the rag is set to Gat in

0: संपादन के इस कार्यक्रम में आप पंडित हरोशंकर भट्टाचार्य से राग जिला काफी सुन रहे थे। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे प्रशांत दे रॉय।
1: You are listening to Raag Zila Kafi in the sitar recital by Pandit Harishankar Bhattacharya. He was accompanied on the tabla by Prashanto De Roy.
0: इसी के साथ रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा आज रात यही संपन्न होती है।
1: And with this, we end tonight's रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा. This program was recorded at the studios of Akashvani, Kolkata.
2: आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर रात्रि के 11 बजने को हैं। कुछ ही देर में सुनिए हिंदी में।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर ने प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
1: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
0: ईरान संघर्ष पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जिनका अमेरिका, इसराइल, ईरान और अन्य खाड़ी देशों के साथ मजबूत रिश्ते हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया।
2: जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोटों के अंतर से हराया, जिन्हें 40,645 वोट मिले। पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार संदिग्ध अवैध प्रवासियों और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे विदेशी कैदियों के लिए हिरासत केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया है। सभी जिलों को देश में अवैध रूप से रह रहे व्यक्तियों, कारावास की सजा पूरी कर चुके और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को वापस भेजने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास और IIT कानपुर के प्रोफेसरों और तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने का निर्देश दिया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने स्नातक पाठ्यक्रम के लिए सामान्य विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा 2026 के अंतर्गत 28 मई को होने वाली परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। एजेंसी ने बताया कि ये फैसला सरकारी अधिसूचना के अनुसार ईद उल जुहा, बकरी ईद की छुट्टी की तारीख में हुए बदलाव को देखते हुए लिया गया है। परीक्षा की नई तारीख की घोषणा जल्द ही की जाएगी। संघ लोक सेवा आयोग UPSC ने आज सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा और भारतीय वन सेवा की प्रारंभिक परीक्षा 2026 का सफलतापूर्वक आयोजन किया। आयोग ने बताया है कि ये परीक्षाएं देश के 83 शहरों में 2000 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई। अंतिम आंकड़ों के अनुसार 8 लाख से अधिक आवेदकों में से लगभग 5,49,000 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में आज थट्टे हक्कालू नदी में एक ही परिवार के 8 सदस्य डूब गए, जिनमें 7 महिलाएं शामिल थे। पुलिस के अनुसार शिराली गांव के लगभग 14 लोग सीप इकट्ठा करने के लिए नदी में उतरे थे, लेकिन रात्रि में तेज बारिश के बाद पानी के बहाव की चपेट में आ गए। उन्हें बचाने के लिए पानी में उतरे अन्य सदस्य भी तेज धारा में बह गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। देश के मौसम के मध्य और उत्तर पश्चिमी हिस्सों में भीषण लू के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और तापमान औसत से काफी ऊपर पहुंच गया है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी पीने, दोपहर से देर शाम तक धूप से बचने और बच्चों, बुजुर्गों तथा पहले से किसी बीमारी से पीड़ित लोगों को विशेष ध्यान रखने की सलाह दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिनीत शुक्ला। External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar and U.S. Secretary of State Marco Rubio held wide-ranging discussions in New Delhi today. Both the leaders reaffirmed the strength of the India-U.S. strategic partnership and outlined key areas of cooperation, including trade, energy, mobility, and regional security. Addressing a press conference following delegation-level talks, Dr. Jaishankar highlighted the need to conclude a trade agreement at the earliest, welcomed the expansion in energy trade, and stressed that diversified energy supplies are vital for India's energy security.
4: Our government's fundamental responsibility is to address the needs of 1.4 billion people. Obviously, ensuring the accessibility and affordability of energy for them is our prime objective. Secretary and I therefore welcome the expansion in our energy trade in recent months. Diversified supplies are at the heart of energy security for India.
3: On the Iran conflict, Dr. Jaishankar said, both India and the United States have a strong interest in ensuring that global energy prices remain low and that there is unimpeded commerce. India's position in favor of dialogue and diplomacy, as well as safe and unimpeded maritime commerce, was also reiterated. The West Bengal government has directed all district magistrates to set up holding centers for suspected illegal foreigners and foreign prisoners awaiting